नमस्कार, सुप्रभात। FM 103 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज है शुक्रवार। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 सितंबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है इस समय सुबह के 5:59 और 3 सेकंड होने की। इसी के साथ ही आरंभ होती है हमारी आज की पहली

0: ये आकाशवाणी डाल्टनगंज है। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकन हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ट्रेड्रोस

0: नोम घेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रुसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, 12 खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। सत्र में भारत को संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना आवश्यक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। कृषि संबंधी कुछ जानकारी इस कार्यक्रम के तहत सुनिए। सीमित वर्षा से उद्यान फसलों में प्रबंधन, संकलन और वाचन स्वर है प्रतिमा वर्मा का। पूर्व प्रसारित यह जानकारी है।
2: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें सीमित वर्षा में उद्यान फसलों में प्रबंधन की। अनिश्चित मानसून से नमी में कमी आने से बागवानी फसलें प्रभावित हो सकती हैं। किसान भाइयों, वर्षा के अभाव में उचित फसलों का चयन आवश्यक है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अच्छी जड़ प्रणाली और क्षमता वाली किस्मों के चयन किए जाने की जरूरत है। स्थिति के अनुसार अल्पकालिक किस्मों का उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण भाइयों, नर्सरी में पौधे उगाने में कोकोपीट, नायलॉन, और जैव उर्वरकों, जैव कीटनाशक उपचार का प्रयोग करके पौधा उत्पादन की उन्नत पद्धति में मजबूत, एक समान और स्वस्थ पौधा प्राप्त करने की अच्छी संभावना बनती है। इन पौधों को जब मुख्य खेत में रोपित किया जाता है तो इससे विशेषकर जल दबाव स्थितियों के दौरान जैविक और अजैविक दबावों से उभरने में मदद मिलती है और जड़ को होने वाली क्षति भी कम होती है। इसके साथ ही ग्रामीण भाइयों, कंटूर खेती, मिश्रित फसल, मल्चिंग, जीरो टीले जैसे कुछ कृषि संबंधी उपाय हैं जो मृदा आर्द्रता संरक्षण में सहायक होते हैं। साथ ही साथ जल के कुशल उपयोग की भी जरूरत है। वर्षा जल संचयन के लिए अप्रवाह जल को खोदे गए पोखरों या छोटे गड्ढों, तालाबों, नालों में इकट्ठा किया जाना चाहिए। जी हाँ किसान भाइयों, कम वर्षा की स्थिति में मृदा ऑर्गेनिक कार्बन में सुधार कराने के लिए निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए। किसान भाइयों, हरी खाद देकर फसल चक्र तथा कृषि वानिकी को अपनाकर भी मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ में सुधार किया जा सकता है। सब्जियां कम अवधि और तेजी से बढ़ने वाली फसलें होती हैं, इसलिए उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ में उचित रूप से कंपोस्ट खाद मिलाए जाने की जरूरत है। मिट्टी में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ के शीघ्र उपयोग के लिए तथा मृदा आर्द्रता संरक्षण में सुधार कराने के लिए वर्मी कंपोस्टिंग को भी अपनाया जा सकता है। जी हाँ ग्रामीण भाइयों, बागवानी फसलों में जड़ के भागों में पानी का सही और सीधे प्रयोग के लिए ड्रिप सिंचाई अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित किया है। ड्रिप सिंचाई में जो अलग से लाभ प्राप्त होते हैं वे हैं जल में महत्वपूर्ण बचत, फलों और सब्जियों की पैदावार में वृद्धि तथा खरपतवारों का नियंत्रण और श्रम में बचत। ड्रिप सिंचाई को फल वर्गीय पौधों, साथ ही साथ कम अंतर वाली फसलों जैसे प्याज और फली सहित अन्य सभी सब्जी फसलों में भी अपनाया जा सकता है। इससे फसल और मौसम के आधार पर 30-50% जल की बचत होती है। मिर्च, बैंगन, फूलगोभी तथा भिंडी जैसी फसलों में जोड़ा पंक्ति पौधारोपण की प्रणाली अपनाकर कम वर्षा में खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, मृदा और जल संरक्षण के लिए मृदा को प्राकृतिक फसल अवशेषों या प्लास्टिक फिल्म से कवर कराने की तकनीक को मल्चिंग कहा जाता है। मल्चिंग का इस्तेमाल फार्म में उपलब्ध फसल अवशेषों और अन्य कार्बनिक सामग्री का उपयोग करके फलों और सब्जी फसलों में किया जा सकता है। मल्चिंग का प्रयोग करके सब्जियों की कई किस्में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं। जी हाँ किसान भाइयों, पौधों के विकास करने के लिए पौधों के नीचे तथा पौधों की कतारों के बीच खुली जगह को खरपतवार रहित रखना चाहिए। आर्द्रता स्थिति अनुकूल होते ही पौधा का रोपण करें। आंशिक शेड से नए पौधे का संरक्षण आवश्यक है। फसलों के बीच दूरियों में निराई तथा इंटरकल्चर पद्धतियां अपनाई जा सकती हैं। ग्रामीण भाइयों, जल की उपलब्धता के आधार पर वैकल्पिक सिंचाई की जरूरत है। ऐसी स्थिति में ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाना बहुत आवश्यक है। जहां ड्रिप उपलब्ध ना हो वहां घड़ा सिंचाई पद्धति अपनाने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में ये हुई बातें सीमित वर्षा में उद्यान फसलों में प्रबंधन की। इसी के साथ कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप कुछ जानकारियां प्राप्त कर रहे थे कृषि संबंधी खेती की बातें कार्यक्रम के तहत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान।

एक समय श्रीराम द्वारा रचित माया के वशीभूत होकर नारद मुनि ने विवाह करना चाहा था, किंतु प्रभु ने उन्हें विवाह करने से रोक दिया। तब से ही मुनि के मन में इसका कारण जानने की उत्कंठा बनी हुई थी। जब नारद जी ने प्रभु के समक्ष अपनी शंका प्रकट की, तो प्रभु ने युवती स्त्री के गुण अवगुणों की चर्चा करके उनकी शंका का समाधान किया। स्वामी के वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो उठा, उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। इसी संदर्भ में प्रभु ने संतों के उन लक्षणों पर प्रकाश डाला जिनके कारण वह भक्तों के वश में रहते हैं, काम

क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। संत जन इन छह मानसिक तथा शारीरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वे संसार के दुखों और संदेहों से सर्वथा मुक्त होते हैं। दूसरों को मान देना, अभिमान न करना, धैर्यवान होना, धर्म के ज्ञान और आचरण में निपुण होना उनके गुण हैं। वैराग्य, विवेक तथा परमात्मा के तत्व का ज्ञान संतों के लक्षण हैं।

अभी आप सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन।

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। संत कबीर ने इस दोहे के माध्यम से समय के महत्व पर प्रकाश डाला है। वो कहते हैं, भविष्य का क्या भरोसा, ये कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, इसलिए कल के लिए किसी काम को छोड़ना उचित नहीं है। जो करना है अभी कर लो, क्योंकि पल भर में यदि प्रलय आ गया तो फिर क्या करोगे। इसका सार यही है कि समय के हर एक पल का सदुपयोग कर लेना चाहिए। जो कल करना है आज करो, आज करना है तो अभी कर लो। समय ठहरता नहीं है और जीवन का भरोसा नहीं है। समय की महत्ता जीवन में काफ़ी है, समय अमूल्य है। यदि एक बार हाथ से फिसल गया तो फिर वह समय दोबारा पकड़ में नहीं आता, जो बीत जाता है। इसलिए सफल जीवन के लिए समय का प्रबंधन आवश्यक है। जीवन में काफ़ी भाग दौड़ होती है, कई काम होते हैं, और यदि समय अनुसार काम ना किया जाए तो जीवन दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है और इंसान परेशान रहता है। जो लोग व्यवस्थित समय अनुसार हर काम को समय रहते पूरा कर लेते हैं, उन्हें दिक्कतें कम आती हैं, और ऐसे लोग हर कार्य समय रहते पूरा कर पाते हैं। यदि हम विद्यार्थियों की बातें करें तो जो बच्चे समय का सही प्रबंधन करके पढ़ाई करते हैं, वो शांतिपूर्वक अपना इम्तिहान दे पाते हैं और परेशान नहीं होते हैं। इसके विपरीत कई बच्चे समय का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, और जब समय बीत जाता है तब अफरा तफरी में पढ़ाई करते हैं, जिसके कारण मानसिक शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, और फिर वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितनी उनकी क्षमता होती है। इसी संदर्भ में संत कबीर ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो लोग वर्तमान में जीते हैं, भविष्य की वो चिंता नहीं करते, उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करते, ऐसे लोग तनाव रहित रहकर अपना काम करते जाते हैं। कुछ लोग जो बीत गया उसके बारे में सोच सोच कर अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं, पछताते रहते हैं। ऐसे लोग भी तनाव से भरे रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। कुछ मनुष्य त्वरित काम करने के लिए बहुत सारे काम एक साथ ले लेते हैं, तो यह भी सही नहीं है। अपनी क्षमता अनुसार, समय अनुसार सभी कार्य किए जाने चाहिए, और ऐसा करने से परेशानी नहीं होती है। कछुआ और खरगोश की कहानी तो जग जाहिर है। कछुआ धीरे धीरे गति से चलता रहा और गंतव्य तक पहले पहुंच गया। खरगोश, जो तेज़ दौड़ने वाला है, तेज़ दौड़ा, लेकिन आराम के चक्कर में वह पिछड़ गया और कछुआ से हार गया। इसी तरह तेज़ भागना भी सही नहीं है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहने से सफलता भी मिलेगी और तन मन में किसी पर प्रकार का बोझ भी नहीं होगा। संत कबीर के दोहे के गूढ़ रहस्य को समझते हुए जीवन में संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ना ही समझदारी है, और यही जीवन सार भी।

अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, काल करे सो आज कर, संकलन और वाचन स्वर था निर्मला तिवारी का। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना के तहत आइए सुनवाते हैं कुछ भजन सुमन कल्याणपुर से।

0: चंद्र सखी रचे तो सुमन कल्याणपुर के गाए इसी भजन के साथ ही भक्ति संगीत का वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। गांधी कथा, आइए पूर्व प्रसारित गांधी कथा सुनते हैं। संकलन और वाचन स्वर है अनुराधा सिंह का।
1: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है, प्रस्तुत है गांधी कथा।

प्रस्तुत है गांव का आहार के बारे में गांधी जी के विचार। हाथ कुटाई का चावल। अगर चावल पुरानी पद्धति से गांव में ही कूटा जाए तो उसकी मजदूरी हाथ कुटाई करने वाली बहनों के हाथ में जाएगी और चावल खाने वाले लाखों लोगों को, जिन्हें आज मिलों के पॉलिश किए हुए चावल से केवल स्टार्च मिलता है, हाथ कुटे चावल से कुछ पोषक तत्व भी मिलेंगे। चावल पैदा करने वाले प्रदेशों में जहां तहां जो भयावनी चावल की मिलें खड़ी दिखाई देती हैं, उनका कारण मनुष्य का वह अमर्यादित लोभ ही है, जो न तो अपनी तृप्ति के लिए अपने पंजे में आए हुए लोगों के स्वास्थ्य की परवाह करता है और न उनके सुख की। अगर लोकमत शक्तिशाली होता तो वह चावल की मिलों के मालिक से इस व्यापार को समूचे राष्ट्र के स्वास्थ्य को खोखला बनाता है और गरीबों को जीविकोपार्जन के एक ईमानदारी के साधन से वंचित करता है, बंद करने का अनुरोध करता और हाथ कुटाई के चावलों के ही उपयोग का आग्रह रखकर चावल कुटने वाली मिलों का चलना अशक्य कर देता। गेहूं का चोकर युक्त आटा। ये तो सभी डॉक्टरों की राय है कि बिना चोकर का आटा उतना ही हानिकर है जितना कि पॉलिश किया हुआ चावल। बाजार में जो महीन आटा या मैदा बिकता है उसके मुकाबले में घर की चक्की का पिसा हुआ बिना चला गेहूं का आटा अच्छा भी होता है और सस्ता भी। सस्ता इसलिए होता है कि पिसाई का पैसा बच जाता है, फिर घर के पिसे हुए आटे का वजन कम नहीं होता। महीन आटे या मैदे में तौल कम हो जाती है। गेहूं का सबसे पौष्टिक अंश उसके चोकर में होता है। गेहूं की भूसी चाल कर निकाल डालने से उसके पौष्टिक तत्व की बहुत बड़ी हानि होती है। ग्रामवासी या दूसरे लोग जो घर की चक्की का पिसा आटा बिना चला हुआ खाते हैं, वे पैसे के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी नष्ट होने से बचा लेते हैं। आज आटे की मिलें जो लाखों रुपए कमा रही हैं, उस रकम का काफी बड़ा हिस्सा गांव में हाथ की चक्कियां फिर से चलने लगने से गांव में ही रहेगा और वह सतपात्र गरीबों के बीच बढ़ता रहेगा। गुड़। डॉक्टरों की राय के अनुसार गुड़ सफेद चीनी की अपेक्षा कहीं अधिक पौष्टिक है और अगर गांव वालों ने गुड़ बनाना छोड़ दिया तो उनके बाल बच्चों के आहार में से एक जरूरी चीज निकल जाएगी। वे खुद शायद गुड़ के बिना अपना काम चला सकेंगे, पर उनके बच्चों की शारीरिक ताकत गुड़ के अभाव में निश्चय ही घट जाएगी। अगर गुड़ बनाना जारी रहा और लोगों ने उसका उपयोग करना न छोड़ा तो ग्रामवासियों का करोड़ों रुपया उनके पास ही रहेगा। हरी पत्ता भाजियां। आहार या विटामिनों के विषय पर लिखी गई कोई भी आधुनिक पाठ्य पुस्तक उठाइए तो उसमें आप इस बात की जोरदार सिफारिश पाएंगे कि हर एक भोजन के साथ थोड़ी सी कच्ची हरी पत्ता भाजी जरूर ली जाए। बेशक खाने से पहले उन्हें 4-6 बार अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि उनमें लगी हुई मिट्टी और दूसरा कचरा बिल्कुल साफ हो जाए। ये पत्ता भाजियां हर एक गांव में आसानी से मिल सकती हैं। सिर्फ उन्हें तोड़ने की जरूरत है। फिर भी हरी पत्ता भाजियां शहरों के ही लोगों के शौक की चीज समझी जाती है। भारत के अधिकांश हिस्सों में गांव वाले तो दाल चावल या रोटी पर ही गुजारा करते हैं और इनके साथ बहुत सी मिर्चें खाते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। चूंकि गाँव के आर्थिक पुनर्गठन का काम आहार के सुधार से शुरू किया गया है, इसलिए सस्ते और सादे ऐसे खाद्यों को ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है जिसे गांव वाले अपना खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर सके। भोजन के साथ थोड़ी सी हरी पत्ता भाजी लेने से गांव के लोग ऐसे अनेक रोगों से बच जाएंगे जिनसे वे आज तकलीफ भोगते हैं। गांव वालों के भोजन में विटामिनों की कमी है, उनमें से अधिकांश की पूर्ति ताजे हरे पत्तों से हो सकती है। मैंने अपने भोजन में सरसों, सोया, सलजम, गाजर और मूली की सिर्फ पत्तियां लेना शुरू किया है। ये कहने की जरूरत नहीं कि सलजम, गाजर और मूली की सिर्फ पत्तियां ही नहीं, उनके कंद भी कच्चे खाए जाते हैं। इनकी पत्तियों या कंदों को आग पर पकाकर खाना उनके सुप्रिय स्वाद को मारना और पैसे का दुर्व्यय करना है। आग पर पकाने से इन भाजियों की विटामिन बिल्कुल या अधिकांश नष्ट हो जाते हैं। इन्हें पकाकर खाना इनके स्वाद की हत्या करना है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि कच्ची भाजियों में एक प्राकृतिक स्वाद होता है जो कि पकाने से
नष्ट हो जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित गांधी कथा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं स्वास्थ्य चर्चा के तहत मनोविक्षिप्तता पर ली गई डॉक्टर सुनील कुमार मनोचिकित्सक पलामू से भेंट वार्ता।
1: कल्याणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं, आइए आज इस कार्यक्रम में आपको मानसिक रोग पर विस्तृत जानकारी दिलवाते हैं। मानसिक रोग में हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि मनोविक्षिप्तता ये एक बहुत ही भयानक रोग है। इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिले के सदर अस्पताल में पदस्थापित मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको हमारा नमस्कार।
2: जी, आपको भी नमस्कार। सुनने वाले सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, ये मनोविक्षिप्तता क्या है?
2: मनोविक्षिप्तता मानसिक रोग में एक गंभीर बीमारी है और मनोविक्षिप्तता में रोगी का वास्तविकता से नाता एकदम टूट जाता है। रियलिटी कॉन्टेक्ट उसका खत्म हो जाता है। रियलिटी कॉन्टेक्ट खत्म हो जाने से उसकी अपनी जो दिनचर्या

0: होती है वह अलग हो जाता है, वो संसार से कटा छटा महसूस करता है, कटा छटा रहने लगता है। जैसे रोग के दौरान व्यक्ति अपने आप में खोया रहना, समाज में भीड़ भाड़ में नहीं जाना, परिवार से अलग रहना, अपना नहाना धोना रहना रहन सहन खान पीन इसका ख्याल नहीं रखना, और गंदे मैले जिस तरह से भी हो कोई सामान को कहीं से उठा के कलेक्ट करके रखना, इस तरह से मानसिक विक्षिप्तता का लक्षण जो दिखाई पड़ता है वो साधारणतः रोगियों में पाया जाता है। तो मानसिक विक्षिप्तता मानसिक रोग से रोग में सबसे गंभीर बीमारी माना गया है, और इसका जो आउटकम होती है रिजल्ट भी मिलती है थोड़ा सा पुअर होता है, क्योंकि यह लंबी बीमारी चल और लंबी दवा चलने वाली बीमारी, इस पर लंबी दवा चलती है, बीमारी में दवा खा के रोगी ठीक रहते हैं, और अगर दवा बंद हो जाती तो फिर यह दोबारा ये बीमारी हो सकती है। तो मानसिक विक्षिप्तता जो होती है, तो मानसिक विक्षिप्तता में जो साइकोसिस बोलते हैं हम, जिसको मनोविक्षिप्तता बोलते हैं, वह और रोगों से अलग हटके होती है, अर्थात जो न्यूरोसिस होते हैं और उससे अलग हटके साइकोसिस में।
1: डॉक्टर साहब, ये रोग किस उम्र के लोगों को ज़्यादातर होने की संभावना होती है?
0: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। रोग जो होते हैं यह ज़्यादातर जो 15 साल से ऊपर वाले ही होते हैं। ऐसे तो इसमें बहुत वैसा एज का बहुत ज़्यादा इका नहीं किया गया है, पर 15 साल से उम्र वाले बच्चों में इस तरह के मान बच्चे से लेके बड़े तक में इस तरह के रोग के लक्षण पाए गए हैं, और ये इसमें हेरिडिटी भी देखा गया है। हेरिडिटी भी 0.5% जो आते हैं यह बीमारी हेरिडिटी से होता है। अर्थात हेरिडिटी कहने का मतलब है कि जिनके माता पिता या परिवार के जो जनरेशन के पहले जनरेशन के लोग हैं उनके आने वाले जनरेशन में ये बीमारी होने की संभावना बनी रहती है।
1: अच्छा, ये होने की वजह क्या हो सकती है?
0: होने की कई वजह हैं। पहला कि वो सामाजिक वातावरण जिसमें वह रह रहा है वहाँ सही से उसका रियरिंग लालन पालन नहीं हुआ हो, सारी सुविधाएं जो उसकी मनोकांक्षा है वो पूर्ण नहीं हो पा रही हो, या फिर अगर हम कहें कि कुछ रासायनिक शरीर के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उसका असंतुलन होना, गड़बड़ी जैसे डोपामाइन सेरोटोनिन ये सब की गड़बड़ी से इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो इस तरह की बीमारी की रोकथाम के लिए साथ साथ हमको देखना पड़ता है कि किस तरह से बच्चे का बचपन में ही रियरिंग हो रहा है और लालन पालन हो रहा है, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह के जो बीमारी के जो ये पाए जाते हैं वो अनुवांशिकता के भी लक्षण होते हैं, अनुवांशिकता में भी ये पाए जाते हैं बीमारी।
1: डॉक्टर साहब, आजकल का जो रहन सहन है, जो खान पान है लोगों का, दूषित वातावरण भी कह सकते हैं, तो ये कितना प्रभावी है किसी के भी लोगों के मन को विक्षिप्त करने का, उसके अंदर मानसिक रोग के बढ़ने का?
0: हाँ, ये है कि बच्चों में या अगर बोले समाज में इस तरह के जो निम्न स्तरीय जो रहन सहन हो गया है, और उसमें भी अगर उनकी लालन पालन अच्छे ढंग से नहीं हुई है, या उनकी सुख सुविधाएं या जो बच्चे को चाहिए वो आवश्यकताओं की पूरी नहीं हुई, तो बच्चों में या कहीं ना कहीं असंतोष की भावना पनपती है, और उसको पाने के चक्कर में जो है बच्चे या बड़े जो होते हैं वो कुछ ना कुछ गलत कार्य के या गलत करने के तरीके की ओर मुड़ जाते हैं, और जिससे वह कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे इस रोग के शिकार होते जाते हैं।
1: अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी है, अगर मनोविक्षिप्तता की तरफ वो बढ़ रहा है, तो उसमें कौन से लक्षण परिलक्षित होंगे, यानी कौन से लक्षण को देखकर समझा जा सकता है कि इसके व्यक्ति के अंदर मनोविक्षिप्तता है?
0: हाँ, सबसे पहला तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जीवन स्तर जो है वो गड़बड़ा जाता है, या डेली एक्टिविटी वो गड़बड़ा जाता है, जिसमें नींद की कमी होने लगती है, भूख की कमी होने लगती है, अपना वो ध्यान नहीं रख पाता है, उस तरह से उसमें डर की भावना पनप जाती है, वह समाज से कटा कटा रहता है, परिवार से कटा कटा रहता है, ना उसको टीवी देखने

0: मन लगता है, ना किसी तरह की कोई सामाजिक जो उत्सव महोत्सव होता है उसमें पार्टिसिपेट करने का उसको मन करता है, बल्कि वह कटा कटा रहता है और अकेले अकेले रहता है। वो अकेले में ही जीवन मन व्यतीत करना, और उसको उसी में ये मिलता है। लोगों के बीच भीड़ में वो जाने से कतराता है, घबराता है, वो जाना नहीं चाहता है इस भीड़ से, और वो अपने आप को अकेला रखता है, समाज से कटा हुआ रहता है।
1: डॉक्टर साहब, आजकल के परिवेश में लोग जो जब बूढ़े होने लगते हैं, उनके काम का बोझ उनके ऊपर से खत्म हो गया, शरीर थक गया उनका, परिवार में सब लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि वे बुजुर्ग हैं तो उनको शांति से घर में रहना पड़ता है। हो सकता है कि परिवार के कई सदस्य उनके साथ बैठने की स्थिति में ना हो, या उनका कोई लाइफ पार्टनर, उनका पारिवारिक परिवेश ऐसा हो कि वो बिल्कुल अकेले हों। तो ऐसे में इस बीमारी के बढ़ने के कितनी प्रतिशत ये बढ़ जाते हैं कारण की, ये वजह से बीमारी बढ़ना है इनके अंदर में?
0: यह वाकई में बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये मैं कहूँगा कि वो आने वाले दिनों में हमारे समाज में जो बुजुर्ग होते जा रहे हैं उनके उनके लिए एक बहुत सोचनीय हम लोग के लिए एक विषय है कि वृद्धावस्था जैसे जैसे होते जाती है वैसे वैसे उसका समाज से कटते जाना या लोग उसे उपेक्षित करना, यह अपने आप में एक अपने आप उनमें बीमारी डेवलप कर जाता है, बीमारी का रूप धारण कर लेता है। तो समाज के लोग जो वृद्ध होते जा रहे हैं, या तो वह समाज से साथ जुड़े रहें, ये उनको घर में पूरी प्यार सहानुभूति, और जिस तरह से वो अपना जीवन पहले व्यतीत करते आए वह दिनचर्या वो कभी चेंज ना करे, उस दिनचर्या में ही वो रहे और अपना एक्टिव रहे, ज़्यादातर सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले, परिवार के साथ जुड़ के रहे, एक अच्छे सामंजस्य स्थापित करे, तो वो अच्छा जीवन जी सकते हैं। दूसरी बात है कि आज सभी के पास इतनी व्यस्तता हो गई है कि पति पत्नी के बीच में आपस में समय नहीं दे पा रहा है लोग, बच्चों के बीच समय नहीं दे पा रहा है, भाग दौड़ के जीवन इतनी ज़्यादा हो गई है कि कैसे लोगों को अपने जीवन को सरवाइव करना है, इसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान रह रहे हैं। तो इसके कारण से भी बच्चे अलग, बच्चे परिवार में हैं पर उनको भी इतनी परे से पढ़ाई लिखाई की एक जिम्मेवारी रहती है, स्कूल जाना है, ट्यूशन करना है, उसके बाद आना है, खेल कूद करना है, तो उनके पास भी समय नहीं बच पाता है कि वो अपने दादाजी के पास बैठे, नानी जी के पास बैठे और अपना समय व्यतीत कर। तो इस कारण से बुजुर्ग लोग भी उपेक्षा का शिकार होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं समय की कमी भी हम महसूस करते हैं कि समाज में समय की अब कमी हो गई है लोगों के पास, कि वो एक दूसरे के से दुख सुख बांट सके, और कारण जो बुजुर्ग हो रहे हैं वो उपेक्षित होते जा रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, हमारे समाज के तमाम लोग स्वस्थ रहें, इस तरह की बीमारी उनके अंदर ना हो, तो ये उनके ऊपर कितना प्रतिशत निर्भर करता है कि वे स्वयं चाहें तो स्वस्थ रह सकते हैं, स्वयं की कोशिश से इस मनोविक्षिप्तता से बचे रह सकते हैं?
0: हाँ, ये है कि लोग खुद चाहें तो इस बीमारी से बचे बच के रह सकते हैं, इसके लिए उनको अपनी जो नियमित व्यवहार, जीवन जीने की शैली।
2: अभी आप सुन रहे थे मनोविक्षिप्तता पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी समुद्घोषितवान् यत् भारतम् अन्ताराष्ट्रिय विधि नियमानां संवाद विदेहे बहुपक्षीय सहाय्य भावनाधारेण सुरक्षित शांतिपूर्ण शाश्वत रूपकस्य अंतरिक्ष मंडलस्य पूर्णं सुदृढ़ं च समर्थनं संधारयति। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् वैज्ञानिक तथ्यानि पारदर्शी सत्यनिष्ठतया समग्र लोक कल्याणाय विनियुक्तानि स्युः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना एतानि वक्तव्यानि फ्रांस देशस्य पैरिस नगरे समायोजिते अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्ष सम्मेलनावसरे आभासीय माध्यमेन प्रकाशितानि।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful

0: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सबलं प्रतिपादितवान् यत् अंतरिक्ष कक्षासु संवृद्धि संघर्ष स्थाने सहयोग भावना अल्पकालिक लाभ स्थाने शाश्वतता बहिष्करण स्थाने च समावेशिता प्राथमिक रूपेण स्यात् इति प्रतिपादितवान्। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनस्य भूमिकां प्रतिपादयन् श्री मोदी प्रोक्तवान् यत् स्वीय कार्यदक्षता कारणेन स्वीय ऐतिहासिक अभियानैश्च एतया संस्थया वैश्विक प्रशंसा समर्जिता। अष्टादशं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनं श्वः प्रभृति नवदेहल्याः भारत मण्डपम् इत्यत्र समारप्स्यते। सम्मेलनम् आलक्ष्य भव्यायोजनस्य समग्र सज्जाः सम्प्रति अन्तिमे चरणे प्रविष्टाः। द्विदिवसीये शिखर सम्मेलने ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारतम्, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात इत्येतं समेत्य एकादश प्रमुखाः विकासशील अर्थव्यवस्थाः मञ्चं धारयिष्यन्ति। भारतस्य अध्यक्षतायां समायोक्ष्यमाणस्य एतस्य शिखर सम्मेलनस्य विषयः नवाचार सहकार सतत विकासाय च निर्माणमिति। शिखर सम्मेलने रूस देशीयः राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन इत्यसौ, चीन देशीयः राष्ट्रपतिः शी जिनपिंग इत्यसौ, दक्षिण अफ्रीकायाः राष्ट्रपतिः सिरिल रामाफोसा इत्यसौ, मिश्र देशीयः राष्ट्रपतिः अब्दुल फतह अल सीसी, इंडोनेशियायाः राष्ट्रपतिः प्रब्रुवो सुबियांतो, ईरान देशस्य राष्ट्रपतिः मसूद पेजेकिश्कियन इत्यसौ, अबुधाबी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इत्यसौ, अथ इथियोपियायाः प्रधानमंत्री अबी अहमद अली इत्येतं समेत्य वैश्विक नेतारः सम्मेलने भागं भजिष्यन्ति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनम् आलक्ष्य दिल्ली यातायात आरक्षी बलेन संसूचितं यत् अद्य मध्याह्ने द्विवादनतः सार्ध अष्टवादन पर्यन्तं प्रमुख मार्गेषु यातायाते परिवर्तनं नियन्त्रिता च व्यवस्थिता प्रभवेत्। आरक्षी बलानुसारेण आपत्कालिकाः आवश्यकाश्च सेवाः प्राथम्यं भजेरन्। सममेव दिल्ली मेट्रो यान विभागेनापि आवश्यकाः सूचनाः प्रसारिताः। अन्ते च क्रीडा वार्तासु, महिला क्रिकेट एशिया चषक स्पर्धायाः उपान्त्य चक्रे गतरात्रौ भारत बांग्लादेश दलयोः मध्ये समायोजितवे द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेश दलं 40 धावनांकैः पराभूय एशिया चषक स्पर्धायाः निर्णायके चक्रे स्थानं संप्राप्तम्। दुबई नगरे अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रांगणे समायोजिते एतस्मिन् द्वन्द्वे भारतेन प्रथमं दण्डेन क्रीडयता स्पर्धा विजिता इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिशकियन हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रियासिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति

0: मार्ग 30 जनवरी मार्ग राजेश पायलट मार्ग मथुरा रोड जनपद अशोका रोड बाराखंबा रोड नीति मार्ग पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वो अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचव से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
1: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। दिल्ली नगर निगम ने अनाधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में एक सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The 18th BRICS summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place for the grand event. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. The theme of India's chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will participate in the summit. United Nations Secretary General Antonio Guterres, Director General of WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, and President of New Development Bank, Dilma Rousseff, are among the heads of international organizations who will participate in the event. Prime Minister Narendra Modi is likely to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin today. The President of Russia and Foreign Minister of Brazil arrived in the national capital last night to participate in

अभी से कुछ देर बाद यानी कि 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे पलाश कार्यक्रम। इसके तहत सुनेंगे आप लोकगीत कलाकार होंगे विंध्यवासिनी देवी और साथी भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में सुनेंगे आप सुगम संगीत 7:45 पर। समाचार प्रभात 8:15 पर, मॉर्निंग न्यूज़ और प्रादेशिक समाचार 8:30 आप सुन सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित होंगे और शेष समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:45 पर हम अपने स्टूडियो से सुनवाएंगे आपको कुछ फिल्मी गाने गीत गुंजन कार्यक्रम के तहत। जोहार पलामू सुनेंगे आप हमारे यह कार्यक्रम 9:00। प्रस्तुति स्वर होगा निर्मला तिवारी का, संयोजन करता होंगे शिव प्रशांत गौरव। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी आप सुनेंगे 1370 9:30 हमारे स्टूडियो से। 10:00 एक बार पुनः शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में हिंदी अंग्रेजी समाचारों के लिए। 10:10 पर लिए चलेंगे आपको आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के विभिन्न कार्यक्रम 5:29 तक।

श्रोताओं, 5:10 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रकृति के रंग आकाशवाणी के संग। जी हाँ, और 5:35 पर महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। चर्चा होगी इस कार्यक्रम में प्राथमिक चिकित्सा क्यों है ज़रूरी, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस पर जो 12 सितंबर को मनाया जाता है, संयुक्त परिवार का महत्व, इस पर भी चर्चा होगी। रूबी कुमारी की वार्ता सुनेंगे आप। बरसात में दूषित खान पान से बचें। प्रादेशिक समाचार 6:00, 6:02 से सुनेंगे खेती बाड़ी कार्यक्रम। चर्चा होगी इस कार्यक्रम में समन्वित मछली पालन और गेहूँ की खेती की तैयारी पर। एक महिला किसान से भेंटवार्ता सुनेंगे आप, मोटे अनाजों की खेती पर। भेंटवार्ताकार केलेमेंसिया केरकेट्टा नावाड़ी रामगढ़ पलामू, बातचीत करेंगे संतोष कुमार। प्रथम प्रसारित यह भेंटवार्ता होगी। कृषि उत्पाद ग्रामीण विकास पर आधारित कार्यक्रम ग्रामीण सभा का समय होगा 6:30। समसामयिक कृषि कार्य पर होगी चर्चा। बतख पालन से फायदे, इस पर आज का विचार। एक महिला किसान ओपोलिना ओडेया महुआ बता नावाड़ी रामगढ़ पलामू से ले गई भेंटवार्ता सुनेंगे आप, बातचीत करेंगे संतोष कुमार। मौसम विभाग से प्राप्त आज का मौसम, पलामू की मंडी से प्राप्त आज का बाजार भाव भी सुनेंगे आप, इसी कार्यक्रम में जान पाएंगे। 6:55 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र में हम शामिल होंगे। प्रादेशिक समाचार 7:00 सुनेंगे आप, और 7:10 पर जिले में आज कल 7:15 पर अपने स्टूडियो से आपको सुनवाएंगे एक रंग कार्यक्रम, और इसके तहत सुनेंगे आप कुछ फिल्मी गाने। 7:30 आपको ले चलेंगे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का आंखों देखा हाल। 8:45 पर हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार 9:00, उर्दू समाचार 9:15 पर, और पुनः 9:30 से आप क्रिकेट मैच का आनंद ले सकेंगे, सुन पाएंगे वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 सेमीफाइनल 2। हिंदी अंग्रेजी समाचारों के लिए 11:00 पुनः शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में, और 11:10 से पुनः आप क्रिकेट टूर्नामेंट का लुत्फ उठा सकेंगे, सुन पाएंगे आप। 11:45 पर सभा समापन किया जाएगा। तो यह थी जानकारी कार्यक्रमों से संबंधित। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पलाश कार्यक्रम के तहत आइए आप लोकगीतों का आनंद लीजिए। कलाकार हैं विंध्यवासिनी।

अभी आप सुन रहे थे विंध्यवासिनी देवी और साथियों को। आइए अब आपको सुनवाते हैं झिरगा भगत और साथियों को।

अभी आप सुन रहे थे झीरगा भगत और साथियों से उरांव लोकगीत। इसी के साथ ही लोकगीतों का पलाश कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम स्वर सरिता के तहत चंदा कौसलें। फनकार होंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह।

ये आकाशवाणी डाल्टनगंज है। सुगम संगीत के कार्यक्रम सरसरता के तहत आइए सुनते हैं चंद गज़लें। फनकार हैं भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह।

मिताली सिंह की गाई इसी गजल के साथ ही सुगम संगीत का स्वर सरता कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हम शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में।

और अब मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। और भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन हिस्सा लेंगे। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

0: बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: ब्रिक्स समूह का गठन सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। भारत ने इस वर्ष 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यह चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, सीआईआई और एसोचैम के सहयोग से किया जा रहा है। ये सम्मेलन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला प्रमुख कारोबारी कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
2: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए।
2: हमें ये तय करना होगा कि 2047 तक ड्राई लैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: 4 दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों

0: केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था के 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
5: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पथनम थिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पथनम थिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की और पलक्कड़ जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
7: धन्यवाद फरहत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है बढ़ता दायरा बदलता विश्व अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है। लोकसत्य लिखता है प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में बाजार 2% गिरा फिर भी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ SIP। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। शहरों से ज्यादा गांवों में बिक रहे दोपहिया, 55% पहुंची हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटी बाइक पहली पसंद, वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बड़े इंजन पर जोर, दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। दैनिक जागरण ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीरी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है जन्नते कश्मीर में 4 दिन तक चला बॉलीवुड के दिग्गजों का मेला, बॉलीवुड का वादा कश्मीर को फिर बनाएंगे फिल्मों की जन्नत।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. 18th BRICS summit to begin at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow. Russian President Vladimir Putin arrives in New Delhi to attend the summit. IMF describes India a key engine of global growth after the country's economy expanded 7.8% in first quarter of current fiscal. Trump administration proposes scrapping 60-day grace period for laid-off H-1B workers in U.S. National Testing Agency releases provisional answer keys for retest of English, Commerce and Sociology papers of UGC NET June 2026. And in cricket, India beat Bangladesh by 40 runs in first semi-final of Women's Asia Cup 2026 in Dubai. And the news in detail. The 18th BRICS summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place for the grand event. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. The theme of India's chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will participate in the summit. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira.
9: Saudi Arabia's Minister of Foreign Affairs, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, will also participate.

0: Jay Malhotra, SEBI Chairman Tuhin Kanta Pandey, former UIDAI Chairman Nandan Nilekani, and SBI Chairman C.S. Shetty addressed sessions on agentic AI, tokenization, and quantum technology. Prarthana, Akashwani News, Mumbai.
1: This is Akashwani giving you the news.
2: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
1: The International Monetary Fund, IMF, has described India as a key engine of global growth after the country's economy expanded 7.8% in the first quarter of current fiscal. The stronger-than-expected performance was driven by services and exports, even as the economy faced an energy price shock, said Julie Kazak, director of the IMF's communications department.
3: India's real GDP grew by 7.8%. That was above our staff expectations and also the consensus among other observers. This upward surprise was driven by stronger than expected activity in the services sector and also in exports.
1: Her comments came in response to questions on India's latest growth figures, its macroeconomic data, and the effect of higher crude oil prices on a major energy importer. Kozak said India's latest GDP release incorporated a new index of industrial production and the new producer price index series. The changes, she said, should improve the country's GDP estimates. The IMF said it was also monitoring the effect of rising oil prices on India's economy. Kozak noted that costlier energy creates pressure for all oil-importing countries. The National Testing Agency, NTA, has released provisional answer keys for retest of English, Commerce and Sociology papers of UGC NET June 2026. Candidates can challenge the answer keys online through the official UGC NET portal till 13th of this month. NTA announced retest for three papers of the UGC NET examination, English, Commerce and Sociology, following complaints about several errors in these papers. The English and Commerce paper was held on 9th and the Sociology paper was conducted yesterday. The results and ranks for the Joint Council of Scientific and Industrial Research UGC National Eligibility Test June 2026 examination have been declared. The National Testing Agency has said that the candidates can check their result and rank through the official website. Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan has called for an integrated approach based on science, policy and market support to transform dryland agriculture, strengthen food and nutritional security and improve farmers' livelihoods. The minister was addressing the opening session of Dryland Congress 2026 in New Delhi. Mr. Chauhan said that with appropriate scientific interventions, policies and market support, drylands can become a source of strength for India and other regions facing similar challenges.
4: Dry land is not our weakness. With the right science, the right policies and the right market, this dry land can become India's and Africa's greatest asset. And my appeal to all the scientific institutions is that we should all come together and make this transformation happen.
1: The Trump administration has proposed ending the up to 60-day grace period that allows H-1B workers and several other employment-based visa holders to remain in the United States after losing their jobs. The move could sharply narrow the time available to find a new employer or pursue another immigration option. We have a report.
5: Department of Homeland Security proposal, scheduled for publication in the Federal Register today, would remove the provision which covers E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B-1, L-1, O-1 and TN visa classification and their dependents. If finalized, workers whose employment or qualifying activity ends would generally have to leave the United States immediately unless they are otherwise authorized to remain. DHS said the present grace period disconnects the alien's lawful status from the very basis of eligibility for these employment-based non-immigrant classifications. The proposal would restore what DHS described as its earlier policy, under which a worker was expected to depart once employment with the sponsoring employer ended. Jigyasa Pandey from News Desk.
1: 25 years after the deadliest attack on U.S. soil, Americans are pausing to remember the nearly 3,000 victims of 9/11. Ceremonies and events are taking place across United States to mark the somber anniversary of the 2001 Al-Qaeda hijackings that forever changed the nation. On 11th of September 2001, four hijacked passenger planes were used as weapons. On to sports. In cricket, India produced a brilliant all-round performance to thrash Bangladesh by 40 runs in the first semi-final of the Women's Asia Cup 2026 in Dubai last night. India's victory secured their place in Women's Asia Cup 2026 final, with the second semi-final between Sri Lanka and Pakistan determining their opponents. In the second semi-final today, Pakistan will face Sri Lanka in Dubai. The match will start at 8 p.m. Indian Standard Time. The winner of that contest will meet India in the final on Sunday. India made a strong start at the World Parachuting Championship, bagging four medals including one gold, two silver and one bronze on the opening day of the event at Changwon in South Korea yesterday. The Indian women's team of Moona Agarwal, Avni Lekhara and Millie Shah clinched gold in the R2 10-meter air rifle standing SH1 team event. Moona Agarwal also won silver in the individual event, while Avni Lekhara got bronze. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjeet Kaur.
6: Thank you, Shagun. The Asian Age headlines: PM backs safe space for benefits for all humanity at Paris summit, lauds ISRO and scientists, invites world to join India's space research, the paper adds. Indian space station by 2035, moon landing by 2040, says Modi. India turns diplomatic hotspot as BRICS leaders to share stage is a front page headline in the Tribune. The paper adds the national capital is set to become the center of global diplomacy. And finally, the Pioneer informs an ensemble of over 100 artists drawn from India and other member countries of BRICS is set to perform at a gala dinner that Prime Minister Narendra Modi will host for various world leaders on the opening day of the group's summit. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Sarabjeet. And now before we end the bulletin, the headlines once again. 18th BRICS summit to begin at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow. Russian President Vladimir Putin arrives in New Delhi to attend the summit. IMF describes India as a key engine of global growth after the country's economy expanded 7.8% in first quarter of current fiscal. Trump administration proposes scrapping 60-day grace period for laid-off H-1B workers in US. National Testing Agency releases provisional answer keys for retest of English, Commerce and Sociology papers of UGC NET June 2026. And in cricket, India beat Bangladesh by 40 runs in first semi-final of Women's Asia Cup 2026 in Dubai. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
7: आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
8: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
9: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
8: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
10: बस पोती का जन्म ठीक से हो गया, चलो सब घर चलते।
11: सुनिए, डॉक्टर साहब ने अस्पताल में दो रात रुकने को बोला था।
10: नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं।
11: अरे देख के, हाय गिर गए।
12: अच्छा मलहम लगाओ, पट्टी करो और एक्सरे करो जल्दी।
13: देखा आपने, कोई भी गड़बड़ होने पर यहाँ तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद के 48 घंटे माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसलिए अस्पताल में दो रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेकर चांस क्यों लेना,
14: चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना।
15: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
16: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
17: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
16: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
17: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
16: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
18: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
19: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दो इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल, 16 सितंबर को होगी सुनवाई। बिना सूचना केबल इंटरनेट तार काटने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, बीएसएनएल के सीजीएम को 14 सितंबर तक बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर हुई अहम बैठक। प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू होने वाले सेवा माह की बनी पूरी रणनीति। मौसम विभाग ने रांची, गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा सहित कई जिलों के लिए आज भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील। और रांची के मोराबादी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में सीआईएससीई राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का भव्य आगाज। 11 राज्यों की बालिका टीमें दिखा रही हैं दम। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली की सीबीआई जांच की मांग अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने सर्वोच्च न्यायालय में दो इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल की है। इस संवेदनशील मामले की सुनवाई 16 सितंबर को निर्धारित की गई है। मंच का कहना है कि वे लाखों छात्रों का पक्ष शीर्ष अदालत में मजबूती से रखेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड समेत चार हाई कोर्ट में नई नियुक्तियों की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने झारखंड हाई कोर्ट के लिए जुडिशियल ऑफिसर मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा के नाम मंजूर किए हैं। इसके अलावा दिल्ली के लिए 8 और कर्नाटक के लिए 3 नामों का प्रस्ताव है। राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी और अधिसूचना के बाद यह नियुक्तियां प्रभावी होंगी। रांची में बिना सूचना इंटरनेट काटे जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की खंडपीठ ने सभी ऑपरेटरों से कनेक्शन बहाली की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक को 14 सितंबर तक बिना शर्त लिखित माफी मांगने और सेवाएं तुरंत चालू करने की का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया श्रीलंका यात्रा क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद ऐतिहासिक रही है। लगभग 38 वर्षों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री का यह पहला श्रीलंका दौरा है, जिसमें रक्षा उपकरण और सैन्य प्रशिक्षण को लेकर 3 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि यह दौरा भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर विजन को मजबूत करता है।
20: भारत एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते भारत ने उनकी जबरदस्त सहायता की, तो ऐसे संदर्भ में जब हम देखते हैं कि अपने रक्षा मंत्री जी जब गए तो उन्होंने कुछ एक डिफेंस एमओयू दस्तखत किए और जो कैपेसिटी और जो कैपेबिलिटी हमने अपने L-70 को दी वही उनको देने की कोशिश की है। जैसे हम लोगों ने उसको ड्रोन के लिए अपग्रेड किया है। श्रीलंकन एयरफोर्स ने भी अपने एयर डिफेंस के लिए इन गन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं।
19: भाजपा प्रदेश कार्यालय में सेवा संकल्प अभियान को लेकर अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होने वाले सेवा माह की तैयारियों पर रणनीति बनी। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर व्यापक अभियान चलाने का आह्वान किया।
21: युवा मोर्चा देश भर में एक यात्रा निकाल रहा है, उनके जन क्षेत्र से उनके कर्म क्षेत्र, गुजरात से वाराणसी और एक वाराणसी से गुजरात तक इस प्रकार की एक यात्रा आयोजित की जा रही है, बाइक यात्रा। ये झारखंड के भी 4 जिलों में आने वाली है, जो हम अपना गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, इस जिलों में ये यात्रा आएगी। युवा मोर्चा उसका नेतृत्व करेगा, उसका स्वागत करेगा।
19: आगामी त्योहारों को लेकर रांची जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीसी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में गणेश चतुर्थी, करम और दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए 5 बड़े निर्देश जारी किए गए। डीसी ने स्पष्ट किया कि पंडाल निर्माण से लेकर विसर्जन तक सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरतने वालों पर सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने प्रसिद्ध बेतला नेशनल पार्क की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध वन्य जीवों की तारीफ की है। क्षेत्र के दौरे पर आए भाजपा नेता ने कहा कि बेतला झारखंड की अनमोल धरोहर और समृद्ध जैव विविधता का केंद्र है।
0: यहाँ हर पत्ते पर झारखंड का सूरत और सौंदरता की इतिहास लिखी है। राजा मेदनी का ये पवित्र स्थल है और यहाँ पर हर चीज मन को मोहने वाला, प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें इसकी प्रेरणा ये स्थल देता है।
19: साहिबगंज के उधवा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में अवैध रूप से मछली पकड़ने से रोकने पर ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर हिंसक हमला कर दिया। इस झड़प में 5 से अधिक वनकर्मी घायल हुए हैं। रेंजर पंचम दुबे ने बताया कि उग्र भीड़ ने वन विभाग के लोहिया भवन गेस्ट हाउस में घुसकर सीसीटीवी कैमरे, खिड़कियां और गाड़ियां तोड़ दी।
2: रामसर साइड झील में मछली का शिकार करना तो बिल्कुल अवैध है। कर्मचारी त्वरित कार्रवाई करते हुए रामसर झील गए और वहां जाने के बाद वहां अपराधी को जाल सहित बंदी बना करके लेकर के अपने रेस्ट हाउस में पहुंचे। इसी बीच गांव के सैकड़ों लोग रेस्ट हाउस पर आक्रमण कर लिए मुदाले छुड़ाने के लिए।
19: धनबाद के BCCL एरिया 3 के गोविंदपुर रेलवे साइडिंग के पास CISF ने अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने आम बागान और सिलेक्टर बस्ती क्षेत्र में विशेष छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कोयले की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही अवैध कोयला लदी 5 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। सुरक्षा बल इस मामले की जांच कर रहा है। मौसम विभाग ने आज रांची के अलावा गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा जिलों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लेने की अपील की है। रांची के मोराबादी स्थित जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में CISCE नेशनल हॉकी टूर्नामेंट का भव्य आगाज हो गया है। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों के पूर्ण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधियां भी बेहद जरूरी हैं।
22: CSE बोर्ड हमेशा करिकुलम को हमेशा क्लासरूम और फील्ड लर्निंग के लिए डेवलप किया जाता है। जो बच्चों को आप देख रहे हैं, ये खिलाड़ी आज यहाँ नेशनल लेवल खेल रहे हैं। हम लोग इनके लिए आशा कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये लोग देश के लिए भी खेले, और ये संभव है क्योंकि बच्चों की मेहनत भी है और सभी विद्यालय के प्रिंसिपल्स और स्कूल्स ने बहुत अच्छे से तैयारी किया रखा है।
19: अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने IRCTC मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, CGL गड़बड़ी मामले में बोकारो के DPRO और APRO से पूछताछ, दस्तावेज वेरीफाई कराए। हिंदुस्तान ने लिखा है, झारखंड पात्रता परीक्षा दोबारा कराने का आदेश। प्रभात खबर के शब्द हैं, NGT की रोक के बाद भी उठ रहा अवैध बालू, 440 घाटों में से 14 ही चालू, इससे बढ़ रहा अवैध कारोबार। दैनिक जागरण लिखता है, NIA की छापेमारी में मिले 1 करोड़ के गहने, 15 लाख नकद। और अब अंत में मुख्य समाचार। JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल, 16 सितंबर को होगी सुनवाई। बिना सूचना केबल इंटरनेट तार काटने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, BSNL के CGM को 14 सितंबर तक बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर हुई अहम बैठक। प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू होने वाले सेवा माह की बनी पूरी रणनीति। मौसम विभाग ने रांची, गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा सहित कई जिलों के लिए आज भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया और रांची के मोराबादी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में CISCE राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का भव्य आगाज। 11 राज्यों की बालिका टीमें दिखा रही हैं दम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: अरे पोस्टमैन साहब, आप तो पढ़े लिखे हो, बच्चों के टीकाकरण के बारे में कुछ जानकारी दो ना हमको।
4: अरे भोला, इसके लिए अपने निकटतम सहिया या ANM दीदी से संपर्क करो।
3: अच्छा,
4: इतना ही नहीं, गर्भवती महिला की जांच और देखभाल, खेल मनोरंजन की जानकारी, परिवार नियोजन की सलाह जैसी बहुत सी जानकारियां अब झारखंड सरकार उपलब्ध करा रही है।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम सहिया या ANM दीदी से संपर्क करें।
23: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
24: बच्चों के विकास के लिए विटामिन ए है बहुत जरूरी।
25: विटामिन ए बच्चों को बनाता है तंदुरुस्त, दूर करता है शरीर की कमजोरी।
24: हरी पत्तेदार साग सब्जियाँ, दूध और दूध से बने उत्पाद, पीले फल, मांसाहारी भोजन, ये है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत।
25: तो अपने बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए 6 माह के बाद बच्चे को विटामिन ए युक्त भोजन खिलाएं।
24: साथ ही 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 6 माह के अंतराल पर विटामिन ए की खुराक पिलाएं।
25: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगा हर्ट्स पर। श्रोता मित्रों, समय हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन का। आप तमाम साथियों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त निर्मला का नमस्कार। और सबसे पहले आइए सुनवाते हैं आपको यह गाना।

रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में हेमलता की मधुर आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे नैया फिल्म का गाना। आइए सुनवाते हैं अगला गाना जिसे हमने लिया है फिल्म हिमालय की गोद में, और गायक हैं मुकेश।

0: अभी आप सुन रहे थे बम्बई का बाबू फिल्म का गाना। आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में गीत के बोल मजरू के थे, धुन बनाई थी एसडी बर्मन ने, और इसी के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। जोहार पलामू कार्यक्रम का समय हो चला है, आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम। प्रस्तुति स्वर है निर्मला तिवारी का, संयोजन करता है श्री प्रशांत गौरव।
1: जोहार पलामू।

जोहार नमस्कार, स्वागत है आप तमाम साथियों का हमारे जोहार पलामू कार्यक्रम में। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, डर सबसे बड़ा कारण है जो हमें दुखी करता है। जीवन में किसी भी चीज़ से डरे नहीं, साहस ही सफलता की कुंजी है, शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु। स्वयं पर विश्वास रखें, क्योंकि यदि हम खुद पर भरोसा ना करें तो फिर आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। और आज ही की तारीख यानी कि 11 सितंबर सन 1893 में उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण शिकागो में दिया था। उनके ओजस्वी व्यक्तित्व और भाषण ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को सदैव प्रेरित करते रहे हैं, करते रहेंगे अपने प्रेरक विचारों से। और आज है आचार्य विनोबा भावे की जयंती। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भू आंदोलन चलाया था। वो कहते थे कि हवा पानी धूप की ही तरह भूमि पर भी, प्रकृति की ही ये भूमि देन है, तो भूमि पर भी सबका बराबर हक होना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए। उन्होंने सन 1951 में भू आंदोलन चलाकर जमीन दान में लेकर गरीबों में बांट दी थी। जी हाँ, जमींदारों से उन्होंने जमीन दान में ली और गरीबों में बांटी। उनका कहना था कि प्रेम, करुणा, अहिंसा ही सबसे बड़ी शक्ति है। वो कहा करते थे,

निष्काम भाव से किया गया कर्म ही मानव को शुद्ध और उन्नत बढ़ाता है। जी हाँ, और चलिए अब बातें कर लेते हैं मौसम की भी। मौसम के बारे में मौसम विभाग का कहना है कि आज भारी बारिश की संभावना बनी हुई है और इससे वज्रपात भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने अलर्ट रहने की सलाह दी है। तापमान की यदि हम बातें करें तो अधिकतम तापमान हमारे मेदिनीनगर में 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। और कल की यदि हम बातें करें तो कल तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इस तरह से कुछ रहने वाला है मौसम। और चलिए अब चलते हैं फिल्म संगीत की ओर, सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आप सुन रहे हैं जोहार पलामू कार्यक्रम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, और आइए अब बातें कर लेते हैं सेहत की। सेहत की यदि हम बातें करें तो हमारे शरीर का हर अंग यदि सेहतमय है, स्वस्थ है, तो ही हम स्वस्थ माने जाएंगे, क्योंकि आँख, नाक, कान, गला, पेट, हाथ, पैर, ये शरीर के सारे अंग एक साथ मिलकर हमें पूर्ण करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य तभी अच्छा होता है जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। अधिक शोर कितना खतरनाक होता है कानों के लिए, आइए जानते हैं। अधिक शोर या ध्वनि प्रदूषण हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई तरह से हानिकारक हो सकते हैं। 85 डेसिबल से अधिक की तेज आवाज़ हमारे शरीर पर बुरा असर डालती है। सुनने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। लगातार तेज़ शोर यदि हम सुनते रहते हैं तो कान के अंदरूनी हिस्सों की नाजुक कोशिकाओं को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। अत्यधिक शोर के कारण कानों में लगातार घंटी बजने या सनसनाहट की सी आवाज़ महसूस होने लगती है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका काफ़ी असर पड़ता है। लगातार शोर से मानसिक थकान, गुस्सा, तनाव बढ़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। तेज़ आवाज़ के कारण नींद पूरी नहीं हो पाती है, जिससे मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है, अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। हमें हृदय रोग की भी शिकायत हो सकती है यदि हम लंबे समय तक रहने वाले शोर में रहें तो। रक्तचाप और दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। बच्चों और वयस्कों दोनों में पढ़ाई या काम के दौरान ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी घट जाती है यदि हम लगातार तेज़ आवाज़ सुनते हैं, ध्वनि प्रदूषण से ग्रसित होते हैं तो। एकाग्रता में कमी आ जाती है, मानसिक तनाव बना रहता है, जैसा कि अभी हमने बताया, अनिद्रा की शिकायत हो जाती है, और जब नींद नहीं आएगी तो उसका तो स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए समय पर सो जाना, जल्दी उठ जाना और सारी दिनचर्या नियमित होना चाहिए। इसी तरह से ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, पर्यावरण, इन सब का असर हमारे सेहत पर, स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा होता है। और आज के दौर में जब हर समय मोबाइल हाथ में होता है तो बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सभी लोग मोबाइल से लगे रहते हैं, काम हो तो भी ना हो तो भी, और तेज़ आवाज़ में वो मोबाइल सुनते रहते हैं, या कंप्यूटर पर काम करते समय भी कानों में लगाकर वो सुनते रहते हैं। तो इस तरह से यदि हम थोड़ा भी अपने आप को आराम नहीं देते, अपने कानों को आराम नहीं देते हैं, तो इसका असर तो धीरे धीरे कान पर पड़ता ही है, और उसके बाद पूरी सेहत खराब हो जाती है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, क्योंकि हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से चिड़चिड़े होने लगते हैं, और कानों पर असर होने लगता है, सुनने की क्षमता घटने लगती है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, और इस तरह की कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है कि अत्यधिक तेज़ आवाज़ में ना तो संगीत सुने, ना ही आप बातें करें, ना ही आप किसी प्रकार से यदि TV देखते हैं, मोबाइल सुनते हैं, तो बिल्कुल इस तरह से तेज़ स्वर में ना सुने। तो ये तो हुई

आइए अब पलटते हैं इतिहास के पन्ने और आज की तारीख में दर्ज प्रमुख घटनाओं पर डालते हैं एक नज़र। 11 सितंबर की यानी कि आज की तारीख में सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने कट्टरता, सहिष्णुता और सभी धर्मों में निहित सच्चाई पर ऐतिहासिक भाषण दिया था। आज ही की तारीख को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था सन 1906 में। अमेरिकी नौसेना ने होंडुरास पर आक्रमण किया था आज ही की तारीख को। आज ही की तारीख को इराक और सऊदी अरब ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी 1939 में। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का निर्माण शुरू हुआ था आज ही की तारीख को। आज ही की तारीख को सन 1951 में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला बनी फ्लोरेंस चैडविक। उन्हें इंग्लैंड से फ्रांस पहुंचने में 16 घंटे और 19 मिनट लगे। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई थी आज ही की तारीख को 1961 में। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने दक्षिण पूर्वी लाहौर के निकट बुरकी शहर पर कब्जा किया था आज ही की तारीख को 1965 में। एयर फ्रांस का विमान संख्या 1611 नाइस के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में 89 यात्रियों और चालक दल के 6 सदस्यों की मौत हो गई थी 1968 में। सन 1971 में आज ही की तारीख को मिस्र में संविधान को अंगीकार किया था। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में पहली बार एक महिला अध्यक्ष निर्वाचित की गई थी आज ही की तारीख को सन 1996 में। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर आतंकवादी हमले में लगभग 6000 से अधिक लोग मारे गए थे आज ही की तारीख को सन 2001 में। गाजा पट्टी में 38 सालों से जारी सैन्य शासन समाप्त करने की घोषणा की गई थी आज ही की तारीख को। पेस और डेम की जोड़ी ने अमेरिकी ओपन का युगल खिताब जीता था आज ही की तारीख को। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश पीएन भगवती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति में चौथी बार पुनः निर्वाचित हुए थे आज ही की तारीख को। प्रख्यात बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भारत नागरिकता की मांग की थी आज ही की तारीख को। और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को लगातार तीसरी बार अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब मिला था आज ही की तारीख को। अमेरिकी अंतरिक्षयान अटलांटिक अंतरिक्ष के साथ जुड़ गया था आज ही की तारीख को। यरूशलम से सटे डेविड शहर में लगभग 2000 साल पुरानी सुरंग का पता चला था आज ही की तारीख को। रक्षा वैज्ञानिकों ने बनाई ल्यूकोडर्मा की अचूक हर्बल औषधि और इस हर्बल द्रव लगाने के लिए मरहम के रूप में उसे तैयार किया था और इस दवा के व्यावसायिक उत्पादन मार्केटिंग के लिए DRDO ने देश की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से करार किया जो आज ही की तारीख को हुई थी। तो इस तरह आज की तारीख में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। और चलिए इसके बाद पुनः चलते हैं गीत संगीत की ओर और एक गीत का आनंद लेते हैं।

0: दूसरों घड़ी की टिक टिक करती हुई सुई हमसे कह रही है कि अब इस कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। चलते चलते हम आपसे कहना चाहेंगे कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। जी हाँ, इसलिए कितनी भी रुकावटें आएं, राह में अड़चन आए, आप धैर्य रखिए, आपको रास्ता अवश्य मिलेगा। इन्हीं सुविचारों के साथ इस कार्यक्रम से अब दीजिए विदा। नमस्कार, जोहार।
1: जोहार पलामू।

आप सुन रहे थे प्रायोजित, क्षमा करेंगे, आप सुन रहे थे जोहार पलामू कार्यक्रम, प्रस्तुति स्वर था निर्मला तिवारी का, संयोजन करता थे श्री प्रशांत गौरव। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिए, भाग 1317।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं, दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काटें, फिर भी वे दोनों साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं। यही क्षमाशीलता और भाईचारे की भावना है। धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज ढाक से। अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी। सभी श्रोताओं को आभार खूबसूरत संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, प्रेरक प्रसंगों के सप्ताह के अंतिम दिन हम लेकर आ रहे हैं एक और अद्भुत प्रेरक प्रसंग। आज हम जानेंगे एक ऐसे महान विद्वान और शिक्षाविद के बारे में जिसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इस महान समाज सुधारक और विद्वान को इतिहास ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से बड़े सम्मान के साथ याद करता है। पहले जानते हैं कैसा था उनका बचपन। जरा सोचिए श्रोताओ, एक बालक पढ़ना चाहता है लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। उसके घर में न पर्याप्त रोशनी है, न पढ़ने की सुविधाएं हैं और न ही कोई आरामदायक वातावरण। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि वो पढ़ते कैसे थे। कहा जाता है कि वो कई बार सड़क पर लगे गैस के लैंप की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करते थे, जो आज हम सोच भी नहीं सकते कि कोई विद्यार्थी सड़क की रोशनी में बैठकर घंटों पढ़ाई कर लेगा। श्रोताओ, उस युवक के मन में एक सपना था, ज्ञान प्राप्त करना। उनके पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय बहुत कम आय पर काम करते थे। परिवार के पास बहुत अधिक साधन नहीं थे। ईश्वर चंद्र को बचपन से ही समझ में आ गया था कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं बल्कि संघर्ष करना होगा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो परिस्थितियों को दोष दें या मेहनत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना।

0: वे पढ़ते रहे, संस्कृत का अध्ययन करते रहे, लगातार मेहनत की। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि आगे चलकर उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली, अर्थात विद्या का सागर। ये जानना रोचक होगा कि उनका मूल नाम ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन बाद में सम्मान के साथ उन्हें विद्यासागर कहा जाने लगा। एक सड़क के लैंप के नीचे पढ़ने वाला बालक विद्यासागर बन गया। और सबसे अधिक प्रेरित करने वाली बात, उन्होंने अपनी शिक्षा को केवल अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने समाज सुधार और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया। आइए श्रोताओं, जरा विचार करें, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या हो सकती है? मेरी नज़र में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, सुविधाओं की कमी को बहाना मत बनाइए। दूसरी, लगातार मेहनत कीजिए। और तीसरी, सफल होने के बाद दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। देखिए, आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ऑनलाइन पुस्तकालय हैं, यूट्यूब पर हजारों शैक्षिक वीडियो हैं और पढ़ने के लिए अनेक साधन हैं। मैं तो कहूँगी कि आज हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उतनी पहले शायद कभी नहीं थी। फिर भी हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास वातावरण नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का व्यक्तित्व तो हमें प्रेरणा देता है कि कभी कभी साधन कम हो सकते हैं, लेकिन संकल्प बड़ा हो सकता है। तो श्रोताओ, हमारा आज का प्रेरक प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को लगातार फॉलो कीजिए। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है शो ऑफ क्लाउड्स। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची के बारे में बताया गया है कि जब वो आकाश में बादलों को देखती है तो उनमें उसे सुंदर सुंदर छवियां नजर आती हैं। कार्यक्रम प्रोत्साहित करता है कि बच्चे कल्पनाशील बने।
1: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
2: I am good, sir.
1: Fine. Good. Okay, so tell me, what do you like most?
2: I like playing, sir.
3: I like painting, sir.
1: Very good. Anyone else?
4: Sir, I like singing.
5: I like playing with my pets.
1: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
6: Yes, sir.
3: We like.
1: Lovely butterflies?
6: Yes, sir.
1: And lovely, colorful, chirping birds.
6: Yes, sir. We like it.
1: That's very nice, children.
3: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
1: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
6: Yes, sir.
1: The rivers, the mountains, and the green trees.
6: Yes, sir.
1: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
6: Like us?
1: Would you like to listen?
6: Yes, sir.
3: We love to listen the story.
1: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
6: Okay, sir.
1: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me, okay?
6: Okay, sir.
7: We love to recite it.
1: As I lie on my back. Looking up at the sky. I see a big white bear. Looking down at me. As I lie on my back. Looking up at the sky. I see a ship sailing. on a wide

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes, and one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Buddy Langlingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in Production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India.
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
7: मेरा नाम साक्षी है। मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी। उसने अचानक से ब्रेक मारा। और उसकी टेल लाइट ही नहीं चली। बस एक छोटा सा डिम बल्ब था। वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी। एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता है।
8: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
6: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम होमी व्यारावाला। इस कार्यक्रम में भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन और एक सफल महिला पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका और योगदान के बारे में बताया गया है।

0: अरे आज तो यहाँ बहुत भीड़ जमा है।
1: मैं तो इसे अहोभागी कहूँगा कि आज हम हिज होलीनेस दलाई लामा की साक्षात दर्शन करेंगे।
2: सही कहा भाई, मेरी भी बड़ी इच्छा थी उन्हें देखने की। हाँ।
1: अरे देखो देखो, उनका कारवां बिल्कुल निकट आ पहुंचा।
2: ओफो, इस तरफ तो मीडिया वालों की बड़ी भीड़ है।
1: अरे कोई बात नहीं, आओ ना, कोशिश करते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, पत्रकारों की भीड़ में साड़ी पहने हुए एक लड़की। अब कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं?
2: हाँ भाई, मैं भी ऐसे ही देख रहा हूँ भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है।
1: हाँ,
2: और देखो देखो, उसने कैमरा भी टांग रखा है।
1: अरे हाँ,
2: किसी औरत का भीड़ भाड़ में यहाँ वहाँ घूमना,
1: अरे कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। अरे भाई, औरत तो घर की शोभा होती है, शोभा। पता नहीं कैसा समय आ गया है।
2: मालूम नहीं,
1: ये दिन भी देखना था। चलो चलते। अरे चलो चलते, नजदीक आ गए।
2: आगे आगे आ जाओ, आ जाओ, चलो।
3: साथियों, ये समय था 1959 का, जब दलाई लामा पहली बार भारत की यात्रा पर सिक्किम आए थे। उनके अभिनंदन में भारी भीड़ जमा थी।
4: उसी भीड़ में शामिल थी एक लड़की जो हाथ में एक भारी कैमरा लिए दलाई लामा की फोटो खींच रही थी। कैमरे का वजन लगभग 9 किलो था, जिसके बाहरी हिस्से में लकड़ी का कवर था। इतना ही नहीं, उस लड़की ने अपने कंधे पर एक कैमरे का फ्लैश भी टांग रखा था। ये लड़की कोई और नहीं, होमी व्यारावाला थी, जिसे दिल्ली से विशेष रूप से इस मौके की फोटो खींचने के लिए बुलाया गया था।
3: 21वीं सदी में शायद महिलाओं को कैमरे के साथ देखना बेहद आम बात लगे, लेकिन आज से 70-80 साल पहले ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसी बात को लेकर उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था।
5: 1 दिनों लोग बहुत रूढ़िवादी हुआ करते थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं इधर उधर घूमें। जब उन्होंने मुझे साड़ी में कैमरे के साथ घूमते हुए देखा तो उन्हें बहुत ही अटपटा सा लगा, और उन्हें शुरू शुरू में तो ऐसा भी लगा कि मैं कैमरा लेकर सिर्फ उन्हें बेवकूफ बना रही हूं।
4: होमी व्यारावाला का जन्म गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में दिसंबर 1913 को हुआ था। उनका परिवार गुजरात में सूरत के निकट व्यारा में रहा करता था, संभवतः इसलिए उन्हें व्यारावाला के नाम से जाना गया।
3: उनके पिता पारसी उर्दू थिएटर के मशहूर अभिनेता थे, इसलिए घर पर माहौल भी थोड़ा खुलेपन का था। परिवार स्वतंत्र विचारों वाला था। रंगमंच पर कार्य करने के कारण ये व्यारावाला परिवार की पहुंच से बहुत दूर नहीं था।
6: आज कितना मुबारक दिन है, हम सब की दिली ख्वाहिश पूरी होने जा
4: रही। समय बदला और उनका परिवार गुजरात से बंबई यानी मुंबई आ गया। उनकी स्कूली शिक्षा बंबई में हुई। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन शौकिया फोटोग्राफी भी करती थी।

0: लेकिन फोटोग्राफर बनना उनका लक्ष्य नहीं था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। एक रात की बात है,
1: होमी, ओ होमी।
2: जी माँ, आती हूँ।
1: अरे बेटा, अभी तक तुम सोई नहीं,
2: क्या बात है माँ?
1: अरे कोई बात नहीं बेटी, रात का 1 बज रहा है, मैंने तुम्हारे कमरे में बत्ती जलती हुई देखी तो सोचा थोड़ा सा समय तुम्हारे साथ बिता लूं।
2: जी माँ, बिल्कुल।
1: अच्छा बेटी, इन दिनों देख रही हो कि तुम काफी खोई खोई और चिंतित रहने लगी हो, सब ठीक तो है ना बेटा?
2: हाँ माँ, सब बिल्कुल ठीक है। स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो गई है ना, आगे भी तो सोचना है कि मुझे भविष्य में क्या करना है, बस यही विचार मन में बार बार आता है।
1: अच्छा, तो ये बात है, भला तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? अब तो तुम शादी के लायक हो गई हो, बहुत जल्दी कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे हम। और तुम्हारी चिंता तो वो करेगा। हाँ,
2: अरे नहीं माँ, अभी नहीं करनी है मुझे शादी, और भला मेरे भविष्य की चिंता कोई और क्यों करेगा?
1: अरे
2: मैं खुद क्यों नहीं कर सकती? और माँ, मैं तो डॉक्टर बनूंगी।
1: क्या कहा? डॉक्टर? तो डॉक्टर बनेगी?
2: माँ सुनो तो एक बार मेरी बात।
1: मैंने सब सुन लिया होमी, और मुझे कुछ नहीं सुनना। बात समझ में आई तुम्हें?
2: माँ एक बार बात तो पूरी सुन लो।
1: कुछ नहीं होमी, बस करो।
2: माँ सुनो तो। अरे
3: तो सुना आपने, होमी ने बहुत बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा था,
4: मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे जीवन में केवल एक यही समय था जब मेरी माँ ने मुझे कुछ करने से मना किया। उन्होंने देर रात की शिफ्ट में डॉक्टरों को देखा था और वो नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह के पेशे में रहूं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रेस फोटोग्राफी इससे भी बदतर होगी।
0: घर से अनुमति न मिलने के बाद उनके पास और कोई चारा नहीं था, उन्होंने डॉक्टर बनने का अपना इरादा बदल दिया। लेकिन एक बात थी जिस पर वो दृढ़ निश्चय के साथ अडिग रही,
3: और वो बात थी एक नारी होकर अपनी जगह खुद बनाने की, अपना भविष्य स्वयं गढ़ने की, और अपनी उड़ान का आसमान स्वयं तैयार करने की। उन्होंने फैसला किया कि वो फोटोग्राफी को अपना पेशा बनाएंगी। प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया।
0: कला की पृष्ठभूमि और कैमरे के थोड़े बहुत ज्ञान के कारण जल्दी ही वो एक कुशल फोटोग्राफर बन गई। अब उन्हें साइकिल पर बैठकर पीठ पर कैमरा लादे बंबई की सड़कों पर देखा जा सकता था। इस दौरान उन्होंने बंबई के मेहनतकश मजदूरों, निर्धन वर्ग के बच्चों और स्त्रियों के बहुत सारे चित्र खींचे। इन चित्रों को काफी प्रशंसा भी मिली।
3: एक दिन की बात है, कक्षा समाप्त हुई थी और छात्र घर जाने की तैयारी में थे। होमी भी कक्षा से निकलकर संस्थान के मुख्य गेट की ओर जा रही थी।
2: सर, मैं अंदर आ सकती हूँ?
5: अरे होमी, आओ आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ, बैठो यहाँ बैठो।
2: जी जी सर, धन्यवाद।
5: होमी, जरा इसे देखो।
2: जी।
5: ये आज का समाचार पत्र है, जरा यहाँ देखो, इस पृष्ठ पर, जरा पहचानो तो, किसकी फोटो है ये?
2: सर, ये तो मेरी खींची हुई फोटो है।
5: बिल्कुल। हाँ उमी, इसे राज्य भर से आई 100 से भी अधिक तस्वीरों की प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है, लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। देखो देखो यहाँ क्या लिखा है।
2: जी।
5: देखो पढ़ो। होमी व्यारावाला की इस फोटो ने मेहनतकश मजदूरों की दुर्दशा को बड़ी बारीकी से उकेरा है, और ये लिखा है, ये फोटो हमारे समाज के लिए एक आईना है। बधाई हो होमी, हमें तुम पर फख्र है।
2: धन्यवाद सर।

0: फिर भला क्या था, पूरे राज्य में होमी की ख्याति बढ़ गई। कॉलेज में होमी को छात्र एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अब उन्हें कई समाचार पत्रों से काम भी मिलने लगा था। कॉलेज में ही उनकी भेंट हुई सहपाठी मानिक शाह जमशेद जी से, जो एक बेहद होनहार छायाकार थे और स्वतंत्र छायाकार के रूप में भी बॉम्बे के कई समाचार पत्रों के लिए काम करते थे।
1: मानिक शाह स्वयं उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम करते थे। मानिक शाह ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। आठ महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1938 में होमी व्यारावाला ने फोटोग्राफी की दुनिया में एक पेशावर की तरह प्रवेश किया। बतौर फोटो जर्नलिस्ट होमी की पहली तस्वीर द बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुई। इस दौरान उन्हें एक तस्वीर के लिए ₹1 बतौर पारिश्रमिक मिलता था।
0: 1942 में ब्रिटिश सूचना सेवा के लिए फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए व्यारावाला युगल को दिल्ली आने का निमंत्रण मिला। दिल्ली आते ही होमी के काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई।
1: होमी व्यारावाला एक समर्पित और प्रतिभाशाली फोटो पत्रकार थी, जिन्हें अक्सर अपने कैमरे को अपनी पीठ पर बांधे हुए राजधानी दिल्ली में साइकिल चलाते हुए देखा जाता था। दिन की रोशनी के दौरान वो लो एंगल शॉट तथा छवियों के विस्तार के लिए बैक लाइट का उपयोग करती थी, जिससे विषय वस्तु की गहराई और ऊंचाई को दर्शाया जा सके। इन दिनों की कंप्यूटर जनित डिजिटल फोटोग्राफी के हमारे जमाने में ये बातें भले ही बेहद साधारण लगें, लेकिन उन दिनों इन बातों का विशेष महत्व था। उन्हीं के शब्दों में,
2: जब मैं कैमरा टांगकर साइकिल पर निकलती थी तो मुझे देखने के लिए विशेषकर महिलाओं और बच्चियों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनकी आंखों में एक चमक होती थी, मानो वो मुझ में अपना भविष्य देखने की कोशिश कर रही हों।
0: कोई भी घटना हो, वो मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकारों में से एक थी। अब समय आ गया था छायांकन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के रूप में इतिहास रचने का।
1: वो समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियां हो रही थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर देश के गांव-गांव तक फैल गई थी। बड़े बड़े जुलूसों में, धरना प्रदर्शनों में, हिंसक आंदोलनों में एक महिला का बतौर फोटो पत्रकार उपस्थित रहना और घटनाओं की तस्वीर खींचना कोई आसान बात नहीं थी।
2: जब भी मैं किसी मौके पर कैमरे के साथ पहुंचती थी, मुझे प्रोत्साहन अक्सर नहीं मिलता था। पुरुष प्रधान पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के लिए अपनी जगह बनाना बहुत कठिन था। कई बार मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बात तब बन जाती थी जब मैं अपना परिचय देती थी। लोग मेरे काम के कारण नाम से परिचित थे, नाम बताने पर मुझे सम्मान भी मिलता था।
0: ऐसे समय में होमी व्यारावाला का एक फोटोग्राफर बनना एक बहुत ही बड़ी बात थी। होमी व्यारावाला ने अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार पहराए गए झंडे, भारत से लॉर्ड माउंटबेटन के डिपार्चर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा की भी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इन तस्वीरों की पूरे विश्व में प्रशंसा हुई और इन्हें बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरम उत्कर्ष के दिनों उनके द्वारा खींची गई अधिकांश तस्वीरों को दुर्लभतम कृतियों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा लगता है मानो उनके कैमरे ने इतिहास को सजीव कर दिया है।
1: होमी ने बतौर फोटो जर्नलिस्ट अपने करियर की शुरुआत 1930 में की थी। वो 1970 तक इस क्षेत्र में सक्रिय रही। 40 वर्षों के इस सफर के दौरान उन्होंने देश विदेश में खूब नाम कमाया। 1970 में अपने पति की मृत्यु के बाद होमी व्यारावाला ने अपने

0: मुगल ने उनकी विरासत का सम्मान करते हुए उनके जन्म के 104 साल पूरे होने पर अपने डूडल के साथ उन्हें सम्मानित किया। गूगल ने भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें लेंस के साथ पहली भारतीय महिला यानी फर्स्ट इंडियन लेडी विद द लेंस के रूप में सम्मान दिया।
1: स्त्री अस्मिता के विमर्श पर किसी ज्योतिर्मय प्रेरणा स्तंभ के रूप में अडिग खड़ी भारत की इस पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को हमारा शत शत नमन।
2: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए शामिल होते हैं दिल्ली केंद्र में।

0: 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन के इस सम्मेलन की तैयारियां अंतिम रूप में हैं। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण।
1: पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक्स का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। 1 दिन के इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोक रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य सेवाएं बहाल रहेंगी। ब्रिक्स व्यापार मंच का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है। इस 1 दिन के कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। एक बयान में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद ये बयान आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग की निदेशक जूली कोजेक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका मुख्य कारण सेवाएं और निर्यात में हुई वृद्धि है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 की जून की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में कल हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत की 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दीवानों, मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन।
1: हेलो,
2: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
2: न मांगी कोई दुआ, न कोई गुजारिश की, न कोई फरियाद, न कोई नुमाइश की, जब झुका सर सजदे में खुदा के, तो हेलो फरमाइश में जिनसे मेरी बात हो रही है उनकी खुशी की ख्वाहिश थी।
1: अरे किन से बात हो रही है आपकी हेलो फरमाइश में?
2: मंदाकिनी जी से।
1: अरे शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी, आपने हमारी खुशहाली की दुआएं की है। बताइए अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रही है ये तो बताइए।
2: पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी।
1: कैसे हैं आप बताइए मोहम्मद रफी साहब?
2: बहुत अच्छे मैडम, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं
2: जी जी।
1: क्या कर रही हैं इन दिनों?
2: इन दिनों मैडम सिलाई का काम करते हैं हम लोग।
1: अच्छा, क्या सिल रहे हैं?
2: घनी बैग का काम है।
1: बैग का?
2: हाँ जी।
1: अच्छा, आपका नाम इतना खूबसूरत है, क्या याद आता है आपको अपने नाम के साथ?
2: मेरे को मैडम रफी साहब याद आते हैं और उनके गाने याद आते हैं।
1: रफी साहब का कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है?
2: ये उम्मीद का है ना, मुझे इसके तुझे से, फिर राजा और उनका फिरकी वाली, बहुत सारे गाने मैडम उनके तो
1: पसंद आते हैं। अच्छा, आपको घर में किस नाम से पुकारते हैं? आपका घर का नाम क्या है?
2: घर का नाम बबलू है मैडम।
1: बबलू, बड़ा प्यारा नाम है ये बबलू, है ना? तो बताइए, जब आप छोटे थे आपको बबलू कहा जाता था, यानी आप बचपन में ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको तुरंत खुश कर देती थी?
2: मुझे तो मैडम खिलौने मिल जाते थे तो बहुत खुशी हो जाती थी मैडम।
1: अच्छा, खिलौने मिलते थे बचपन में? आपके माता पिता खिलौने ला के देते थे आपको?
2: हाँ, मेरी मम्मी ने बहुत ध्यान रखा मेरा और खिलौने भी मुझे ला के दिए थे, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी।
1: क्या क्या खिलौने थे आपके पास बताइए?
2: वो गाड़ी आती थी चार पहिए की प्लास्टिक की मैडम, वो और बंदूक आती थी वो।
1: लड़के लोगों के पास बंदूक नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता है, जब भी तो हमने जानना चाहा।
2: चाबी की मोटर आती थी ना जो उसको चलाते थे अपन।
1: हाँ हाँ हाँ,
2: चाबी की मोटर, उसको चाबी भर दो तो छोड़ दो तो वो बहुत दूर तक जाती थी।
1: उसको देखकर तो मजा आता
2: है। बचपन की यादें में कभी बोला नहीं सकता मैडम।
1: लेकिन अगर अब आप अपने बच्चों के बचपन की बात करें तो क्या कहेंगे? आपके बच्चे हैं, क्या ला के देते हैं उनको खिलौने? ला के देते हैं?
2: शादी नहीं मैडम।
1: अरे आपकी तो शादी ही नहीं हुई। चलिए, तो आप भी अपने बच्चों के बचपन का जो है ख्याल रखिएगा, जब आपकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, तो उनका जो बचपना है उसे कभी दूर मत होने दीजिएगा, क्योंकि बचपन से सुंदर जो है समय कभी नहीं मिल पाता।
2: जी जी सही।
1: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप बताइए?
2: फिल्म का नाम है हम पांच, मिथुन चक्रवर्ती और स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया है। और गाने के बोले का जानू मैं सजनिया चमके कब चंदनिया गरमा गरी।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। कैसे
1: हाँ जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ मैडम, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से मैडम। बस
0: हैं लोकेंद्र जी?
1: बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और विविध भारती को प्रसार भारती मोबाइल ऐप और जो डीटीएच पर भी सुन लेते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहते हैं विविध भारती के।
0: आपसे तो पहले भी बात हो चुकी है मेरी, बहुत पहले।
1: हाँ आज से करीब 6 महीने पहले हुई थी मेरी बात आपसे।
0: कैसे हैं बताइए। इन 6 महीनों में क्या कुछ खास किया आपने?
1: खास तो मैडम जी मेरा तो हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है और मैं हेयर कटिंग सैलून पर काम करता रहता हूँ और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। आपके अलग जो भी विविध भारती के सारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे मन चाहे गीत है, हेलो फरमाइश है, सखी सहेली है। सखी सहेली में वो प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, जैसे कि वो खाना बनाने की टिप्स बताते हैं ना अलग अलग, कि खाना अलग अलग जो किस प्रकार के भोजन व्यंजन बनाते हैं वो अच्छा लगता है। और सभी प्रोग्रामों की मुझे जो अपडेट है वो अपडेट तो फेसबुक पेज के माध्यम से मिल जाती है।
0: इसका मतलब आप खाने के शौकीन है तभी आपको वो पसंद है।
1: बिल्कुल अच्छा लगता है मैडम जी खाना, और मैं खाना घर में बना भी लेता हूँ, वाइफ के साथ में उनको हाथ बटा देता हूँ। सिर्फ मुझे रोटी बनाना नहीं आती, बाकी सभी व्यंजन बना लेता हूँ
0: अरे क्या क्या व्यंजन बनाते हैं बताइए, पत्नी का हाथ
1: मैडम।
0: कैसे
1: जैसे कि
0: बटाते हैं?
1: हमारे यहाँ उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध भोजन रहता है दाल बाफला और लड्डू। ये मालवा अंचल का मतलब सबसे प्रसिद्ध भोजन है, और ये भी बनाने में उनका साथ में सहयोग कर देता हूँ। और जैसे दाल चावल फ्राई है, दाल फ्राई है, और मटर पनीर की सब्जी है, ये सब प्रकार के व्यंजन मैं खुद बनाता हूँ।
0: अरे क्या बात है, कहाँ से सीखा आपने?
1: मैडम जी ये तो सब मैंने आपके यहाँ से जो टिप्स मिलते हैं उसको देखते हैं, और बाकी जो घर में कभी कभी महिलाएं भी बनाती है तो उनको देखकर हम भी सीख जाते हैं।
0: सही बात है ना। और जिनको खाने का शौक होता है ना तो वो कहीं ना कहीं से रेसिपी देख ही लेते हैं कि किस तरह से कौन सा व्यंजन बनाया जा सकता है ना।
1: और खास करके मेरी एक खासियत है कि मैं सिर्फ घर का बना भोजन ही खाता हूँ। मैं बाहर मतलब डिनर पे या कहीं बाहर जाता हूँ ना,
0: हाँ
1: तो मैं बाहर का व्यंजन इतना ज्यादा अवॉइड करता हूँ सभी चीजों को, क्योंकि बाहर के जो व्यंजन रहते हैं खैर लगते तो लुभावने हैं, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, ये चीजें, पर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहते हैं। क्योंकि घर का जो शुद्ध शाकाहारी भोजन आप खाएंगे तो उससे आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आज मेरी 52 साल की उम्र है पर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, ना थायराइड है, बीपी है, शुगर है, कुछ भी नहीं है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि पिज्जा बर्गर खाने के हम जितने शौकीन हैं उतनी ही बीमारियां हम पाल भी ले रहे हैं ना। खासतौर से हमारे बच्चे जो फास्ट फूड के शौकीन है, आए दिन उनको फास्ट फूड चाहिए है ना, स्ट्रीट फूड चाहिए, तो माता पिता को चाहिए कि घर में ही बना के वो खिलाएं ताकि बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं हो। आप 52 ईयर्स ओल्ड हैं, आपने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बहुत अच्छी बात है।
1: आज उज्जैन में महाकालेश्वर जी की सवारी निकल जाती है, शाही सवारी,
0: अच्छा हाँ
1: और आज शाही सवारी उज्जैन में निकल रही है। बाबा महाकालेश्वर जी खुद दर्शन देने के लिए पालकी में सवार होकर जनता का हालचाल जानने के लिए निकल रहे हैं, और वो सवारी निकल रही है आज।
0: वाह, बहुत सुंदर दृश्य होगा और काफी लोगों की तादाद होगी, भीड़ होगी, काफी लोग आजू बाजू चलेंगे।
1: बिल्कुल मैडम जी, और ये उज्जैन महाकालेश्वर के जो स्थान है ये तो ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है ही सही, पर आज जो शाही सवारी निकली है इसमें करीब नहीं 5 लाख से यात्री जो उज्जैन में दर्शन करने के लिए आए हैं।
0: बहुत बड़ी बात। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर कि कितना खास दिन हम मना रहे हैं और उज्जैन में खास तौर से इतने श्रद्धालुओं की भीड़ है।
1: जी जी मैडम
0: जी, तो बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: गाना सुनना है मुझे लता मंगेशकर जी की आवाज में, फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, और इसमें एक गाना है ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है।
0: अरे बहुत सुंदर गाना है लता जी की आवाज में। चलिए आप सुनना चाहते हैं ये टाइटल सॉन्ग सत्यम शिवम सुंदरम।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ धन्यवाद दीदी। मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ।
0: राजेश जी स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: कैसे हैं?
1: बढ़िया दीदी। यहाँ प्रिंटिंग प्रेस पे बैठा हुआ, पानी भी गिर रहा है अभी।
0: अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस।
1: बारिश जोरदार हो रही है, 1 घंटा हो गया है।
0: अरे वाह, अच्छी बात है ना।
1: मतलब हाँ मतलब 1 महीने से पानी नहीं आ रहा था यहाँ पर। हाँ, और हमारे परिवार के लोग हैं जो करीब 40 वर्षों से कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: अच्छा, कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप विविध भारती के?
1: भारती के जैसे तो मनचाहे गीत अभी चालू कर दिया आपने।
0: आपने पत्र लिखा मनचाहे गीत में?
1: बिल्कुल, छुट्टियाँ बहुत जारी है लेकिन उसका समय कम है, डेली किया जाए। और हेलो फरमाइश का समय भी जैसे आपने 1 ही दिन कर दिया, ये आप 2 दिन ही किया जाए।
0: चलिए, तो आप प्रिंटिंग प्रेस में काम करके समय निकाल लेते हैं हमसे फोन करने का?
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारे कारीगर काम करते हैं ना। हम तो क्या है, डायरेक्शन देते हैं। जैसे मतलब हमारे पास 2-3 कारीगर है और बाकी के समय हम जैसे सुनते रहते हैं, समय रहता है तो। फरमाइश कार्यक्रम हमारा खास है, जैसे मनचाहे गीत है, इसके बाद ये हेलो फरमाइश है,
0: हाँ, ये
1: ये
0: सभी
1: सब
0: कार्यक्रम आपको
1: कार्यक्रम।
0: पसंद हैं, बिल्कुल।
1: हाँ
0: तो बताइए आज
1: ये
0: कौन सा
1: मेरा
0: गीत
1: गीत
0: सुनवाएं?
1: आज गीत है, ये उजाला पिक्चर का झूमता मौसम मस्त महीना, जो के जय किशन साहब की पुण्यतिथि है
0: जी,
1: तो उनका बनाया हुआ गीत है ये, तो वो अलग ही सुनवा दीजिए। और हमारे साथ में हमारे परिवार के लोग भी सुन रहे हैं इस गीत को। शांति महाजन है, मुकेश महाजन है, नीता महाजन है और राकेश महाजन है।
0: चलिए, तो आप सभी मिलकर सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
2: झूमता

0: हेलो,
1: आपकी दोस्ती ही मेरी जान है। शायद इस हकीकत से आप अनजान हैं। मुझे खुद नहीं पता मैं कौन, क्योंकि आपकी दोस्ती ही मेरी पहचान है।
0: क्या बात है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में अपना बताइए, अपने बारे में आप कौन हैं?
1: मंदाकिनी मैडम जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको
0: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। अपना नाम बताइए हुजूर।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम जी।
0: दिलीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया हूँ मैडम, आज आपसे बात हो गई तो और भी अच्छा हो गया मैडम जी।
0: अरे पहले भी शायद आपसे बात हुई भी है हमारी, तो मुझे जहाँ तक याद
1: मैडम
0: आ रहा है।
1: बिल्कुल, 18 जून को बात हुई थी आपसे मेरी 2025 में, उसके बाद आज हो रही है।
0: चलिए तो अच्छी बात है कि आपकी दोबारा
1: जी
0: हमसे बात हो रही है। और कैसा है आपका
1: बहुत ही बढ़िया है
0: शहर?
1: मैडम,
0: आपका शहर बताइए
1: बहुत ही
0: उदयपुर।
1: बढ़िया एकदम मैडम।
0: सही बारिश हो गई है जितनी उम्मीद थी?
1: बारिश अभी हुई नहीं है 1 महीने से, कल हुई शाम को आधा पौन घंटा, थोड़ी ठीक हुई लेकिन उससे थोड़ी उमस हो गई है
0: बिल्कुल सही
1: अभी,
0: कहा।
1: और आसार है, झीले अभी खाली है। जी
0: बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर बारिश होनी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं, जो झीलें भर जाती। लेकिन पर्यटक काफी आए होंगे घूमने।
1: पर्यटकों की तो धूम मची हुई है मैडम, फिर
0: लेकिन इस गर्मी में उनका हाल बेहाल हो जाता होगा ना।
1: भी उनको जरा भी चिंता नहीं रहती है।
0: हाँ, खैर घूमना तो एक इतना जानदार और शानदार काम है कि आदमी सब कुछ भूल कर निकल पड़ता है घर से, है ना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने
0: आपको यात्रा पे कहीं जाने का मौका मिला है?
1: जी, अभी कुछ समय पहले ही होके आया था मैं उज्जैन, महाकाल की नगरी,
0: अच्छा।
1: वहाँ हमारे प्रिय मित्र लोकेंद्र वर्मा जी से मुलाकात करके आया, बड़ा ही अच्छा लगा, वो भी खुश हो गए और मैं भी खुश हो गया।
0: अच्छी बात है, दो मित्र मिलेंगे तो खुश होना ही चाहिए। तो क्या लगा इंदौर जाकर महाकाल के दर्शन करके, जब आप लौटे तो क्या महसूस किया आपने?
1: वहाँ का एक आनंद ही अलग था मैडम, जिधर देखो उधर, मतलब महाकाल की नगरी में एक तो महाकाल के जो नारे थे वो बड़े ही एकदम मन को शांति और सुकून पहुंचा रहे थे, उसमें सब कुछ भूल गया मैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, आप जिस भाव को लेकर गए थे उससे कहीं ज्यादा आपको महसूस हुआ, है ना।
1: अभी वापिस से मानस बन रहा है इसी महीने में।
0: चलिए तो आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे गाना जानना चाहेंगे। कौन सा गाना आज आप सुनना चाहते हैं?
1: देवानंद साहब की फिल्म का है और रफी साहब की आवाज का गाना है, फिल्म का नाम है काला बाजार और गाने के बोल हैं खोया।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मोहब्बत की समा जला कर तो देखो, मोहब्बत की समर तो देखो, दिल की दुनिया सजा कर तो देखो, तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा एक बार हमसे नजरें मिलाकर तो देखो।
0: क्या बात है, मुकर्रर मुकर्रर।
1: दिल की दुनिया सजाकर तो देखो, तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा एक बार हमसे नजरें मिलाकर तो देखो।
0: क्या बात है, क्या बात है। हमारे सभी श्रोता सब शायर, नगमा निगार, गीतकार हैं।
1: बिल्कुल मैम, ये विविध भारती की देन है जो कि हम लोग इतना टैलेंट और इतने खूबसूरत अंदाज से बोलना सीख गए आप लोगों को देख देख कर।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। बताइए अपना नाम, कहाँ से बोल रहे हैं, अपनी जानकारी दीजिए हमें।
1: मैं ग्रामा पोस्ट बक्सीना डिस्ट्रिक्ट बदायूं, तहसील दातागंज यानी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बदायूं शहर से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ। मैम
0: विमल जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे।
0: अपनी जगह जो है बदायूं, उसके बारे में बताइए। नाम हमने बहुत सुना है लेकिन इसके बारे में क्योंकि हम कभी आए नहीं हैं, तो बताइए कैसा है आपका ये अपना शहर?
1: जी बिल्कुल, मेरे यहाँ पर एक मजार है, दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मिन्नतें लेकर, और हमारे यहाँ पर एक बरेली के पास में आंवला पड़ता है, ठीक है मैम? आंवला शहर है, तो उसमें क्या है कि मनोरा धाम नाम से जो श्याम जी का एक दरबार लगता है, वहाँ पर काफी दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं।
0: क्या बात है, ऐसी श्रद्धा है ना, तो काफी लोग आते होंगे, काफी श्रद्धालु आते होंगे, काफी भक्त जन आते
1: होंगे। बिल्कुल मैम, यहाँ पर टूरिस्ट हूँ, जब जाता हूँ देखता हूँ टूरिस्ट बसें लगातार लगी रहती हैं, क्योंकि काफी देर के बाद गुरुजी से मिलने का नंबर भी आता है, क्योंकि लाइन काफी लंबी रहती है, तो इस समय यात्री ज्यादा रहते हैं, जो श्रद्धालु ज्यादा है तो इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम तो लगता है मैम।
0: हाँ खैर, वो तो है ही, जहाँ श्रद्धालु या भक्तगण ज्यादा होंगे तो वहाँ तक पहुँचने में हमें वक्त लगेगा। आप कभी इस लाइन में लगे, इस श्रद्धा के साथ खड़े हुए?
1: जी मैम, मैं वहाँ पर घूमने तो गया हूँ और जल भी लेकर आया।
0: खैर चलिए, इतना फायदा तो आप भी लेंगे ही जब आप वहीं रहते हैं।
1: जो लोग अपने प्रॉब्लम में रहते हैं वो लाइन लगाकर कतार में जरूर खड़े रहते हैं, उनकी जो दुखद समस्या वो सुनाने के लिए गुरु
0: जी जी वो किसी विश्वास और श्रद्धा के साथ आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और वहाँ लाइन में लगते हैं ताकि उनको उचित मार्गदर्शन मिल जाए, है ना, इसी भावना के साथ आते हैं। हाँ आप अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं विमल जी आप?
1: वैसे तो मैं जब आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो इस समय तो हरिद्वार में एक जॉब कर रहा हूँ।
0: अच्छा चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, और आप हमें कॉल भी कर रहे हैं, हरिद्वार में रहकर भी आप हमें सुन रहे हैं, बहुत
1: बिल्कुल
0: अच्छी
1: मैम
0: बात।
1: हरिद्वार में रहते हैं और साथ में हमारे बच्चे भी इस समय इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, लव गुनगुन शुभ अमेरी वायस सरका।
0: क्या बात है, चलिए सुनिए आप सभी अपनी पसंद का गीत, बताइए अब कौन सा गाना सुनेंगे।
1: मूवी का नाम रहेगा राम अवतार, और इसमें बेहतरीन सुनूंगा तेरी बेवफाई का, शिकवा करूँ तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, ये सब सुनवा दीजिएगा।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो
1: हेलो जी,
0: हेलो
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: जी, मैम, मैं राम बाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से।
0: भोपाल से राम बाबू जी स्वागत है आपका। कैसे हैं?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, और परिवार में भी सब आनंद मंगल में हैं। मम्मी भैया भाभी परिवार में हमारे बच्चे बच्चे सब आनंद और मंगल में हैं।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो कि सब आनंद मंगल से हैं, है ना।
1: जी,
0: तो
1: और हंसी खुशी के साथ, आनंद मंगल के साथ में हम विविध भारती को साथ में रखते हैं, हमेशा चलती रहती है और सुनते रहते हैं। और आपके जिस प्रोग्राम है ना विविध भारती के, बहुत अच्छे लगते हैं हमको, पूरे परिवार को अच्छे लगते हैं। चलती रहती है विविध भारती हमारे साथ में, और सुनते रहते हैं, काम वाम भी करते रहते हैं। और ये पत्र भी हम अभी डाल के आए आपसे, मतलब बात करी ना, उससे 2 मिनट पहले ही मैंने पोस्ट ऑफिस में पत्र डाल के आया हूँ अभी।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं डालने गया तो उनने मेरे को देखा, मैम ने बोले भैया इसमें डाल दीजिए। बोले कहाँ का है, मतलब वहां का डालना। जी, वहां डाल दीजिए। बोले हमको भी एड्रेस बताना ना भैया, आपको गलत बुरा ना लगे तो। मैम ठीक है, मैंने एड्रेस बता दिया उनको। बोले हम भी डालेंगे, हम भी सुनते हैं विविध भारती तो। हाँ जी, बिल्कुल।
0: अरे
1: उनने दोनों मैम ने, मतलब मेरे पास में एड्रेस रखा था, उन दोनों ने लिया एड्रेस। बोले हम भी डालेंगे पत्र,
0: क्या
1: हम भी बहुत
0: बात है।
1: सुनते हैं, हमारे हस्बैंड और हमारे सास बहुत सुनती है प्रोग्राम। बोले ठीक है।
0: उन्होंने ऐसे कहा
1: हाँ
0: जो
1: जी
0: पोस्ट ऑफिस में बैठी थी महिलाएं। हाँ
1: हाँ जी, बिल्कुल।
0: जी, बहुत अच्छी बात है कि
1: जी
0: विविध भारती को आप सभी लोग इतना प्यार करते हैं और जिंदगी
1: जी
0: बन गई है विविध भारती आपकी, है ना।
1: बहुत बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से बचपन से सुनते हैं। हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी मान के चलो, हमारे दादा परदादा भी सुनते थे, जब से रेडियो चालू हुआ जब से। हमारे दादाजी भी सुनते थे, हमारे पापा भी सुनते थे, मैं भी सुनता हूँ, उसके बाद में हमारा बेटा है वो भी सुनता है। हाँ जी।
0: अच्छा, आपने
1: और हमारा
0: अपने
1: बेटा तो बहुत बहुत ध्यान से सुनता है, हमारा वो बेटा है ना, बहुत ध्यान से सुनता है, वो होमवर्क वगैरह भी करता रहता है और सुनता रहता है।
0: क्या बात है। तो आपने अपने दादा को याद किया है, तो दादा नाना की
1: जी
0: कोई बात याद है आपको ऐसी?
1: जी वो मतलब वो मैं ज्यादा छोटा था उस टाइम पे, वो गुजर गए तो वो नहीं है, शांत हो गए थे।
0: अच्छा, आप अपने बारे में बताइए फटाफट से, आप क्या करते हैं?
1: अपने ये ड्राई क्लीनिंग का, लॉन्ड्री का काम है, वो तो चलता रहता है, विविध भारती हमेशा साथ में रहती है। आपको याद है हमारा काम ही ऐसा है, बिना सुने तो हमारा काम नहीं होता है।
0: चलिए, अच्छी बात
1: जी
0: है। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: जी बिल्कुल, आपसे निवेदन करना चाहूंगा आज प्रोग्राम में, जैसे दिल है के मानता नहीं, इसी का टाइटल सॉन्ग अनुराधा पौडवाल जी का गाया हुआ गाना सुनना चाहूंगा मैं, और
0: आइए
1: मेरे परिवार वाले सभी सुनना चाहेंगे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते। हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हाँ जी मैम, नमस्ते। मैं शाहजी नगर देवलूर, जिला नांदेड़ से संतोष भाकरे बोल रहा हूँ।
0: संतोष जी कहाँ से बोल रहे हैं? जिला नांदेड़ से।
1: हाँ जी, देवलूर।
0: बिल्कुल, कैसे हैं आप संतोष
1: तो हम
0: जी?
1: विविध। हाँ जी, अच्छे हैं मैम। तो
0: बताइए अपने बारे में, बताइए क्या करते हैं आप?
1: आज बहुत दिनों बाद फोन लगे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो
0: अरे वाह, पर आप इतनी गंभीरता से बोल रहे हैं, मुझे तो खुशी कहीं नजर नहीं आ रही है।
1: नहीं
0: पहले अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
1: मैम, बिल्कुल जी। तो मैं प्राइवेट अस्पताल में कंपाउंडर की ड्यूटी करता हूँ।
0: अच्छा,
1: तो
0: कंपाउंडर
1: ड्यूटी
0: की ड्यूटी करते हैं जी, बिल्कुल। तो क्या समय रहता है ड्यूटी का?
1: का समय डे रहता है मैम।
0: अच्छा, दिन में करते हैं ड्यूटी। अच्छा, पता है कंपाउंडर बनना आसान नहीं होता है ना? बनने का मतलब कि उसको निभाना, उस जो ड्यूटी को निभाना जो है बड़ा मुश्किल है। मुझे याद है एक एक्सीडेंट में एक जो कंपाउंडर थे उन्होंने बहुत समय तक इलाज करने के बाद ही कहा कि माफ करना दीदी, हमें ऐसा बनना पड़ता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट बनना पड़ता
1: हाँ
0: है।
1: जी,
0: मरीज कितना भी रो रहा है, चिल्ला रहा है, उन्हें अवॉइड करना पड़ता है, उन्हें अपनी पट्टी गार्ड सब लगाना ही पड़ता है ना।
1: बिल्कुल सही बात है। तो
0: बड़ा बड़ा मुश्किल काम होता
1: हमें
0: है।
1: पेशेंट के साथ साथ पेशेंट के रिलेटिव को भी हमको बोलना पड़ता है।
0: हाँ, रिलेटिव्स को भी डांटना पड़ता है, मतलब उन्होंने डांट भी दिया कि आप सही से ट्रेल लगाइए, ब्लड नीचे नहीं गिरना चाहिए, है ना। और जब अंतिम दिन उन्होंने
1: बिल्कुल
0: जब
1: जी, बिल्कुल।
0: कहा इस सब बात के बारे में, उन्होंने बताया कि मेरी ड्यूटी में शामिल है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मरीज ठीक नहीं होता है।
1: बिल्कुल मैम, ये सब कुछ बातें ये सब करना पड़ता है हमें।
0: हाँ
1: हाँ, बराबर पहचाने। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: पेशेंट जब गंभीर अवस्था में आते हैं मैम, और जब अच्छे होते जाते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है हमें। तो
0: लेकिन उसका इलाज करते
1: मैं,
0: समय कठोर
1: हाँ
0: बनना पड़ता है ना।
1: बिल्कुल, बनना तो पड़ता है मैम।
0: जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: हाँ जी, मैं लावारिस फिल्म का गीत सुनना चाहूंगा, आशा भोसले और किशोर कुमार जी की आवाज में, सबके बिछड़े हुए हैं।
0: चलिए सुनते हैं आपकी
1: तो ये
0: पसंद का
1: गीत,
0: गीत।
1: हाँ जी, ये गीत सुना गया। धन्यवाद सबके।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, ये हाँ रहीम खान पठान बात कर रहे हैं।
0: स्वागत है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: परभणी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं कहीं।
0: अच्छा, स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। आपकी विविध भारती 1975-77 से हम सुनते आ रहे हैं और आज भी हमारी सुनने की तमन्ना है। सखी सहेली पलो फरमाइश, हाँ, इतना मनोरंजन, यानी हमारे देश की सुरीली धड़कन हमारे परभणी में नहीं बल्कि हमारे पूरे ओड़ में मशहूर है कहीं।
0: क्या बात है कितना
1: देखिए, हमारा रेडियो चलता है और साथ में काम भी चलता है। हम ग्रुप में ऐसा काम करते हैं और रेडियो विविध भारती लगा के रख देते हैं और उसका पूरा सहेली सपना जितने भी प्रोग्राम है उसको का मजा लेते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा और सुरेना मौका बोल तो हमको सखी सहेली सुनने में बहुत मजा आता है कहीं।
0: क्या अच्छा लगता है आपको सखी सहेली में?
1: इतने अच्छे मीठे मीठे हमारे मंदाकिनी ताई, ममता दीदी जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा काम करते करते काम किधर हो रहा है हमें कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि हंसी मजाक और गाने का मनोरंजन आता है तो बड़ा अच्छा लगता है हमको चाहिए।
0: चलिए, अच्छी बात है, आपको अच्छा लगता है हमारी बातचीत करने का अंदाज।
1: हाँ जी हाँ, चाहिए आपकी बात, आपकी आवाज, यानी हमारा रिजिट भारती, मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि हम 1975-77 से हमारे दिल में ख्याल ही आता था जब हम रेडियो सुनते थे तो हम रेडियो से कब बात करेंगे, आपके जैसी हमारी आवाज कब आएंगी। अब देखिए हमको भी समझो कुछ होता, उन्हें नंबर दे दिया आपका और हमारा भी कॉल बहुत जमाने के बाद लगा, हमें इतनी खुशी हो रही है कि जिसकी हद नहीं।
0: बहुत अच्छी बात है ना कि आपको आपके ही दोस्तों ने नंबर दिया विविध भारती का और आपने हमें कॉल कर लिया।
1: जी हाँ जी हाँ,
0: अच्छा,
1: प्रोग्राम में एक छोटा सा शेर बोलने की अनुमति में लेंगे।
0: बिल्कुल बोलिए बोलिए।
1: जहाँ वहाँ मिले वतन हमारा, ये नई मंजिल है, ये नए रास्ते, कांटों से है इसे बचाना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आप क्या करते हैं, परभणी में रहते हैं?
1: जी हाँ, परभणी में रहते हैं।
0: तो अपने शहर के बारे में थोड़ा बताइए हमें, परभणी के बारे में बहुत नाम सुना है हमने।
1: एक खूबसूरत मंदिर मोटा मारुति है जो हमारे परभणी के सभी नागरिक वहाँ पे आते हैं, मिलते हैं। और दूसरी खास बात ये है कि हमारे परभणी शहर में हजरत तुराबुल हक की दरगाह है, जहाँ का उर्स के लिए बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, देव भक्त आते हैं और दरगाह का पूरा दर्शन करके जाते हैं। और इतना बड़ा मेला भरता है जो कि हमारे महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पे आता है का वो परभणी हजरत तुराबुल हक शाह के दरगाह का उर्स यानी मेला।
0: बिल्कुल,
1: ये हर 2 फरवरी को भरता है यहाँ पे परभणी शहर में। बल्कि हमारे अच्छे देश के अच्छे नागरिक और हमारे विविध भारती के ज्यादा से ज्यादा श्रोता आके पूरा मेले का आनंद लेके जाते हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही उम्दा जानकारी आपने दी। कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: आज के इस प्रोग्राम में हमारा फोन लगा है, सबसे बड़ी तो हमें हमारे को बहुत खुशी हो रही है। एक सरगम फिल्म का नाम है और गाने के बोल है डब्ल्यू वाई डब्ल्यू बजा।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: और वैसे बहुत धन्यवाद।

0: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लग गई है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867-0288, 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंकुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी।
1: हेलो फरमाइश।
2: विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।

0: नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
0: प्यार का राग सुनो रे,
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
0: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: तलत अजीज की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे, इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

दीवाना एल्बम से ये गीत सोनू निगम की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। फैज अनवर ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का संगीत। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग विविध भारती से।

0: अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। नजमा मर्चेंट ने इसे लिखा।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडिले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: वेलवेट वॉइस एल्बम से अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज में ये गजल।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।

0: भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे, नशे मन एल्बम का नाम। कासिम कुरैशी ने इसे लिखा, संगीत भूपिंदर सिंह का।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

पंकज उदास की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे मुस्कान एल्बम से, उन्हीं का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं समाप्त होता है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडोमेगवू ओजोफू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वे अपनी आर्थिक शक्ति को अपने लोगों के लिए रोजगार, धन और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के करीब 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग की व्यवस्था के मामले में पिछले कुछ वर्षों में काफी विकास किया है।
1: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 332 अंक गिरकर 74,571 जबकि निफ्टी 126 अंक गिरकर 23,352 पर रहा। एशिया कप महिला क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। कल भारत ने

0: बांग्लादेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है प्रोग्राम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गीत दूसरा आदमी इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत। आज यादों की महफिल में वो गीत जो कहीं ना कहीं संबंधित है आंखों से, नजरों से, नैनों से।

0: मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे सीआईडी फिल्म से। जान निसार अख्तर ने इसे लिखा।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल विविध भारती से।

0: येसुदास की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे सुनैना फिल्म से। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और उन्हीं का संगीत।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: चांदनी चौक टू चाइना, ये था फिल्म का नाम। शंकर महादेवन श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। रजत अरोड़ा ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: शंकर महादेवन की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, लक बाय चांस फिल्म का नाम। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्म

0: किस्मत चमकती है चाहने वालों की प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

अमित त्रिवेदी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे अंधाधुन फिल्म का नाम, जयदीप साहनी ने इसे लिखा, अमित त्रिवेदी का संगीत। इसके साथ ही ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

0: दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवो ओजुखो और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज सुबह ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही।
1: For BRICS particularly, higher economic activity.
2: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
1: And transparent trade and investment.
0: इस अवसर पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
3: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
1: Take to the world as a trusted partner.
0: प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित लोन के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं वर्षगांठ पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 384 अंक गिरकर 74,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said leaders from around the world are gathering in New Delhi for the 18th BRICS summit.

0: पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाई कोर्ट का निर्देश, 6 महीने के भीतर दोबारा कराई जाए जेट परीक्षा। जेपीएससी में अध्यक्ष सदस्यों के खाली पद भरने के लिए दिया 2 महीने का समय। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो को प्रदान किया गया संसद रत्न पुरस्कार। लगातार 5वीं बार ये सम्मान पाने वाले देश के इकलौते सांसद बने। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने ओमान के साथ कैंसर तकनीक साझा करने के लिए टाइप की घोषणा की। जनवरी में रांची में होगा हेल्थ टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक। राज्य में जल्द शुरू होगी महिला किसान खुशहाली योजना, 1 एकड़ का समेकित मॉडल तैयार। और रांची की 3 बेटियां राखी, नैंसी और आयुषी झारखंड अंडर 16 फुटबॉल टीम में शामिल। आज आंध्र प्रदेश में बिहार के खिलाफ खेलेंगी मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षा और प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर 2 बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की खंडपीठ ने झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट को 6 महीने के भीतर दोबारा आयोजित कर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जेपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों के खाली पदों को 2 महीने में भरने का सख्त निर्देश दिया, जिसकी अनुपालन रिपोर्ट 18 नवम्बर तक सौंपनी है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी सीजीएल नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है। कार्मिक विभाग ने पत्र जारी कर सभी विभागों और जिलों को प्रभावित कर्मचारियों को पदों पर बनाए रखने और काम लेने का निर्देश दिया है। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने संसदीय इतिहास में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्हें नई दिल्ली में लगातार 5वीं बार प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो देश के इकलौते ऐसे जनप्रतिनिधि बन गए हैं जिन्हें लगातार 5वीं बार संसद रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक भव्य समारोह में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने उन्हें इस सम्मान से नवाजा। सांसद श्री महतो ने इस ऐतिहासिक गौरव को अपनी व्यक्तिगत सफलता न मानकर जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि सदन में जनता की आवाज को पूरी ईमानदारी से उठाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। आकाशवाणी समाचार के लिए जमशेदपुर से मैं कुमार कुणाल।
0: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने ओमान के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में जल्द टाई अप करने की घोषणा की है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के बाद उन्होंने बताया कि ओमान की आधुनिक कैंसर तकनीक झारखंड लाई जाएगी, साथ ही सरकारी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी और एआई बढ़ाने के लिए जनवरी में हेल्थ कॉन्क्लेव आयोजित होगा। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने सोशल मीडिया पर देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लोगों से इस उत्सव के दौरान वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने की अपील की है।
2: गणपति आने से सुख शांति और समृद्धि, हर जगह उत्साह होता है, गौरव होता है। मूर्तिकार लगातार गणेश भगवान की मूर्ति पे अंतिम रूप दे रहे, देश ऐसे बढ़ता रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने 25 साल अपनी सेवा से मुख्यमंत्री जी के प्रधान और विकसित भारत उनका संकल्प है, वह संकल्प पूरा हो, गणपति उस संकल्प को पूरा करें।
0: राज्य सरकार जल्द ही महिला किसान खुशहाली योजना शुरू कर रही है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस फ्लैगशिप योजना की रूपरेखा तय की गई। इसके तहत 1 एकड़ भूमि को आधार बनाकर समेकित कृषि प्रणाली विकसित की जाएगी, ताकि महिला किसानों को साल भर खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन से आय मिल सके। सीएमपीडीआईएल ने राज्य के युवाओं को रोजगार परक बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए जेएमटीआईआरटीसी के साथ समझौता किया है। इसके तहत रांची, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद और लातेहार के 100 वंचित तथा बेरोजगार युवाओं को टूल एंड डाई मेकर तथा सोलर पैनल मेंटेनेंस का जूनियर टेक्नीशियन स्तर का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना में एससी एसटी दिव्यांग और कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भूदान आंदोलन के प्रणेता भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे की जयंती पर आज हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय में विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा सहित शिक्षकों और छात्रों ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कुलपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आचार्य भावे के सिद्धांतों पर ही आधारित थे।
3: विनोबा के विचार, गांधी के विचार, शाश्वत विचार, वो हमेशा हर युग में और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान नहीं होना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गांधी और विनोबा के विचारों पर ही आधारित और हमारा लगातार प्रयास है। हमने इस साल हम अब स्नातकोत्तर के कार्यक्रमों में तो सुधारने जा रहे हैं या बदलने जा रहे हैं, हाथ से काम करने की कला, केवल किताबी ज्ञान नहीं तो ज्ञान भी होगा और हुनर भी होगा।
0: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने UCIL की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। जादूगोड़ा के मेचुआ और इचड़ा गांवों के दौरे के बाद उन्होंने ग्रामीणों की पेयजल, रोजगार और मुआवजे की समस्याएं सुनी। उन्होंने प्रबंधन को लंबित मामलों का निष्पादन कर 15 दिनों में अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। गोड्डा जिले में बिजली बिल में भारी गड़बड़ी को लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश है। 400 से 500 रुपए सामान्य बिल वाले उपभोक्ताओं को 10,000 से 25,000 रुपए तक का बिल थमा दिया गया है। आक्रोशित लोगों ने बिजली कार्यालय का घेराव कर स्मार्ट मीटर व्यवस्था का विरोध किया। SDO ने गड़बड़ी मानते हुए बिल सुधार का आश्वासन दिया है।
4: टेक्निकल इश्यू के चलते डाटा जो है गलत हो गया है, जो डाटा है वो सुधारा जा रहा है, प्रोसेस में लगे हुए हैं। वो टेक्निकल इश्यू जो इंट्री करते हैं डाटा, उसी के साथ प्रॉब्लम। स्मार्ट मीटर फास्ट चल रहा है तो ऐसा कोई बात नहीं है, मीटर सही है।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को 27 सितंबर को जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित करम महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। कुड़मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें औपचारिक आमंत्रण पत्र सौंपा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 332 अंक गिरकर 74,571 पर, जबकि निफ्टी 126 अंक गिरकर 23,332 पर रहा। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपये प्रति किलो है। और रांची के कांके स्थित स्टार वॉरियर्स फुटबॉल क्लब की तीन खिलाड़ियों राखी कुमारी, नैन्सी मुंडा और आयुषी कुमारी का चयन झारखंड अंडर-16 टीम में हुआ है। खेतों और मैदानों में अभ्यास कर खेल निखारने वाली ये तीनों बेटियां आज आंध्र प्रदेश के बिहार के खिलाफ होने वाले मुकाबले में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड हाई कोर्ट का निर्देश, 6 महीने के भीतर दोबारा कराई जाए जेट परीक्षा। JPSC में अध्यक्ष सदस्यों के खाली पद भरने के लिए दिया 2 महीने का समय। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो को प्रदान किया गया संसद रत्न पुरस्कार। लगातार 5वीं बार ये सम्मान पाने वाले देश के इकलौते सांसद बने। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने ओमान के साथ कैंसर तकनीक साझा करने के लिए टाइप की घोषणा की। जनवरी में रांची में होगा हेल्थ टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक। राज्य में जल्द शुरू होगी महिला किसान खुशहाली योजना, 1 एकड़ का समेकित मॉडल तैयार। और रांची की तीन बेटियां राखी, नैन्सी और आयुषी झारखंड अंडर-16 फुटबॉल टीम में शामिल। आज आंध्र प्रदेश में बिहार के खिलाफ खेलेंगी मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

कहानी शुरू होती है दामिनी से। दामिनी एक सीधी सादी और खुश मिजाज लड़की है। उसकी शादी होती है शेखर गुप्ता से। शेखर एक संपन्न परिवार से है और शादी के बाद दामिनी भी अपने नए परिवार में खुश रहने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि अब यही उसका घर है और यही उसके अपने लोग हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कभी कभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ ले लेती है जिसकी हमने सपने में भी कल्पना नहीं की होती है। दामिनी की जिंदगी में भी ऐसा ही मोड़ आता है। एक दिन उसके सामने घर में काम करने वाली एक लड़की के साथ हुआ एक गंभीर अपराध आता है और दामिनी उस घटना की गवाह बन जाती है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो सच बोले या फिर परिवार की इज्जत के लिए चुप रह जाए। दामिनी के लिए ये फैसला आसान नहीं है, क्योंकि जिन लोगों पर आरोप है वे उसके अपने परिवार से जुड़े हैं और यहीं से शुरू होती है दामिनी की असली परीक्षा। दामिनी सच बोलना चाहती है, लेकिन परिवार चाहता है कि वो चुप रहे। उसे समझाया जाता है कि अगर ये बात बाहर चली गई तो परिवार की बदनामी होगी, लेकिन दामिनी के मन में एक बात बार बार आती है, गलत तो गलत है, चाहे उसे करने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो। दामिनी अपनी बात पर कायम रहती है, लेकिन सच का साथ देना उसके लिए आसान नहीं रहता। उसे दबाव का सामना करना पड़ता है, उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जाता। धीरे धीरे वो अपने ही घर में अकेली पड़ने लगती है। जिस परिवार को उसने अपना समझा, उसी परिवार के लोग अब उसके खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं और यही फिल्म हमें एक बहुत बड़ा सवाल देती है, क्या परिवार की इज्जत सच से बड़ी हो सकती है? दामिनी का जवाब है, नहीं।

दोस्तों धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। अब कहानी और मुश्किल होती जाती है। दामिनी की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे मानसिक रूप से भी बहुत परेशान किया जाता है। उसकी बात को कमजोर साबित करने की कोशिश होती है, लेकिन उसके भीतर की सच्चाई उसे हारने नहीं देती। और फिर कहानी में आता है एक नया मोड़। दामिनी की जिंदगी में आता है वकील गोविंद श्रीवास्तव। सनी देओल ने इस किरदार को निभाया था। गोविंद खुद भी परेशानियों से घिरा हुआ इंसान है, लेकिन जब उसे दामिनी के सामने की सच्चाई पता चलती है तो वो उसके साथ खड़े होने का फैसला करता है। अब दामिनी अकेली नहीं है, उसके साथ एक ऐसा इंसान है जो सच को सच कहने से डरता नहीं है। और अब कहानी पहुंचती है अदालत तक। एक तरफ दामिनी की सच्चाई है, दूसरी तरफ पैसा है, ताकत है और प्रभाव है। अदालत में सवाल होते हैं, जवाब होते हैं, गवाह सामने आते हैं और हर कदम पर दामिनी को चुनौती का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर है बैरिस्टर इंद्रजीत चड्ढा। ये भूमिका निभाई थी अमरीश पुरी ने। अब आमने सामने हैं दो मजबूत किरदार, गोविंद श्रीवास्तव और इंद्रजीत चड्ढा। अदालत के इन दृश्यों में सनी देओल और अमरीश पुरी की टक्कर फिल्म का बेहद यादगार हिस्सा बन जाती है। और इसी फिल्म का एक संवाद बाद में लोगों की जुबान पर चढ़ गया, तारीख पे तारीख। आज भी जब अदालतों में तारीख पर तारीख मिलने की बात होती है तो इस संवाद को याद किया जाता है। और इन सबके बीच दामिनी की जिंदगी लगातार एक मुश्किल रास्ते पर आगे बढ़ रही होती है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि दामिनी केस जीतेगी या हारेगी, सवाल ये है कि क्या सच की आवाज इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो पैसे और प्रभाव के सामने भी टिक सके। और आखिरकार कहानी उस मुकाम पर पहुंचती है जहां सच सामने आने लगता है। दामिनी ने जिस बात के लिए लड़ाई शुरू की थी वो लड़ाई अब बहुत बड़ी हो चुकी है। उसने सिर्फ अपने लिए आवाज नहीं उठाई, उसने ये साबित किया कि अगर हम किसी गलत चीज को अपनी

अमित कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे तेरी कसम फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आरडी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चेहरे पर मुस्कान आती है गीत संगीत से और एक शांति और सुकून मिलता है उन्हें अपने पसंद के गीत सुनकर, और पसंदीदा गीत बज जाए अपने आप तो फिर क्या कहने। इस प्रोग्राम में कुछ गीत जैसे कि तराना का गीत एक अरसे के बाद वो सुन रही हैं और इसीलिए उन्हें अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि पसंदीदा गानों को वो लगातार दिन भर सुन सकते हैं। जी हाँ, म्यूजिक एक थेरेपी है और जो हम अपने मन को प्रफुल्लित करने के लिए सुन सकते हैं हमेशा। और एक बहुत अच्छी बात है कि म्यूजिक सुनते सुनते, संगीत सुनते सुनते हम बाकी के काम भी कर सकते हैं, हमारे बाकी काम नहीं रुकते हैं बिल्कुल भी। हमारे गौर श्रोता लिखते हैं कि जब पंछी आकर पानी पीते हैं एक एक करके और उन्हें वो निहारते हैं, देखते हैं, तो उनके चेहरे पर एक प्यारी से मुस्कान आ जाती है ये देखते हुए, और ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर हमें देख रहे हैं और ये पंछी भी कुछ बोल तो नहीं पा रहे लेकिन जरूर राहत महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि धुंध और कोहरे से भरी हुई ये पर्वत घाटियों में गूंजता ये सुंदर गीत उन्हें बहुत पसंद आया है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारी मुस्कान हमारे लिए एक फायदे का सौदा होती है, इसके जरिए दुनिया जीती जा सकती है। और उन्होंने काफी साल एक डाक विभाग में गुजारे हैं, सरकारी विभाग में, और वहां पर उनकी मुस्कान उनका शस्त्र हुआ करती थी। गुस्से भरे शख्स को भी वो इस हथियार के सहारे शांत किया करते थे। और एक बार किसी ने उनके सामने पैसों का बंडल डाला डिपॉजिट करने के लिए, तो उन्होंने एक डायलॉग मार दिया एक फिल्म का कि आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूं, और वो चौंक गए और बस खिलखिला उठा सारा समाज जो था। जी हाँ बिल्कुल, तो मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है, बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ गीत हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, जैसे कि ये अगला गीत। बढ़ते हैं आगे इस प्रोग्राम में।

येसुदास की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। कैफी आजमी ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत और टूटे खिलौने फिल्म का नाम। आपको बता दें कि इसी प्रोग्राम में कुछ देर पहले जो आपने गीत सुना तराना फिल्म से, गुंचे लगे हैं कहने, शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गीत और इसे लिखा तिलक राज थापर ने और संगीत राम लक्ष्मण का। आपके संदेशों पर आते हैं और जब मुस्कुराते हुए चेहरे की बात आती है तो आपके संदेश भी मुस्कुरा रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है पढ़ते हुए। और हमारे एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आज सुरीला सफर के गीत मुझे उम्र के उस पड़ाव पर अतीत की खूबसूरत यादों में ले गए और होठों पर बरबस ही मुस्कान आ गई। धन्यवाद विविध भारती, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं कि पिछले महीने अगस्त में वो जम्मू कश्मीर बाबा अमरनाथ जी माता वैष्णो देवी गोल्डन टेंपल अमृतसर के दर्शन करने गए थे और साथ में श्रीनगर भी घूमने गए थे और ये कहीं ना कहीं उन्हें रिफ्रेश कर गया, आनंदित कर गया। जी हाँ, घूमना बीच बीच में वक्त निकालना अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सारे गाने हमारे जवानी के दिनों यानी कि कॉलेज के ज़माने के सुनाए जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और ऐसा लग रहा है मानो जवानी लौट आई है। जी हाँ, इन गीतों के साथ कुछ ऐसा ही होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुराने की वजह तुम हो विविध भारती, इस परिवार यानी कि विविध भारती परिवार से जो सुकून मिलता है मानो दिल में किसी ने मरहम लगा दिया हो और गीत बजा दिया हो। जी हाँ बिल्कुल, हम चाहेंगे कि मरहम लगाने की जरूरत ना पड़े लेकिन हाँ आपके दिल को आनंदित जरूर करते रहें। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेहरे अगर हंसमुख होते हैं तो उन्हें देखते ही बस उनसे बात करने का जी चाहता है, किसी न किसी बहाने बस उनसे बात हो जाए तो दिल बाग बाग हो जाता है। ऐसे हमारे साथ दिल्ली में हुआ एक ऑफिस में और एक सेक्रेटरी थी, उन्हें देख के उनका चेहरा देखकर अभी तक नहीं भूले हैं वो और बस बहुत ही हंसमुख थी और उनका वो चेहरा दिल में उतर आया था। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आप अपने नूरानी चेहरे को हंसते हुए रखने के लिए, मन को झूमता हुआ रखने के लिए क्या करते हैं? इसके अलावा कौन सी आदतें हैं जो आपने अपनाई है अभी रिसेंटली जिससे कहीं ना कहीं दिल प्रफुल्लित हो जाता है, वो जरूर लिखकर भेजिए। फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: याराना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में राजेश रोशन का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही आसान थी, बहुत जल्दी उन्होंने गीतों की लिस्ट बना ली, फहरिस्त बना ली, लेकिन अभी अभी वो बस किसी काम से खाली हुए हैं, खाना खाने का काम कर रहे थे और अभी किसी और काम की तरफ बढ़ना है। जो उन्होंने लिखा है वो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि खाना खाने के बाद गीत सुनते हुए अब किसी और काम की तरफ बढ़ेंगे। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये एक घंटा यानी कि 60 मिनट वीबीएस टीम के साथ हैं, इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता लिखते हैं कि संबंध बनाना यानी कि रिश्तेदारी निभाना, बहुत ही रिश्तेदार रखना होता ज़रूर है क्योंकि हमारे साथ रिश्तेदार जुड़े होते हैं, परिवार वाले लोग जुड़े होते हैं, लेकिन इस रिश्ते का निर्वाह करना आसान नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कभी किसी को कुछ बुरा लग जाए या किसी को कैसे प्रसन्न किया जाए, इसमें कहीं ना कहीं असमंजस जरूर हो जाती है क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से पड़ाव आते हैं जब ऐसी चीज़ें होती है, तो ऐसे में बहुत समझदारी से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, जीवन का नाम बैलेंस बनाकर चलना है, ये बैलेंस जो है वो ज़रूर रहना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे जिन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखकर भेजी है, तुम दो कदम दो साथ अगर आसान हो जाए सफर, छोड़ो भी ये दुनिया का डर, तोड़ो ना दिल इनकार से, देखो कभी तो प्यार होता है, कुछ कुछ उन्होंने लिखा है, हालांकि अच्छा लिखा है, दिल से लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। छूकर मेरे मन को, इस गीत की प्रतीक्षा कब से थी और अब जाकर ये गीत आया है, ऐसा 2 से 3 श्रोताओं ने लिखा है जिन्हें इस गीत का इंतजार था, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हम किसी से कम नहीं फिल्म से आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ चेहरा किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें उस शख्स की मुस्कान सबसे अच्छी लगती है जो बिना किसी स्वार्थ छल या दिखावे के अपने दिल से मुस्कुराता है। जी हाँ, और ये मुस्कान दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान होती है। छोटे बच्चे की मुस्कान भी हमारा मन मोह लेती है और वो भी बड़ी मासूम और किसी स्वार्थ के परे होती है। बिल्कुल सच कहा आपने। बहुत से श्रोताओं ने लिखा है कि उनके बहुत सी गीतों की फहरिस्त पूरी हुई है और प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति से बंधी ये जो इबारत है इसमें बहुत से गीत आसान थे गेस करने बताने, लेकिन सुनने में उतना ही मजा आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि प्यार इंसान के भीतर दया धैर्य और संवेदनाशील को जगाता है जिससे वो जिंदगी को और सकारात्मक नजरिए से देखने लगते हैं। जी हाँ, सकारात्मक दृष्टिकोण होना बहुत ज्यादा जरूरी है और प्यार जिंदगी का वो हसीन एहसास है जो किसी के करीब होने से ज्यादा उसके ख्याल मात्र से चेहरे पर मुस्कान ले आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके संदेश पढ़कर इस वक्त हमारे चेहरे पर मुस्कान खिल गई है।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

फिलहाल सोच से परे ये गीत हम आपको इतना ही सुनवा पाएंगे और इस गीत के साथ ही इजाजत चाहते हैं। आज का सुरीला सफर आप सुन रहे थे अनुराधा के संग।

0: India's civilizational ethos. India has crossed the significant milestone of 80 lakh human papillomavirus HPV vaccinations, marking another major step towards strengthening preventive health care and protecting against HPV infection and HPV-associated cancers. The Ministry of Health and Family Welfare said every vaccination brings India closer to a healthier and cancer-free future for its daughters. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today launched the One Tag facility for Fast Tag portability in Mumbai. It allows vehicles to link their existing Fast Tag to a new bank account through the Rajmarg Yatra app. With this facility, motorists will no longer need to remove or replace their existing Fast Tag sticker when changing their bank account. Addressing the gathering, Mr. Gadkari said the government aims to bring down the waiting time at toll plazas to less than 10 seconds by the end of the current financial year. The BJP today announced Debashish Sharma as its candidate for the by-election to the Nagaon Lok Sabha seat in Assam. His candidature was approved by the party's Central Election Committee. The notification for the Lok Sabha by-election was issued last week. Candidates can file their nominations until the 16th of this month. Polling will be held on the 6th of October, while counting of votes will take place on the 9th of October. Besides the Nagaon Lok Sabha by-election, 5 assembly seats will also go to polls on the 6th of October. In Bihar, the flood situation remains critical. According to the State Disaster Management Department, more than 44 lakh people remain affected across 85 blocks in 14 districts. More from our correspondent.
1: Relief operations are underway in the affected districts, with 1,046 community kitchens serving food. More than 2,50,000 polythene sheets and over 41,000 of dry ration packets have been distributed. 1,942 boats are in operation, while 812 medical camps have been set up. According to the Water Resources Department, water levels in major rivers have receded over the past 24 hours. However, 8 rivers are still above the danger mark. The Ganga remains above the danger mark at several locations in Patna, Munger, Bhagalpur and Kahalgaon, while the Kosi is above mark at Baltara in Khagadia and Kursela. The Punpun River at Shripalpur in Patna is receding by around 2 centimeters every hour, bringing relief to people in low-lying areas. Nirishri for Akashvani News, Patna.
0: In sports, in the Junior Asia Cup hockey, the Indian men's team will take on Malaysia in the semi-final at Mochi in China this afternoon. The match will begin at 2:15 p.m. Indian Standard Time. In U.S. Open tennis, defending champion Arina Sabalenka and second seed Elena Rybakina have set up women's singles title clash. Second seed Elena Rybakina defeated fourth seeded Coco Gauff in the second semi-final in New York. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi expresses hope for positive discussions with aspiration for global welfare as world leaders gather in New Delhi for BRICS summit commencing tomorrow. Prime Minister Modi to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin and Iranian President Masoud Pezeshkian today. BRICS Business Forum begins in national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for greater resilience, sustainability and cooperation amid rising global uncertainty as BRICS marks 20 years. India reiterates unwavering resolve to combat terrorism on 25th anniversary of horrific 9/11 attacks in the US. In Men's Junior Asia Cup hockey, India to take on Malaysia in semi-final at Mochi in China this afternoon. With that, we end the midday news.
2: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। चीन में जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और अमरीकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में आरेना सबालिंका का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
3: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरू वीएइरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज असल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
4: बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
5: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेग्वू ओजुक्वू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरू वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए

0: डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही।
1: For BRICS particularly, higher economic activity.
2: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
1: and transparent trade and investment.
0: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स की विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।
1: This year is a milestone.
2: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
3: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
1: Take to the world as a trusted partner.
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा

0: समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
1: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के पालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमेरिकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आर्यना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540, जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे तीन देवियां फिल्म से, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा एस डी बर्मन की तर्ज।
1: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
3: बिल्कुल।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: तेरे घर के सामने, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एसडी बर्मन की तर्ज थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गड्डी ले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती से।

संगम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दूसरे राज्यों में जन्मे मतदाता भी अपने गृह राज्य से जारी मान्य दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इसके लिए दस्तावेज का झारखंड से ही निर्गत होना जरूरी नहीं है। वंशावली, खतियान और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे ईसीआई द्वारा मान्य दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि नोटिस मिलने पर सुनवाई में उपस्थित होकर दस्तावेज प्रस्तुत करें ताकि कोई पात्र मतदाता वंचित न रहे। यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियंस के आह्वान पर आज बैंकों में एक दिवसीय हड़ताल रही। बैंक कर्मियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर सप्ताह में 5 कार्य दिवस लागू करने और पीएल संबंधी विसंगतियां दूर करने की मांग की। पाकुड़ जिले में यूनियन के स्टाफ एसोसिएशन के क्षेत्रीय सचिव अवनी कांत ने कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में 2 दिवसीय हड़ताल की जाएगी।
1: पीएलआई में जो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, स्केल 4 और एभा को ज्यादा मिल रहा है और स्केल 4 और नीचे तो कम मिल रहा है। दूसरा हम लोग का मांग है 5 डे बैंकिंग। आगे हम लोग 2 दिवसीय स्ट्राइक करने वाले हैं, फिर इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे। हम लोग चाहेंगे कि गवर्नमेंट हम लोग के मांग को स्वीकार कर ले ताकि किसी को कोई दिक्कत और परेशानी का सामना भविष्य में ना करना पड़े।
0: भारत ने 80 लाख ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण का अहम पड़ाव पार कर लिया है। यह रोकथाम वाली स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने और HPV संक्रमण व उससे जुड़े कैंसर से बचाव की दिशा में एक और बड़ा कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि हर टीका भारत को अपनी बेटियों के लिए एक स्वास्थ्य और कैंसर मुक्त बनाता है। राजधानी रांची में करमटोली, अरगोड़ा और हरमू फ्लाईओवर के टेंडर फाइनल हो गए हैं। स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड की ओर से अक्टूबर में दुर्गा पूजा के बाद इनका निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। इन तीनों महत्वपूर्ण फ्लाईओवर के बनने से शहरवासियों को रोजाना लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने दिवंगत नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार की पत्नी श्वेता शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान DGP ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सुदिव्य कुमार का निधन राज्य के लिए बड़ी क्षति है।
2: ऑब्वियसली इतना बड़ा लॉस हुआ है, जिससे तो परिवार में एक मुआवजी होकर चले गए हैं। तो ये तो हम लोग का फर्ज है कि हम लोग का प्लान आओ और दैट वी आर देयर विथ यू, ये तो हम आपको बताना है।
0: देवघर जिले में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि देवघर में एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी, 2 TA बटालियन और 1 सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए कुल 263 एकड़ भूमि की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने कहा कि इन बड़े रक्षा प्रोजेक्ट्स के साकार होने से क्षेत्र में सुरक्षा सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ रोजगार और स्थानीय व्यवस्था को एक नई गति मिलेगी। JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ भाजपा के 4 दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन का आज आखिरी दिन है। आज गुड्डा, खूंटी सहित 6 जिलों में DC/SP कार्यालयों का घेराव किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी गुड्डा में, जबकि प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू खूंटी में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। भाजपा CBI जांच और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग पर अड़ी है। रांची रेल मंडल के कोच कुलदीप शर्मा को भारतीय रेलवे की सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। वे दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल से इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी हैं। कुलदीप शर्मा 15 सितंबर से 11 अक्टूबर 2026 तक खुर्दा रोड में आयोजित होने वाले कोचिंग कैंप में टीम का मार्गदर्शन करेंगे। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर DRM करुणानिधि सिंह ने उन्हें बधाई दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: ये है विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। हेलो सहेली का कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार दोस्तों, जीवन में खुश रहना, प्रसन्न रहना, सेहत का ध्यान रखना कितना आवश्यक हो चला है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। फिर भी घर के व्यस्त कामकाज में स्वयं का ध्यान रखना कहीं पीछे छूट जाता है एक महिला के लिए। लेकिन ये भी याद रहे कि हम सहेलियां ही तो परिवार की धुरी है ना। खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, समय निकालिए, थोड़ा वर्जिश कीजिए, और हाँ, मंगलवार के दिन हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए फोन कॉल्स कीजिए। तो बस, अपनी सखियों से बात करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी इस सखी से होंगी बातें। देखिए ना, फोन की घंटी भी बज उठी है। चलिए उठाते हैं आज का पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्कार, बताइए किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम है आरती।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आरती जी?
1: मैं हैदराबाद किशनबाग गुड़ा से बात कर रही हूँ।
0: हैदराबाद से? अरे वाह, क्या हाँ। बात है। बताइए कैसी हैं आप और क्या चल रहा है इन दिनों?
1: कुछ नहीं, सावन का महीना, वही पूजा व्रत वही चल रहे हैं।
0: हाँ हाँ।
1: और मुझे वेद भारती मतलब बहुत बचपन से मेरे नाना जी सुना करते थे पहले, उसके बाद फिर मेरे पापा मम्मी सब सुनते हैं, और मेरे बहने मेरे मम्मी पापा सब सुनते हैं, समझे मेरे घर से।
0: अच्छा,
1: हमारे नाना जी को अलग अलग रेडियो लाने के शौक थे, मेरे मम्मी बताती है अलग अलग रेडियो से वो लाते रहते थे हमेशा।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है। अब ये बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: जय संतोषी माँ है फिल्म का नाम है, और करती हूँ तुम्हारा व्रत में गाने का बोल है।
0: जी बहुत सुंदर,
1: आपने मेरा कॉल लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके वेद भारती से।
0: आरती जी,
1: मेरा सौभाग्य है
0: जी
1: मिला जो आपका इसमें बात करने का।
0: आरती जी, आपने समय निकाल करके कॉल किया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और चलिए, खुश हम भी बहुत हैं, और इसी बात पर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सहेली आज हमसे बात कर रही है?
1: पुष्पा देवी झांसी से बोल रहे हैं।
0: झांसी से? अरे वाह पुष्पा जी। हाँ। बताइए कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी
0: जी। और क्या चल रहा है इन दिनों, और परिवार में कौन कौन है?
1: दो लड़के हैं, लड़की हैं, सास ससुर हैं, पति देव हैं।
0: अरे वाह, आप क्या करती हैं? भरा पूरा परिवार है ना?
1: हाँ भरा पूरा परिवार है, हम फल की दुकान चलाते हैं दीदी।
0: आपकी ये फल की दुकान है तो अलग अलग किस्से कहानियाँ भी तो मरीज के जो परिवारजन होते होंगे वहाँ पे खड़े होके बातें करते होंगे।
1: हर कोई सुनाता है जब आते हैं हमारे फल की दुकान पे लेने के लिए, तो सब कोई अच्छी सुनाता है। कोई अपनी दुखी ज्यादा रहती है यहाँ पर, दुख मतलब
0: जी जी
1: ज्यादा वितरण करते
0: हैं। तो फिर आप क्या उन्हें कुछ प्रेरणा के दो शब्द कहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा, इस तरह का कुछ कहती हैं?
1: हाँ, भगवान जी कहते हैं कि दुआ करेंगे सब ठीक हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: टेंशन नहीं लूँ मतलब
0: जी। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं जो मेरी रूए से चैन दे प्यार दे जिंदगी गए हो।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म कसूर का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, नमस्ते। किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ इंदौर से।
0: जी ज्योति जी, इंदौर से। बताइए कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ
0: जी, और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों? अभी तो त्योहारों के बिल्कुल मौसम जैसा आ गया है ना?
1: जी। बच्चे हैं छोटे,
0: हाँ।
1: 6 साल का है, 3 का है।
0: तो मतलब दिन भर व्यस्तता तो आपकी रहती ही होगी, है ना?
1: जी,
0: हाँ, क्योंकि छोटे बच्चों को उनका ध्यान
1: स्कूल
0: रखना।
1: जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, स्कूल
1: जी
0: जा रहे हैं तो उनका टिफिन बनाना है, फिर घर वापस आ रहे
1: जी
0: हैं तो तब भी बच्चों को कुछ ना कुछ नाश्ता, कुछ अलग अलग तरह की चीजें चाहिए होती हैं, है ना?
1: जी
0: जी,
1: हाँ,
0: तो बच्चे ट्यूशन जाते हैं या घर पर ही पढ़ते हैं बाद में, स्कूल से आने के बाद?
1: ट्यूशन जाता है, एक बड़ा एक नहीं जाता छोटा।
0: जी, तो यानी कि आपको तो समय ही नहीं मिलता होगा अपने लिए।
1: हाँ, बहुत कम मिलता है
0: ऐसे में फिर रेडियो किस तरह सुन पाती हैं आप?
1: जी, सुन लेते हैं थोड़ा बहुत, ये सुनते हैं हमारे हस्बैंड।
0: जी, तो पति देव सुनते हैं और आप भी साथ में सुनती है ना?
1: जी,
0: जी, तो ज्योति जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है ममता, गीत से बोले हैं रहे ना रहे हम।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं किस सखी का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए किससे बात हो रही है?
1: वैष्णवी मुड़े।
0: वैष्णवी मुड़े, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: नांदेड़ से।
0: जी वैष्णवी, बताइए नांदेड़ से कैसी हैं आप और कैसा है नांदेड़?
1: नांदेड़ तो अच्छा है, मैं भी अच्छी हूँ।
0: और बताइए क्या करती हैं आप, परिवार में कौन है?
1: परिवार में मेरा छोटा बच्चा
0: हाँ,
1: और मम्मी जी है।
0: अच्छा परिवार है, मतलब
1: हाँ,
0: भरा पूरा
1: बेटा
0: परिवार
1: भी
0: है।
1: है। हाँ, परिवार है।
0: और आप क्या करती हैं बताइए आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ, छोटा बेबी है 5 महीने का।
0: ओ, ये तो बहुत ही छोटा बच्चा है, अभी तो आपको हर वक्त उसका ध्यान रखना पड़ता होगा।
1: हाँ,
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: ABCD मतलब गन गन गणपति वाला गाना।
0: ABCD फिल्म का, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए किससे बात हो रही है?
1: मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश गोंडा से।
0: उत्तर प्रदेश गोंडा से क्या बात है?
1: आज मैम मेरी पहली बार कॉल लगी है ना, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ।
0: एक बात बताएं अनु जी, आपकी आवाज से ही समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, और हम भी बेहद खुश हैं कि आपने कॉल लगाने की कोशिश की। क्या करती हैं आप, बताइए?
1: मैं जॉब करती हूँ और तैयारी करती हूँ रेडियो के साथ मैच की।
0: जॉब कर रही हैं और तैयारी किस चीज की?
1: जिस जॉब पे हूँ ना उसी, और अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए।
0: अच्छा, तो प्रमोशन आपको मिल जाए इसके लिए आप कोशिश कर रही हैं और उसी की तैयारी कर रही हैं। जी जी, तो उसके लिए पढ़ाई करनी होती होगी, कैसे क्या करना होता होगा?
1: मैम उसके लिए मतलब हाँ पढ़ाई करनी पड़ती है, तो वो कर लेते हैं हम।
0: तो आप देखिए जॉब भी कर रही हैं और पढ़ना भी है क्योंकि प्रमोशन चाहिए, तो कैसे समय निकालती हैं फिर पढ़ाई के लिए?
1: मैं तो पढ़ाई के लिए भी समय निकाल लेती हूँ और साथ साथ रेडियो भी सुनती रहती हूँ, और दिवस भारती मैं हमेशा सुनती रहती हूँ। यहाँ के कार्यक्रम मुझको बहुत अच्छे लगते हो, आज के फनकार हो गए, या पिटारा हो गया, हेलो सहेली हो गया, बहुत सारे कार्यक्रम है जो मुझको बहुत अच्छे लगते हैं।
0: अरे वाह, यानी कि आप तो एक दिन मतलब कि दिन का जो हम 12 घंटा इस्तेमाल करते हैं ना काम काज करने के लिए, उसमें तो आप कई सारे काम कर लेती हैं। जॉब भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और रेडियो भी सुन रही हैं, क्या बात है। तो हम आपको आपके प्रमोशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई अभी से देते हैं अनु पांडे जी।
1: फूलों की ताजगी चांदनी की चमक, विविध भारती रेडियो तो है खुशियों का कमल,
0: क्या बात है।
1: और मैम हमको गाना सुनना है, फिल्म का नाम है तेरे नाम, और गाने के बोल है तुमसे मिलना बातें करना। आज ना हमको आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हमें भी आपसे बात करके बहुत ज्यादा आनंद आया अनु पांडे जी। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी,
1: नमस्ते।
0: किससे बात हो रही है?
2: निशा कुशवाहा बोल रही हूँ मैम, नीचागढ़ जिला अशोकनगर से।
0: अच्छा, बताइए निशा जी, कैसी हैं आप?
2: ठीक है, आप कैसी हो दीदी?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
2: दीदी ध्यानदार पिक्चर का सुनवा दीजिए, आएगा मजा बरसात का।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं, लेते हैं ये कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम है आरती डांगी है, मध्य प्रदेश जिला सागर ग्राम जमीन खामरिया से बोल रहे हैं।
0: खामरिया से बोल रही हैं आप, बताइए जिंदगी में सब कुछ कैसा चल रहा है और कैसा चल रहा है आपका शहर?
1: जिंदगी में दीदी सब कुछ अच्छा है, शहर भी अच्छा है, लेकिन दुख सुख तो आते जाते रहते हैं। अभी हमारी माँ का डेथ हुआ है दीदी, इसलिए अधिक दुखी है।
0: जी हम समझ सकते हैं आरती जी की माँ का ना होना, यानी ये खालीपन किसी भी चीज, कोई धन कोई पद किसी से भी पूरा नहीं किया जा सकता, है ना?
1: जी दीदी, मेरा मायका है छिंदवाड़ा जिला का और सागर का ससुराल है यहाँ का,
0: जी।
1: मतलब 250-300 किलोमीटर की दूरी है।
0: अच्छा, 300 किलोमीटर की दूरी है ससुराल और मायके के बीच में।
1: जी दीदी, हम बिल्कुल महाराष्ट्र के किनारे पे रहते हैं एकदम।
0: अच्छा, अब परिवार में कौन कौन है?
1: सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी है और मेरी दो बेटा है, पति देव, हम सब लोग भारत पूरे परिवार से हैं।
0: आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज हम गीत सुनेंगे दीदी राजा और रंग फिल्म का, वो तो कितनी अच्छी है माँ के लिए।
0: जी, तो आपकी माँ को समर्पित ये गीत प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली कृष्णा
0: जी, आज किसका कॉल लगा है? अपना नाम बताइए।
1: लोवंशी, जिला खंडवा से लगा मेरा फोन।
0: क्या बात है, आप क्या करते हैं?
1: खेती करती हूँ दीदी मैं। जी
0: अरे वाह, खेती का काम करती हैं। तो इस वक्त क्या आप खेत पर ही हैं?
1: दीदी, खेत में नहीं, घर पे हूँ और मक्का लगाई है दीदी मैंने।
0: मक्का लगाई है, तो कब तक इसकी

0: कटाई हो जाएगी फिर?
1: ये अभी दीपावली तक होगी दीदी।
0: अच्छा, दीपावली तक।
1: मेरे दो लड़के हैं,
0: हाँ हाँ
1: एक खेती करता है और एक लड़का बड़ा वाला मेडिकल पे है।
0: तो आप भी जाती हैं खेती करने?
1: जाती हूँ जी। मेरी बहू भी है,
0: हाँ हाँ तो वो भी
1: वो
0: जाती
1: भी,
0: हैं।
1: हाँ दोनों जाते हैं।
0: अरे वाह जी, ये तो बहुत मेहनत का काम है खेती करना। कृष्णा जी, हमारे देश का तो आधार है किसान और खेत। तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? हमें आपसे बात करके बेहद प्रसन्नता हो रही है।
1: गदर फिल्म का है दीदी, ऊर्जा काले कावा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म गदर का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते। मैं
0: नमस्ते जी, अपना नाम बताइए सहेली।
1: अनिता वर्मा बोल रही हूँ, द्वारका, दिल्ली से। हाँ
0: दिल्ली से अनीता वर्मा जी, बताइए कैसी हैं
1: जी,
0: आप?
1: जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मैम? जी
0: बिल्कुल अच्छे हैं, यहाँ पर भी सब ठीक है। और अपने बारे में बताइए अनीता जी।
1: हाँ मैम, मैं हाउस वाइफ हूँ और हेलो सहेली में फोन करती रहती हूँ 2.5-3 महीने के बाद कि कभी का नंबर लगता रहे।
0: जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने 2 महीने का पूरा जो हम अनुरोध करते हैं, आपने वो समय का पूरा शांति से इंतजार किया और 2 महीने के बाद कॉल कर रही हैं।
1: हेलो सहेली, ये रोहित भारती के साथ ही प्रोग्राम, क्या क्या बताऊँ मैं, सभी बहुत पसंद है मुझे, इन्हीं के साथ मेरा काम होता रहता है।
0: जी बिल्कुल, तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप विविध भारती के सारे कार्यक्रमों को पसंद करती हैं। रेडियो तो सुनती ही हैं और सारा दिन आप संगीतमय, आपका दिन ये निकलता है। इसके अलावा और आप क्या करते हैं?
1: मैम घूमने का भी शौक है, 2-4 महीने बाद चक्कर लग ही जाता है, घूमने की बहुत शौकीन हूँ, शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, सूट साड़ी ये ज्यादा मुझे पसंद आते हैं, अपने इंडियन जो
0: जी, और
1: हमारे ये कपड़े
0: जी
1: हैं।
0: जी जी और दिल्ली तो प्रसिद्ध भी है ना शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए बिल्कुल यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें, हर प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं और आप उसका शौक भी रखती हैं। और देखिए, एक महिला को ये सारी चीज़ों का शौक होना भी चाहिए, आपको क्या लगता है?
1: हाँ जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर महिला ही नहीं शौकीन होगी तो और कौन होगा,
0: जी
1: इसी तरह
0: हाँ
1: जचते हैं और कोई तो पहन नहीं सकता ये
0: बिल्कुल
1: सारी
0: जी,
1: चीजें। जी
0: इतनी सारी चीजें होती हैं हम महिलाओं के लिए पहनने के लिए। और जब शौक मन में रहता है ना, प्रसन्न चित रहता है, तो हम घर भी बहुत अच्छे से रखते हैं, खुद को भी खूब अच्छे से सुंदर बनाते हैं। और एक प्रसन्न वातावरण जो घर का रहता है, वो हमेशा सकारात्मक सोच के तरफ आगे बढ़ता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है अनीता जी। आज बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे सुनना है पर्दे के पीछे, ये फिल्म का नाम है, गाना बहुत ही अच्छा है, तेरे बिन जिया ना लगे, आ जा रे
0: बिल्कुल, चलिए तो शायद वो आ ही जाएंगे जिसके बिना आपका जिया नहीं लग रहा है। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। ये कौन सी सहेली है, क्या नाम है आपका, अपने बारे में बताइए।
1: मेरा नाम है शांति वारी। मैं उदयपुर वारियों की घाटी से बोल रही हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका शांति जी।
1: धन्यवाद।
0: जी अपने बारे में बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: जी तो घर के काम काज में दिन भर सारा समय निकल जाता होगा, है ना।
1: हाँ, निकल जाता है ना दिन भर। ज्वाइंट फैमिली है, तीन फैमिली एक साथ रहती है, रसोई एक ही है।
0: ये तो आज के जमाने में उदाहरण है आपका परिवार की, तीन परिवार एक साथ रहता है और आपने कहा रसोई भी एक ही है।
1: हाँ, एक ही है।
0: जी बहुत ही सुंदर बात है। तो जब इतना बड़ा परिवार है शांति जी, ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं होता कि स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना या कसरत करना या वर्जिश करना कहीं छूट जाता होगा।
1: नहीं, मतलब हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार है। तीनों भाई एक साथ रहते हैं, काम भी एक ही है, खाना भी मिलजुल के बांट लेते हैं। सुबह बड़े वाले, बीच वाले 11 बजे बीच वाले बनाते हैं, सुबह 5 बजे का बड़े वाले बनाते हैं, शाम को मैं बनाती हूँ।
0: अच्छा, तो मिल बांट के आपने इस तरह से काम का बंटवारा कर लिया है। और अपने बारे में बताइए, और कैसे क्या सब चलता है दिन भर घर पर। परिवार इतना बड़ा है तो बच्चे भी सब होंगे,
1: है ना, बच्चे भी, मेरे 2 बच्चे, बड़े वाले के 2 बच्चे।
0: तो ये तो ऐसा
1: हाँ,
0: खिलखिलाता सा परिवार है ना जी।
1: और साथ में ननद भी रहती है। 27 साल हो गए ननद के साथ रहते रहते। हाँ,
0: अच्छा, आपकी एक ननंद भी साथ में रहती हैं।
1: फिल्म
0: शांति जी बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: है करण अर्जुन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये गाना।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर गीत है और आपका परिवार तो इस गीत पर पूरे तरह से उतर रहा है, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद, और वे सखियां जिन्हें अभी और इंतजार करना है हेलो सहेली से जुड़ने के लिए, वे निराश ना हो, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहला कॉल आप ही का लग जाए। और जिन सखियों से आज हमने बात की है उनसे ये अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। तो सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सुनने वाले सभी को बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 400-24662, 400-24662। एक और नंबर है 2867-0288-2867-0288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नायक, संपादन में सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए अपनी सहेली दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दूसरे राज्यों में जन्मे मतदाता भी अपने गृह राज्य से जारी मान्य दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इसके लिए दस्तावेज का झारखंड से ही निर्गत होना जरूरी नहीं है। वंशावली, खतियान और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे ECI द्वारा मान्य दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। देवघर जिले में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि देवघर में एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी, 2 TA बटालियन और एक सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए कुल 263 एकड़ भूमि की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा गया है। राजधानी रांची में करमटोली, अरगोड़ा और हरमू फ्लाईओवर के टेंडर फाइनल हो गए हैं। स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड की ओर से अक्टूबर में दुर्गा पूजा के बाद इनका निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ भाजपा के 4 दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन का आज आखिरी दिन है। आज गोड्डा, खूंटी सहित 6 जिलों में DC SP कार्यालयों का घेराव किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने दिवंगत नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार की पत्नी श्वेता शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान DGP ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सुदिव्य कुमार का निधन राज्य के लिए बड़ी क्षति है। रांची रेल मंडल के कोच कुलदीप शर्मा को भारतीय रेलवे की सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। वे दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल से इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी हैं। कुलदीप शर्मा 15 सितंबर से 11 अक्टूबर 2026 तक खुर्दा रोड में आयोजित होने वाले कोचिंग कैंप में टीम का मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: नहीं, थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी चलती रहती है रिश्तों में। अब जिद छोड़ो, मुंह ना मोड़ो, खत लिख छोड़ो, ऐसी क्या रुसवाई है, चिट्ठी आई है।
1: एक

डॉक्टर माया की असिस्टेंट ने उसे आवाज दी तो उसकी तंद्रा टूटी। उसे याद आया कि वो क्लिनिक में है, वरना वो गाने के साथ किसी और ही दुनिया में विचरण कर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की जगह एक मीठी मुस्कान खिल गई। वो बोली, हाँ भेज दो। पेशेंट को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, वरना इतनी देर प्रतीक्षा करना मुश्किल हो जाता। खैर, माया ने उसकी नाड़ी देखी, पूछा, क्या प्रॉब्लम है? पेशेंट ने कहा, सिर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती। माया ने मन ही मन कहा, नींद तो उसे भी नहीं आती है, पर वो किससे कहे। जिस दिन आरजे समीर का प्रोग्राम सुनती है, वही ख्वाबों ख्यालों में रहता है। उसकी आवाज, उसका अंदाज, उसके गानों की पसंद, सब कुछ कमाल है। समझ में नहीं आता कि उसके लिए दीवानगी सुकून है या दर्द। पेशेंट से बोली, आप नींद ठीक से लिया करें, नींद न लेने से एसिडिटी रहती है और इसी कारण सिर में दर्द रहता है, और कोई खास बात नहीं है। लेकिन लंबे समय तक अगर एसिडिटी रही तो दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। खाने में छाछ यानी कि मट्ठा का अधिक इस्तेमाल करें, सलाद में ककड़ी जरूर खाएं, रात में देर तक बिल्कुल मत जागिए, समझ रहे हैं आप, और आप ठीक हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। पेशेंट ने जी और धन्यवाद के साथ विदा ली। माया ने रेडियो की आवाज फिर तेज कर दी। FM के दीवानों, मैं आपका दीवाना समीर आपकी नजर करता हूं, ये गीत।

ऐसे गाने सुनकर हमेशा उसे लगता कि वो गाने उसी के लिए बजाए जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत से चित्र होते हैं जिनको देखने से लगता है कि वो आपको ही निहार रहे हैं। उसी प्रकार माया को भी लगता कि समीर भी कहीं ना कहीं उससे प्रेम करता है, क्योंकि वो उसके हर प्रोग्राम को सुनती और खत लिखती, खत में बहुत कुछ जाहिर करती। वो पत्र केवल गीतों व कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहते, वो उसमें अपने दिल की दास्तान भी बयान करती। वो जैसा सोचती कहीं न कहीं वही भावनाएं उसे गानों के द्वारा सुनाई पड़ती। वो जो सोचती सच्ची तो है। इस प्रकार धीरे धीरे माया को समीर की आवाज का एडिक्शन हो चला था, यानी कि नशा हो चला था। समीर हमेशा तो रेडियो पर रहता नहीं था, उसने इसके लिए तरकीब निकाली। वो उसके कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करके रख लेती और उसे बार बार सुनती, लेकिन संडे के कार्यक्रम को वो बिल्कुल मिस नहीं करती। उसमें श्रोताओं के पत्र पढ़े जाते, जिसमें श्रोता अक्सर उसकी आवाज की तारीफ करते, कुछ गानों का जिक्र होता। यह सुनकर माया को भी अच्छा लगता।

जब वो किसी और महिला का पत्र हंस हंस कर पढ़ता और उसकी लिखावट की तारीफ करता, उसको शुक्रिया कहता, कहता कि आपको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मतलब आप अच्छे हैं, अच्छी चीजें देखने वाले की नजर अच्छी होती है, उसके पत्र भी पढ़े जाते। परंतु कई बार ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर माया ने अपने खत के इंतजार में पूरा कार्यक्रम सुना परंतु उसका पत्र नहीं पढ़ा गया। समीर के मुंह से अपना नाम सुनने की प्रतीक्षा में उसने न जाने कितने लोगों की तारीफों के दर्द को झेला। मन तो किया कि रेडियो को उठाकर पटक दे परंतु वो ऐसा नहीं कर सकी। उसे रियलाइज हुआ कि वो डॉक्टर है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। कई बार हमारी बनाई हुई सीमाएं ही हमें बोझ लगने लगती हैं, पर वही हमें बचाती भी हैं। इस बीच कार्यक्रम समाप्त होने का वक्त आ गया। समीर ने शेर पढ़ा। एफएम के दीवानों में आपका दीवाना समीर। चलते चलते कुछ शेर आपकी नजर करता हूं। कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ अमृत है और कुछ मधुमय गरल है जिंदगी। नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, और फिर ये जुल्म ताशों का महल है जिंदगी। और एक गाने के साथ आपको छोड़ जाता हूं, तो खुश रहिए और अपने दिल का ख्याल रखिए। इस शेर ने माया को खुद में झांकने को विवश किया।

0: कभी तो हंसाए।
1: इन्हीं सवालों को खोजती खोजती माया घर पहुंच गई। कोई हल नहीं था। कई बार सवाल का हल खोजते खोजते हम और उलझ जाते हैं। ऐसे में हमें सोचने की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, यानी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। माया खाना खाकर सीधे बिस्तर पर आई। हमेशा वो खाने के बाद थोड़ा वॉक करती थी, परंतु आज मन अनमना था तो सीधे सोने के कमरे में आ गई। किसी से ज्यादा बात नहीं की, वो अपने में ही खोई रही। वो क्यों खोई है, वो क्या खोज रही है, इसका कोई तर्क संगत जवाब उसके पास भी नहीं था। मां ने बेटी को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ, इतना खोई खोई सी क्यों है? तूने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है ना? मां सब कुछ समझती है, उसे झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन वो तुमसे सुनना चाहती है। मां जानना चाहती है कि उसकी बेटी की जिंदगी में कौन है। पर मां को वो क्या बताए कि उसने ख्वाबों की नींव पर प्रेम का महल बनाया है, उसी में रह रही है। वो जिससे प्रेम कर बैठी है, वो उसे जानती तक नहीं, उससे कभी मिली नहीं। उसकी आवाज की दीवानी है, उसके अंदाज की दीवानी है। उसी के साथ जीवन के सपने बुन लिए हैं, उसी के साथ शामें गुजारती है।

आज जब वो क्लिनिक के लिए निकली तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। हालांकि उसके घर से क्लिनिक बहुत दूर नहीं था, यही कोई 1.5-2 किलोमीटर की दूरी रही होगी, परंतु आज उस रास्ते से कोई रैली निकल रही थी इसलिए इतना ट्रैफिक था। उसे बहुत झुंझलाहट हुई, अपनी स्कूटी इधर उधर जैसे तैसे काट कर क्लिनिक पहुंची। स्कूटी साइड स्टैंड पर लगाई, सीट खोलकर हेलमेट रखा, तभी आसमान में पक्षियों की मंडली गीत गाते हुए उधर से गुजर गई। उसे बड़ा भला लगा, वो एक पल को ठहर गई। उसकी नजर डाल पर बैठे हुए नीलकंठ के जोड़े पर पड़ी। इन छोटे छोटे दृश्यों से वो लसित हो उठी। उस उल्लास को उस आवाज ने कई गुना बढ़ा दिया। डॉक्टर माया लिखती हैं कि आपके कार्यक्रम के इंतजार में हमारा हर पल गुजरता है। आपकी आवाज कानों में गूंजती रहती है और कुछ सुनाई नहीं देता। अरे डॉक्टर माया जी, ऐसा मत कीजिए, आपके ऊपर लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। अगर आप इस प्रकार बेखबर हो जाएंगी तो कैसे चलेगा? वैसे इंतजार तो मुझे भी रहता है आपके मीठे मीठे खातों का। यही तो मेरी लाइफ है। आपके शब्दों में जो प्रेम है वो अद्भुत है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आपकी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत होगी। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो आपको मुस्कुराते हुए देखते होंगे। और हाँ, मुझे तो लगता है कि आपके मरीज तो ठीक होना ही नहीं चाहते होंगे। और मेरी आवाज तो इसलिए आपको अच्छी लगती है क्योंकि आप दिल से सुनती हैं, लोग सुनते होंगे कानों से। अभी और खत, और भी बातें।

माया को यकीन हो चला था कि उसकी बात उस तक पहुंच गई। आज जोर से चिल्लाना चाहती थी, समीर आई लव यू। ये तब की बात है जब सोशल मीडिया जैसी चीज नहीं हुआ करती थी, मोबाइल भी इतना कॉमन नहीं हुआ था। माया से अब नहीं रहा जा रहा था कि कैसे भी करके वो समीर से मिलना चाहती थी। टेलीफोन डायरेक्टरी से उस रेडियो स्टेशन का नंबर निकाला, उसमें उसे 3 नंबर मिले। पहला ट्राई किया, आवाज आई, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। दूसरा ट्राई किया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। ये संदेश किसी महिला की आवाज में था। एक बारगी माया को लगा कि जोर से गाली दे, पर वो बोली, चुप कर, समीर को बुला। पर वो रिकॉर्डेड आवाज थी, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बड़ी कोशिशों के बाद तीसरा नंबर लग गया। उसका धैर्य काम आया। किसी ने फोन उठाया और बोला, कौन? माया, डॉक्टर माया, क्या समीर जी से बात हो सकती है? रूखी आवाज में उत्तर मिला, आप उनसे बात नहीं कर सकती। क्यों? क्यों? माया ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, क्योंकि वो नहीं है। नहीं है मतलब? अभी कुछ देर पहले तो थे। हाँ थे, पर अब नहीं है, वो चले गए, उनका शो खत्म हो गया। अब कब आएंगे? ये हम आपको नहीं बता सकते। क्यों? ऐसा रूल है, आपका मैसेज दे देंगे। अच्छा ठीक है। माया उदास हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें।

माया का क्लिनिक कुछ खास नहीं चल रहा था, वो उस तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। अधिकतर समय सपने बुनने में निकल जाता। उसकी शादी, बच्चे, न जाने क्या क्या सोच लिया करती थी। जब भी वो किचन में खाना बना रही होती, उसे लगता अभी अचानक समीर आएगा और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेगा। वो चौंक उठेगी, फिर खुद को ही समझाती, ये क्या पागलपन है, वो यहां कैसे आ सकता है, मुझसे तो वो कभी मिला भी नहीं, मेरे घर का पता भी उसे पता नहीं है। फिर वो सोचने लगती कि ठीक है, वो मुझसे नहीं मिला, मैं उससे नहीं मिली, पर मेरे खत तो उसे मिले ही हैं, उसकी आवाज में मैंने उसको महसूस किया है।

ये बात माया अच्छी तरह जानती थी कि वह अपने साथ छल कर रही है। जिन ख्यालों के सहारे वो जिंदगी जीने के सपने देख रही है वो संभव नहीं है। भोजन की खुशबू से पेट नहीं भर सकता, बल्कि वो भूख को और बढ़ा देती है। मोहब्बत के एहसासों से जिंदगी नहीं चलती, हकीकत की जमीन पर उतरना ही पड़ेगा। डॉक्टर माया ने सोच लिया अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाना ही है, कुछ भी हो जाए। वो समीर से बात करके रहेगी। एक बार फिर उसने ऑफिस में कॉल किया, फिर से वही आवाज, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। माया का धैर्य जवाब दे रहा था।

आज जब माया क्लिनिक जाने को तैयार हो रही थी तो माँ ने कहा, बेटा जल्दी घर आ जाना, कुछ लोग आने वाले हैं। पहले तो माया को लगा कि कह दे आप भी ना किस किस को बुला लेती हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप मिल लेना। परंतु माया ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ठहर कर माँ को बड़े इत्मीनान से देखा, मुस्कुराई और कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगी, कुछ लाना है तो बता देना। माँ ने कहा, अरे तू आ जाना, बाकी सब मैं देख लूंगी।

अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी कहानी आवाज ही पहचान है, उन्हीं के स्वर में। संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।

0: के रवि कुमार ने कहा है कि झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दूसरे राज्यों में जन्मे मतदाता भी अपने गृह राज्य से जारी मान्य दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इसके लिए दस्तावेज का झारखंड से ही निर्गत होना जरूरी नहीं है। वंशावली, खतियान और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे ECI द्वारा मान्य दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। देवघर जिले में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। गुड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि देवघर में एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी, 2 TA बटालियन और 1 सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए कुल 263 एकड़ भूमि की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा गया है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जामताड़ा समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री रविंद्र राय के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में उन्होंने राज्य सरकार पर भर्ती घोटाले में शामिल लोगों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने पूरे मामले की अविलंब CBI जांच कराने की मांग की। मेदिनीनगर में जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला एवं सत्र अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में राहुल प्रसाद को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 307 और 326 के तहत दोषी पाते हुए 25,000 रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध अफीम की खरीद बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सबानो केंदू रोड स्थित रानी भोकर के पास से गुलचंद साव को पकड़ा। उसकी निशानदेही पर 975 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई। इस मामले में सिमरिया थाना में NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: उठे हुए हैं दिल में वो तूफान तेरे बगैर।

रंग भरा ये प्यार का तोहफा, खुशबू फैली हो जैसे रात की तन्हाई में। कितने मौसम बीत गए, ये रंगत तब जाके नजर आई है। जो अब आए हो तो कुछ देर बैठो, चमन की बेबसी का राज कलियों से पूछो।

ये आंखों की हया दिल मेरा चुरा लेती है, एक दिल एक निगाह कहाँ कहाँ छुपाऊं तुम्हें, सांसों की धड़कनों में कहाँ कहाँ बसाऊं तुम्हें। जिस तरह चांद सितारों में एक है, चांदनी फूल शरारों में एक है, रात खामोशी के तरानों में एक है, तू महजबी हजारों में एक है।

छाया गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे पेश करेंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

शंकर भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। ये उल्फत आपकी है, मेहरबानी आपकी, वो दिल का नशेमन जब ठिठक गई थी घटाएं, भीगी भीगी थी बादलों की चुनर, बरस रही थी फजाएं, हया का पर्दा उठा दिल ही दिल में रही, लब तक आई न बात।

एक उतरात ठहरती नहीं, जुबान से तो कुछ ना कहा, हुई नजरों से नजरों की बात। अजब अपना हाल होता जो विसाल यार होता, कभी जान सदके होती कभी दिल निसार होता।

चांद की खुली पलकों पर सितारों ने ख्वाब सजाए हैं। जरा सी देर हो जाए तो क्या होगा, दिल से दिल की बात कुछ और होने दो, शम्माए मोहब्बत कुछ और देर जलने दो, जुल्म ढाने का वरना दर होगा, ये इल्जाम भी हमारे सर होगा।

छाया गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, तराने नए पुराने। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर।

प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर में यानी शाम 5:35 से आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। शाम 6:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 6:02 पर ग्रामीणों एवं कृषकों को संबोधित कार्यक्रम होगा खेती बाड़ी। चर्चा होगी समन्वित मछली पालन पर, साथ ही चर्चा में सुनिएगा गेहूं की खेती की तैयारी। भेंटवार्ता आप सुनेंगे एक महिला किसान से मोटे अनाजों की खेती पर। भेंटवार्ताकार हैं कलमेंसिया केरकेट्टा नावाडी रामगढ़ पलामू से। भेंट करता है संतोष कुमार। शाम 6:30 पर ग्रामीण सभा कार्यक्रम आप सुनेंगे। चर्चा होगी समसामयिक कृषि कार्य पर। आज का विचार में बतख पालन से फायदे। भेंटवार्ता एक सफल किसान से भेंट आप सुनेंगे। भेंटवार्ताकार हैं ओपोलिना ओयैया महुआ बता नावाडी रामगढ़ पलामू से। भेंट करता है संतोष कुमार। आज का मौसम और जानेंगे आज के बाजार का भाव इसी कार्यक्रम के अंतर्गत।

शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 7:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग का आनंद आप लेंगे। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के आंखों देखा हल का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू खबरें आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9:30 पर आप पुनः सुन सकेंगे वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के आंखों देखा हल का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 11:10 पर आप पुनः सुनेंगे वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के आंखों देखा हाल का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। इसके पश्चात हम अपने सभा का समापन करेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन।

0: घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को रागिनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही प्रतिमा वर्मा का भी नमस्कार।
0: स्वागत है बहनों आप सबों का कार्यक्रम घर आंगन में।
1: बहनों आज सबसे पहले बातें करते हैं इस कार्यक्रम में जो बहुत ही जरूरी है, महिलाओं के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्यों जरूरी है। सच है बहनों, घर हो या कार्यस्थल, छोटी मोटी दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। कट लगना, मामूली जलना, मोच आना, चोट लगना या अचानक किसी की तबीयत बिगड़ना, ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर अस्पताल तक पहुंचने से पहले दी गई सहायता बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। महिलाएं परिवार की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिक चिकित्सा की सामान्य जानकारी होना न केवल स्वयं के लिए बल्कि परिवार के बच्चों, बुजुर्गों

0: और अन्य सदस्यों के लिए भी उपयोगी है। तो ये प्राथमिक चिकित्सा जरूरी क्यों है? सबसे पहले आपात स्थिति में घबराहट कम करने और सही कदम उठाने में मदद करती है, यानी आप बिल्कुल ना घबराएं और ठंडे दिमाग से पहले सही कदम उठाएं। दूसरा, चोट या परेशानी को बढ़ने से रोकने में सहायता मिल सकती है। तीसरा, समय पर उचित सहायता मिलने से व्यक्ति को डॉक्टर तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद मिलती है।
1: और हर महिला को अपनी प्राथमिक चिकित्सा किट में आवश्यक सामान जैसे साफ पट्टियाँ, गौज, एंटीसेप्टिक सामग्री और दस्ताने आदि व्यवस्थित रूप से रखने चाहिए। साथ ही इन चीज़ों का सही उपयोग भी सीखना चाहिए। लेकिन बहनों, ध्यान रखें कि प्राथमिक चिकित्सा डॉक्टर के इलाज का विकल्प नहीं है। गंभीर चोट, अधिक रक्तस्राव, गहरी जलन, बेहोशी, सांस लेने में परेशानी या किसी अन्य गंभीर स्थिति में तुरंत चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए।

बहनों कल्पना कीजिए, रसोई में काम करते समय किसी को हल्की चोट लग जाए, बच्चा खेलते समय गिर जाए या परिवार के किसी सदस्य को अचानक चक्कर आ जाए। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय यदि हमें प्राथमिक चिकित्सा की सही जानकारी हो तो हम प्राथमिक शुरुआती स्तर पर उचित सहायता दे सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ प्राथमिक चिकित्सा का यही होता है कि समय पर सहायता अस्पताल या डॉक्टर तक पहुंचने में समय लग सकता है। उस दौरान सही और सुरक्षित प्राथमिक सहायता व्यक्ति को संभालने में मदद कर सकती है। महिलाओं को यह भी पता होना चाहिए कि कब घरेलू प्राथमिक चिकित्सा पर्याप्त नहीं है और कब तुरंत डॉक्टर या आपातकालीन चिकित्सा सेवा की आवश्यकता है। घर में एक फर्स्ट एड किट जरूर रखें और परिवार के सभी सदस्यों को उसके स्थान की जानकारी दें। साथ ही प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण किसी योग्य प्रशिक्षक या स्वास्थ्यकर्मी से लेना बेहतर होता है। एक महत्वपूर्ण बात बहनों, हर चोट या स्वास्थ्य समस्या का इलाज घर पर करना उचित नहीं होता। गंभीर चोट, बेहोशी, सांस लेने में कठिनाई या लगातार बिगड़ती स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता लें, क्योंकि जागरूकता और सही समय पर सहायता सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो बहनों स्वस्थ रहें, सजग रहें और सुरक्षित रहें। और आइए इसके बाद आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: इस गीत के बाद आइए आपको सुनवाते हैं वार्ता। विषय है बरसात में दूषित खान पान से बचे। वार्ताकार है रूबी कुमारी।
1: हमारे देश में मुख्य चार प्रकार का मौसम है। उन सब में मेरा पसंदीदा मौसम बारिश है। इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यह मौसम जून में शुरू होता है। जब बारिश आती है तब हर जगह मिट्टी की खुशबू आने लगती है। बारिश का यह मौसम किसानों के लिए भी बहुत लाभदायक है। किसान अपने खेतों में फसल उगाने के लिए बारिश का इंतजार करते हैं। उनकी खेती बारिश पर निर्भर करती है, इसलिए बारिश बहुत जरूरी है। यह पृथ्वी पर जीवन का संचार करता है। लेकिन बारिश का मौसम सुहावना होने के साथ साथ कई बीमारियां

और समस्याओं को भी लाता है। यह मौसम अपने साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी लेकर आता है। मौसमी फ्लू और बुखार के अलावा मानसून मौसमी के जल जनित बीमारियां आम हैं। इन दिनों में हमारे घरों के आसपास कीचड़, गंदगी और मच्छरों की भरमार हो जाती है, तो ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि घरों के चारों तरफ साफ़ सफाई रखें। बारिश के मौसम में हमें चारों तरफ पानी और नमी के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हम लोग को सावधानी बरतनी चाहिए। इस मौसम में कच्चे खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। खाद्य पदार्थ हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इसके अलावा इस मौसम में मेटाबॉलिज्म काफ़ी धीमी गति से काम करता है। बरसात के मौसम में हमेशा ताजे व स्वच्छ सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खाने से पहले फलों को साफ पानी से धो लें, खासकर हरी पत्तेदार सब्जियों को। बासी भोजन तथा पहले से कटा हुआ फल तथा दूषित भोजन न करें। हमेशा ताज़ा गर्म भोजन करना चाहिए। ज़्यादा ठंडा और खट्टा नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा नमक वाली चीज़ें जैसे चिप्स, कुरकुरे, पापड़ इत्यादि कम खाना चाहिए। बाहर के खाना खाने से बचना चाहिए। इसे खाने से जुकाम, उल्टी, टाइफाइड इत्यादि गंभीर रोग हो सकते हैं। इस मौसम में हमेशा उबाला हुआ पानी पीना चाहिए ताकि बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाए और इम्यूनिटी मजबूत रखना चाहिए। इस मौसम में हमें ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहे, जैसे हल्दी, गाजर, अदरक, लहसुन आदि को भोजन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें स्वस्थ बैक्टीरियल तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। बारिश में नहीं भींगना चाहिए। बारिश के मौसम में भींगना शरीर के लिए नुकसानदायक है। बारिश में भींगने के बाद कुछ देर ऐसे ही रहने पर ठंड लग सकती है, इसलिए कोशिश करें कि बारिश में न भींगे। मच्छरों से बचने के लिए सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। इस मौसम में ज़्यादातर बच्चे और बुजुर्ग बीमारियों से पीड़ित होते हैं, तो उनका खास ख्याल रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि बारिश से भींगे वस्त्र न पहनें।

बहनों, अब बात करते हैं संयुक्त परिवार का क्या महत्व है और खास तौर पर महिलाओं के लिए। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन आदि मिलजुल कर रहते हैं। इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है।

के काम और जिम्मेदारियां मिल बांट कर पूरी की जाती है। बच्चों को परिवार की परंपराओं और संस्कृति के बारे में सीखने का अवसर मिलता है। परिवार में एकता, सम्मान और सहनशीलता की भावना विकसित होती है। संयुक्त परिवार हमें मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की मदद करना और परिवार के बड़ों का सम्मान करना सिखाता है।

और परिवार में रहने से सामाजिक व्यवहार और मिलजुल कर रहने की कला सीखने को मिलती है। बुजुर्गों का सम्मान, अपनापन और साथ मिलता है। परिवार की एकता और परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं।

इसके कई महत्व भी हैं। हम जब जब बात कर रहे हैं तो कुछ और बातें कर लें। ऐसे हर सदस्य की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है संयुक्त परिवार में। बच्चों को बड़ों का सम्मान करना और छोटों का प्यार करना तो सीखने को मिलता ही है। एक दूसरे के अनुभवों से भी परिवार के सदस्य जब एक दूसरे के अनुभव बांटते हैं तो उससे भी हम कुछ सीखते हैं कि सदस्य के बीमार होने पर दूसरे सदस्य देखभाल और

0: नहीं कर सकती आप?
1: अरे काट नहीं खाऊंगी मैं तुम्हें, इतना डरते क्यों हो मुझसे?
0: डरते हैं? अरे डरेंगे क्यों, किराया पहले ही दे चुके तुम्हारे नाना जी को।
1: ओहो किराया थोड़े ही मांगने आई हूँ मैं, इतना पूछने आई हूँ कि
2: मंगता है ना कौन सा गाना
0: जिसे
1: बैठा लो अपनी रग रग।
0: बिल्कुल समझ गए,
1: मैं यहाँ बैठी हूँ

0: जानू आखो की ये बोली हो बोली हो बोली हो।
1: बहनों हमारा समय भी समाप्त चला है, तो इस गीत के साथ ही कार्यक्रम से विदा लेते हैं। आप दीजिए आज्ञा प्रतिमा वर्मा को
2: और साथ ही रागिनी कुमारी को। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की अवधि एक माह बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद जारी किए गए नोटिस की तुलना में अब तक हुई सुनवाई की संख्या काफी कम है। देवघर जिले में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि देवघर में एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी, दो टीए बटालियन और एक सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए कुल 263 एकड़ भूमि की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा गया है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जामताड़ा समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री रविंद्र राय के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में उन्होंने राज्य सरकार पर भर्ती घोटाले में शामिल लोगों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने पूरे मामले की अविलंब सीबीआई जांच कराने की मांग की। मेदिनीनगर में जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में राहुल प्रसाद को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 307 और 326 के तहत दोषी पाते हुए 25,000 रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। बुंडू के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश ने आज सभी थाना प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक में मासिक मामलों के निष्पादन और कार्रवाई की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसडीपीओ ने अपराध और तस्करी पर रोक के लिए गश्ती बढ़ाने, खुफिया तंत्र मजबूत करने और दिन रात एंटी क्राइम चेकिंग चलाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी।

0: अन्य संसाधनों का बेहतर उपयोग हो पाता है। मछली के साथ बत्तख, मुर्गी या पशुपालन जोड़ा जा सकता है। तालाब की जैविक सामग्री का उपयोग मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन के रूप में भी हो सकता है
1: और एक ही स्थान से अनेक प्रकार की आय भी प्राप्त हो सकती है। खेत और तालाब के बीच पोषक तत्वों को पुनः उपयोग भी किया जा सकता है। किसान को केवल एक फसल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, यह खेती को अधिक सतत और संसाधन कुशल बनाने में सहायक हो सकता है। समन्वित मछली पालन किसानों के लिए कम संसाधनों में बेहतर उत्पादन और अतिरिक्त आय का अच्छा माध्यम बन सकता है। इसमें तालाब, खेत और पशुपालन को आपस में जोड़कर संसाधनों का भी उपयोग किया जाता है। तालाब के किनारे सब्जियों की खेती भी की जा सकती है। खेत की कुछ जैविक सामग्री का उचित प्रबंधन करके तालाब की उत्पादकता में भी सहायता ली जा सकती है। मछली के साथ साथ बत्तख पालन करने पर दोनों गतिविधियों से भी आप आय प्राप्त हो सकता है। पशुपालन को जोड़ने पर उपलब्ध जैविक संसाधनों का पुनः उपयोग भी किया जा सकता है और इससे किसान को एक से अधिक स्रोतों से आमदनी का अवसर भी मिलता है। तालाब की नियमित सफाई, पानी की गुणवत्ता और मछलियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार मत्स्य विभाग या कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर प्रजाति और पालन पद्धति चुनना बेहतर होता है।
0: कृषक भाइयों, याद रखिए कि एक

के नए अवसरों बना पाते हैं। समृद्ध मछली पालन किसानों के लिए तालाब और खेत दोनों का सही उपयोग करने की एक खास पद्धति है। इस मछली पालन को खेती, बागवानी और उपयुक्त पशुपालन गतिविधियों के साथ भी आप जोड़ सकते हैं। तालाब पानी और जैविक संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। एक गतिविधि से निकलने वाले उपयोगी संसाधनों को दूसरी गतिविधि में लगाया जा सकता है। परिवार को मछली, सब्जी और अन्य कृषि उत्पाद एक साथ मिल जाते हैं। रोजगार के अवसर भी मिल जाते हैं, जैसे परिवार के सदस्य वर्ष भर अलग अलग कृषि

अगर आपके पास तालाब है तो उसके किनारे खेती कर लें। उचित जल निकासी और मिट्टी की स्थिति होने पर तालाब के आसपास सब्जियां या चारा उगा सकते हैं आप। तो किसानों के लिए कुछ जरूरी सावधानी भी हम आपको बता दें, जैसे समन्वित प्रणाली अपनाने के से पहले तालाब की गहराई, पानी की गुणवत्ता, स्थानीय जलवायु, बाजार और उपलब्ध संसाधनों का आकलन करें, मछलियों को संतुलित आहार दें और तालाब में किसी भी जैविक या रासायनिक सामग्री का उपयोग विशेषज्ञ की सलाह के बिना ना करें। तालाब को केवल पानी का स्रोत ना समझें किसान भाइयों, बल्कि आय और पोषण का आधार

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नीलम सहाय और प्रियंवदा सिंह के गाए लोकगीत। और अब आइए आपको सुनवाते हैं एक महिला किसान से भेंटवार्ता में। भेंटवार्ताकार हैं क्लेमेंसिया किरकिट्टा, जो नवाड़ी रामगढ़ पलामू की रहने वाली हैं, और बातचीत कर रही मोटे अनाजों की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।

0: कार्यक्रम किसान वाणी में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे मोटे अनाजों की खेती की, और मोटे अनाजों की खेती से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक सफल महिला किसान हमारे साथ हैं, जो पलामू जिला के रामगढ़ प्रखंड के नवाटी गांव की हैं। आप हैं क्लेमेंसिया करकट्टा, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार आपको।
0: अभी आप मोटे अनाजों में क्या लगाई हुई हैं करकट्टा जी?
1: मोटे अनाज में अभी लगाए हैं सावा, कोदो, मड़ुआ, मकई, बजरा, ज्वार बजरा।
0: तो यहाँ पर अभी मड़ुआ की क्या स्थिति है?
1: मड़ुआ का स्थिति तो अभी बारिश हो रही है, इसलिए अभी ठीक ही है, शीत पानी से भी तैयार हो जाती है।
0: कई बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है मड़ुआ में? लगभग
1: मड़ुआ में ऐसे तो सिंचाई की जरूरत है कि जो बारिश होती है थोड़ा बहुत, और उसमें शीत पानी से भी।

0: हो सकती है, इसमें दिक्कत नहीं है,
1: है ना। मड़ुआ में उतना समस्या नहीं है
0: जी।
1: और इसमें ज्वार में,
0: ज्वार में भी वही स्थिति है कि थोड़ा सा उसमें पानी की जरूरत होती है, लेकिन वो भी मतलब कि जैसा होना चाहिए उतना मतलब हो ही जाएगा।
1: मतलब कम पानी में भी हमारे किसान भाई लोग इसको उपजा सकते हैं, है ना
0: जी।
1: अच्छा, और बाजरा में?
0: बाजरा में भी वही स्थिति है, जैसा कि मड़ुआ का खेती लगा देते हैं वैसा ही मकाई, मकाई का बाजरा का भी वही है, उसमें भी कम पानी से भी तैयार हो सकता है।
1: अच्छा, कोई उतनी दिक्कत नहीं आती है?
0: दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ। रासायनिक खाद नहीं लगाते हैं।
1: अच्छा, जैसे आप रासायनिक खाद जब नहीं लगाती हैं तो जो प्राकृतिक खाद है उसमें क्या क्या उपयोग करती हैं, इसमें आप क्या क्या डालती हैं आप खेतों में?
0: इसमें हम लोग गोबर खाद लगाते हैं, गाय का भैंस का जो भी है गोबर खाद लगा करके उसी से उपज हो सकती है इसमें।
1: उसी का मतलब कि ज्यादा व्यवहार किया जाता है
0: जी।
1: अच्छा, कितने में लगाई है मड़ुआ?
0: अभी मड़ुआ लगाए हैं 2 kg, कम से कम 3-4 कट्ठा हो सकता है उसमें।
1: और ये ज्वार?
0: ज्वार भी 3-4 कट्ठा ही, 5 कट्ठा लगभग में
1: हो जाएगा। अच्छा, अब बाजरा
0: भी ज्यादा नहीं लगाए हैं, 2-2.5 kg लगाए हैं, उसमें भी 4-5 कट्ठा यही लगभग में ही हो सकती है।
1: देखिए, सावा कोदो की अगर हम आपसे बात करें तो सावा कोदो खासकर आपका झारखंड में बहुत प्रचलित है और यहाँ सावा कोदो हमारे पारंपरिक जो फसल हैं वो हैं और इसको आज भी बहुत से आप लोग ग्रामीण महिलाएं हैं जो गिने चुने ऐसे जगहों पर सावा कोदो की खेती की जा रही है। बहुत बड़ी बात है कि खेती कर रहे हैं आप सावा कोदो की खेती की हम बात करेंगे आपसे। अभी सावा कितना लगाई होंगी आप?
0: लगाए हैं, ज्यादा तो नहीं लगाए हैं, 3 kg लगाए हैं।
1: 3 kg सावा और कोदो?
0: कोदो 2-2.5 kg लगाए हैं।
1: अच्छा, इसकी खेती में क्या क्या सावधानी बरतती हैं आप लोग खेती करने समय में?
0: इसमें क्या सावधानी है कि लगा दीजिए, सबसे फर्स्ट में लगा दीजिए सावा, सबसे फर्स्ट में तैयार हो जाती है। पहले मतलब कि बूढ़ बुजुर्ग लोग थे उन लोग इसी को पहले लगाते थे और अपना जीविका चलाते थे। और थोड़ा सा बाजरा में लेट हो सकती है तैयार होने में।
1: अच्छा, बाजरा लेट हो सकता है, लेकिन जी इसमें सावा कोदो आपको पहले तैयार हो
0: जी पहले, उसके बाद मकई तैयार होती है, इसी पे सब लोग निर्भर रहते थे पहले।
1: मैं कितने दिनों में सावा कोदो को तैयार कर लेती है?
0: कम से कम लगेगा सावा तैयार करने में 2 महीने लग जाएगा।
1: 2 महीने में तैयार कर लेंगी
0: जी।
1: और इसमें क्या क्या रासायनिक खाद वगैरह डालती
0: है? इसमें रासायनिक खाद इसमें उतना नहीं लगती है, लेकिन जहाँ जहाँ मतलब थोड़ा सा जमीन में इधर उधर नहीं होने जैसा लगता है तो वही हम लोग गोबर खाद इसमें मतलब कि
1: इस्तेमाल
0: करते हैं।
1: मतलब कि प्राकृतिक खेती की ओर हमारे किसान भाइयों का ज्यादा रुझान है इस तरफ, ज्यादा हमारे किसान भाई लोग कंपोस्ट खाद वगैरह को ही अपनाते हैं।
0: जी जी जी, कंपोस्ट है।
1: और मक्का कितना लगाई?
0: मक्का लगाए हैं 3 kg।
1: वो भी 3 kg है
0: जी जी, खाने भर लगाए हैं।
1: अच्छा, मड़ुआ जैसे लगाई हैं आप, तो मड़ुआ में क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या जैसे रोग वगैरह कीट वगैरह क्या क्या लगते हैं, किस तरह के लक्षण होते हैं जिससे कि फसल बर्बाद हो जाती है?
0: मड़ुआ में ऐसे तो मतलब कि रासायनिक खाद नहीं बल्कि गोबर खाद ही मतलब उसी से तैयार करके जहाँ जहाँ मतलब अच्छी उपजाऊ जगह जमीन रहती है वहाँ लगाने से और अच्छा होती है। ऐसे तो मतलब कि मड़ुआ में नुक्स नहीं है।
1: अच्छा
0: जी, जहाँ भी लगाइए इसमें नुक्स नहीं है, लेकिन थोड़ा सा
1: कम कीड़े मकोड़े
0: इसमें लगते हैं और कम समय में ही तैयार होती है, इसीलिए इसमें कि ज़्यादा मतलब कि गांव में किसान भाई लोग लगाते आ रहे हैं, शुरू से ही अभी तक लगाते रहे हैं।
1: और ज्वार में?
0: ज्वार में भी पहले जो लगाते थे लेकिन इसमें भी गोबर खाद लगती है, लेकिन अभी भी मतलब गोबर खाद जितना मतलब कि डालिएगा उतना ही इसमें भी बाल ज्यादा बढ़ेगा।
1: अच्छा, तो इस प्रकार से खेती बाड़ी चल रही है ना?
0: जी, इस प्रकार से किसान भाई लोग अभी थोड़ा सा पानी है, पानी के वजह से थोड़ा सा अभी किसान भाई लोग थोड़ा सा।
1: अब बाजरा की बात अगर हम करें तो
0: बाजरा की बात भी वही है।
1: कोदो में क्या परेशानी आती?
0: कोदो में भी तो परेशानी उतना नहीं है जैसे कि सावा है वैसा ही उसमें भी है।
1: उसमें भी है
0: जी,
1: है ना?
0: जी।
1: तो धान फसल का ही तो ये है
0: जी जी।
1: हाँ
0: जी,
1: तो इसमें भी तो पानी की आवश्यकता पड़ती होगी?
0: जी जी पड़ती है, इसमें भी कम पानी से ही तैयार हो सकती है,
1: लेकिन कम पानी से तैयार कर लेते हैं
0: जी।
1: और इससे जो तैयार करती हैं आप जो भी फसल, जो सावा कोदो
0: जी,
1: ये जितने भी फसलें हैं वो आपका स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभप्रद फसल है ये, और इस पे सरकार द्वारा काफी बल भी दिया जा रहा है अभी मोटे अनाजों की खेती की। हमारे किसान भाइयों का रुझान इस तरफ जरूर होना चाहिए ताकि पूरे देश में पोषण क्षमता की दिशा में मजबूती लाई जा सके और हम अब आपसे बातें ये करेंगे कि यहाँ सिंचाई की क्या व्यवस्था आपके गांव में, कनाल वगैरह या फिर नहर वगैरह या तालाब वगैरह?
0: जी, सिंचाई की हम लोग के पास व्यवस्था ही नहीं है।
1: अच्छा
0: जी, तो तालाब है के लिए इसी के वजह से वहाँ का ढंग से खेती नहीं हो पाती है,
1: थोड़ा सा दिक्कतें आ जा रही हैं,
0: दिक्कत आ रही है
1: क्योंकि पानी ही सब कुछ है। और हम आपसे बात करेंगे अगर पशुपालन की, तो अभी कौन कौन से पशु पाले हुए हैं?
0: अभी तो पशु केवल गाय बकरी हैं।
1: कितनी बकरियाँ हैं आपके पास?
0: ऐसे तो बकरी ज़्यादा नहीं है, फिर भी 7-8 बकरी हैं।
1: अच्छा, अब बकरियाँ भी तो हम समझते हैं पाल रही हैं, तो उसे बेच के भी आमदनी प्राप्त होता होगा।
0: जी जी।
1: और सब्जी वगैरह की बात अगर हम करें तो?
0: जी, सिंचाई की उतना सुविधा नहीं है, लेकिन आजकल बरसात है, बारिश है, इसीलिए थोड़ा बहुत लगाए।
1: लत्तर वर्गीय सब्जियाँ जो होती होंगी, जैसे क्या?
0: जैसे हुआ भिंडी हुआ, करेली हुआ, उसके बाद डंग बोदी, कुंदरी, इतना मतलब घर ही हम लोग उपज करके खाते हैं।
1: अच्छा, तो फिर इसको बेचती भी हैं?
0: थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता तो बेच देते हैं, खाने से ज्यादा।
1: अच्छा, तो यहाँ बाजार व्यवस्था क्या है, कहाँ बेचने जाती हैं?
0: बाजार में तो नवाडी बाजार हम लोग का वहाँ नजदीक है,
1: तो वहाँ जाके बेचती हैं।
0: जी।
1: अच्छा, एक बात हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपका कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पे है, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है जो कृषकों के लिए है, और तो इससे आपका यहाँ तक आपकी पहुँच है?
0: जी हाँ, पहुँचे।
1: तो जैसे क्या करती हैं वहाँ से, क्या मतलब आपका वहाँ से प्रशिक्षण ली हैं, क्या की हैं?
0: वहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र से हम लोग को और गांव के महिलाओं को रहर मिली है।
1: अच्छा
0: जी,
1: बीज मतलब
0: बीज, रहर का बीज
1: लगाने के लिए, लगाने है ना, इसका मतलब दलहन फसल भी लगाई हुई
0: जी,
1: है।
0: जी, दलहन फसल भी हम लोग लगाए हैं।
1: अच्छा, कैसी संभावना है रहर की इस बार?
0: इस बार मतलब कि बाद में ही लगाए हैं पानी के वजह से, इसके बाद थोड़ा बहुत है लगाने के बावजूद भी कहाँ कहाँ का मतलब कि प्रजनन नहीं हुआ, कहाँ का हो गया है, बड़ा बड़ा हो गया है। और आज भी हम लोग वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र गए थे, वहाँ भी आज सरगुजा का बीज मिला है।
1: अच्छा, वो आज कृषि विज्ञान केंद्र में वहाँ सरगुजा का मतलब कि वितरण किया गया।
0: जी,
1: वहाँ पर आप लोग भी ली, तो इसका मतलब सरगुजा की खेती करने जा रही हैं आप लोग?
0: जी हाँ, खेती करने जा रहे हैं, महिलाओं को लेकर के आए थे, उसके बाद सब महिलाओं को मिला है।
1: तो यहाँ स्वयं सहायता समूह भी है यहाँ?
0: जी हाँ, स्वयं सहायता समूह भी है।
1: अच्छा, तो उसमें आप भाग लेती हैं?
0: जी हाँ, भाग लेते हैं,
1: मतलब जुड़ी हुई
0: जुड़ी है।
1: तो आज आपके गाँव से बहुत सारी महिलाएं मतलब कि आकर यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में ये बीज प्राप्त की, सोयाबीन की है ना, उसकी खेती के लिए।
0: जी,
1: हम समझते हैं कि इस नावाडी गांव में सोयाबीन की खेती हमारे बहुत से किसान भाई अब करेंगे, है ना?
0: जी
1: हाँ। जी, ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र से आप क्या क्या प्रशिक्षण लिए आप?
0: हाँ, बताए गए हैं कि कैसे लगाना है, किस तरीका से लगाना है कि उपज हो जाए, वही मतलब कि हम लोग ट्रेनिंग में लिए हैं। और जहाँ मतलब जितना उर्वरक खाद ये सब लगाने के लिए और जो भी लगाना है मतलब कि उसको बताया गया है।
1: आप थी पलामू जिला के रामगढ़ प्रखंड के नावाडी गांव की एक सफल महिला किसान, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र पलामू जिला के चियाकी जो स्थित है वहां से आप जुड़ी हुई हैं, और वहां से लाभ भी ले रही हैं, वहां से बीज वितरण कार्यक्रम में भी आप शामिल होती हैं, और आप प्राकृतिक रूप से जैविक खेती को अपनाते हुए कृषि कार्य कर रही हैं, और मोटे अनाजों की खेती विशेषकर आप कर रही हैं। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी क्लेमेंसिया करकट्टा जी, और अपनी खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारियां हमारे साथ साझा की, इसलिए आपको धन्यवाद, नमस्कार।
2: ग्रामीण भाइयों, अभी आप सुन रहे थे एक महिला किसान क्लेमेंसिया करकट्टा, जो नावाडी रामगढ़ पलामू की रहने वाली हैं। इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार, विषय था मोटे अनाजों की खेती। और अब बात करते हैं गेहूं की खेत की तैयारी हमारे किसान भाई कैसे करें। तो किसान भाइयों, गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए खेत की तैयारी सबसे पहले ज़रूरी है, और उसके बाद ज़रूरी है बुआई का सही तरीका। तो आपको बता दें कि मिट्टी पलटने वाली जुताई क्या कब करें, किसकी शुरुआत कब करें, और इससे फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत की बात करें तो खरीफ फसल जैसे धान या मक्का की कटाई के तुरंत बाद खेत की पहली जुताई आप कर लें मिट्टी पलटने वाले हल MB प्लाऊ से, और इससे पुरानी फसल के अवशेष जो होते हैं वो मिट्टी में दबकर सड़ जाते हैं और ज़मीन की गहरी परत खुलती है। रोटावेटर या कल्टीवेटर से भी आप जुताई कर सकते हैं, बारीक मिट्टी लें, इसके बाद 2-3 बार कल्टीवेटर या रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भूरा बना लें। समतलीकरण भी ज़रूरी है, जुताई के बाद खेत में पाटा जरूर चलाएँ ताकि वुडन प्लैंक ले लें ताकि नमी सुरक्षित रहे और खेत समतल हो जाए। समतल खेत में सिंचाई का पानी बराबर फैलता है। और बात करते हैं खाद और उर्वरक का प्रबंधन की।

0: गेहूँ की अच्छी फसल के लिए खेत की तैयारी का सही समय पर करना बहुत ही ज़रूरी है। बुआई के लिए मध्यम दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। बुआई और खेत की पहली गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और मिट्टी को भुरभुरा और समतल बनाएं ताकि नमी बनी रहे। एक गहरी जुताई और 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई करें। मिट्टी के ढेलों को तोड़कर खेत को पूरी तरह से समतल करें। जुताई के समय सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाएं और बुआई के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी का भी होना बहुत ही ज़रूरी है। सही समय पर बुआई यानी अक्टूबर के अंत से नवंबर के बीच करें और बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम बीज का उपयोग करें। बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक से उपचारित करें और बीजों को 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। यह आपका खेत किस प्रकार की मिट्टी वाला है, किस्म किस का आप बीज बोना चाहते हैं, तो आपको खाद और सिंचाई की सही मात्रा की जानकारी होना चाहिए।
1: किसान भाइयों, गेहूं की बुआई के समय आप प्रति एकड़ 50 किलोग्राम डीएपी या एनपीके 12:32:16 के अनुपात में डालें। 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी और 5 से 8 किलोग्राम बेंटनाइट सल्फर का उपयोग करें। खाद और उर्वरक को अगर डालते हैं तो बेसल डोज तैयार होता है। जैसे डीएपी अगर आप डालते हैं तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़, यह जड़ों के विकास और मजबूती के लिए ज़रूरी है। पोटाश 30 किलोग्राम प्रति एकड़ डालें, यह पौधे को मजबूती देता है और दाने को भरता है। सल्फर आप जब इस्तेमाल करते हैं तो 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ डालें, यह रोगों से लड़ने की शक्ति और चमक बढ़ाता है। यूरिया 20 किलोग्राम प्रति एकड़, यदि डीएपी की जगह एनपीके ना हो तो शुरुआती नाइट्रोजन के लिए डालें। बीज और बुआई की ज़रूरी बातें भी आपको बता दें। बीज की मात्रा 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़, बुआई की गहराई बीज को 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई बोएं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप 18 से 22 सेंटीमीटर रखें। बीज उपचार, बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक जैसे कार्बेंडाजिम से उपचारित ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि एक बीघा यानी एक 15 से एक खेत में सामान्यतः 15 से 20 किलोग्राम यानी एक क्षेत्र के बीघा के आकार के अनुसार लगभग 25 से 30 किलोग्राम गेहूं का बीज बोना चाहिए। भारत में एक एकड़ में 40 से 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीघा का अलग आकार अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में भिन्न हो सकता है। तो बुआई से अगर बात करते हैं, बुआई से जुड़ी कुछ बातें, तो बुआई का तरीका, यदि आप हाथ से छींटा मारकर बुआई कर रहे हैं तो बीज की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें क्योंकि कुछ दाने मिट्टी में ऊपर रह जाते हैं, इसमें बीज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगती है। और गहराई की बात करें तो गेहूं के बीजों को मिट्टी में 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर ही बोएं। अधिक गहरे बोने से अंकुरण में देरी होती है। पंक्ति की दूरी आप रखें, सीड ड्रिल मशीन से बुआई कर रहे हैं तो 2 पंक्तियों के बीच की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। सबसे अच्छा जो खाद होता है वो डीएपी खाद होता है इसके लिए और यूरिया, जिसके साथ सही समय पर पोटाश और जिंक का उपयोग करना ज़रूरी होता है।
0: पचास किलो प्रति एकड़ आप डीएपी डालें, यह जड़ों के विकास और तने को मजबूत करने में मदद करता है। और म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 से 30 किलो प्रति एकड़ डालें, यह पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। पहली सिंचाई के समय यानी 21 से 25 दिन पर आप यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। 35 से 45 किलो प्रति एकड़, यह कलों के फुटाव और पौधे की हरियाली के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली आधुनिक गेहूं की किस्मों में DVW 327 यानी करण नरेंद्र, DVW 187 करण वंदना और WH 1150 प्रमुख है।

0: और सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली जो है किस्में है वो है डी VW 327 यानी करण नरेंद्र। यह उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली उन्नत किस्मों में मानी जाती है और इसकी पैदावार क्षमता लगभग 85 से 92 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। और DVW यानी 187 करण वंदना यह एक बायो-45 पोषण से भरपूर किस्म है जो सिंचित क्षेत्रों के लिए अनुशंसित है और इसकी औसत पैदावार भी करीब 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तो ग्रामीण भाइयों, अभी हम बातें कर रहे थे गेहूं की खेती की तैयारी कैसे करें और इस चर्चा के बाद अब हमारा समय भी आपसे विदा लेने का हो चला है, इसलिए बातें बस यहीं तक। तो इसी के साथ कार्यक्रम खेतीबाड़ी से अब दीजिए रागनी कुमारी और
1: प्रतिमा वर्मा को
0: अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारे ग्रामीण और कृषक भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बारी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कृषि उत्पाद और ग्रामीण विकास पर आधारित कार्यक्रम ग्रामीण सभा।

0: ग्रामीण सभा सुनने वाले तमाम श्रोताओं को प्रतिमा वर्मा का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही रागनी कुमारी का भी नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम में आइए ग्रामीण भाइयों सुनते हैं समसामयिक कृषि कार्य। और सितंबर माह में सितंबर का महीना चल रहा है तो कुछ प्रमुख सामयिक कृषि कार्य हम आपको बता दें। जैसे धान की फसल अभी आप लगा सकते हैं, खरीफ की फसल है ये, तो जल प्रबंधन जरूर कर लें। भारतीय कृषि में हर महीने और हर मौसम में यानी खरीफ रबी जायद के हिसाब से फसलों की बुआई सिंचाई कटाई और कीट प्रबंधन के काम तय होते हैं। और अभी तो महीना चल रहा है सितंबर का, तो हम खरीफ फसल की बात करते हैं। तो सबसे पहले जल प्रबंधन धान की फसल में, धान के खेतों में पानी का स्तर 5 सेंटीमीटर बनाए रखें, कीट नियंत्रण जरूर रखें करें, तनाछेदक और भूरा पादप फुदका की निगरानी करें, आवश्यकतानुसार नाइट्रोजन यानी यूरिया की अंतिम खुराक दे दें।
1: और रबी फसलों की भी तैयारी आप करें तो खेत की जुताई अक्टूबर में बोई जाने वाली फसलों जैसे सरसों चना मटर के लिए आप खेत को तैयार करें। खेतों में पाटा चलाकर मिट्टी की नमी को सुरक्षित रखें और उन्नत किस्म के प्रमाणित बीजों और उर्वरकों का अग्रिम प्रबंध करें। और तिलहन और दलहन की बात करते हैं तो तोड़िया अगेती सरसों जो सितंबर के दूसरे पखवाड़े में इसकी बुआई शुरू कर दें। मूंग और उड़द जो है वो फलियों की तुड़ाई समय पर करें ताकि वे खेत में ना सड़े। सब्जियों की आप नर्सरी भी लगा सकते हैं, अगेती गोभी ब्रोकली टमाटर और मिर्च की भी पौध तैयार करें। और भारी बारिश से जल जमा होने पर खेतों से पानी निकालने का रास्ता बनाएं।

ग्रामीण भाइयों, सितंबर में मक्का ज्वार की भी कटाई की जाती है। धान के खेत में नमी होनी चाहिए, यदि नमी कम हो तो सिंचाई करते रहें। महीने के अंत में अलसी, सरसों और कुसुम की फसलें भी बोते हैं। रबी की फसलों के लिए खेत की तैयारी करते रहें। आलू जो जल्दी पकते हैं उसे बोया जाता है और आम के लगाए गए नए पौधों की सुरक्षा करते हैं। अमरूद के बगीचों की भी सिंचाई करते हैं। धनिया की भी बुआई कर सकते हैं। देशी मटर, प्याज, मूली, गाजर, चुकंदर, सेम, सौंफ, देर से आने वाली गोभी, पालक की बुआई आप कर सकते हैं। भिंडी और बरबरी आदि तैयार फसलों की भी आप तुड़ाई करते रहें।

0: इस लोकगीत के का आप ये लोकगीत आप सुन रहे थे नीलम सहाय और प्रियंवदा सिंह की आवाज़ में। और भेंटवार्ता आप अभी सुनाते हैं आपको, एक महिला किसान से ली गई भेंटवार्ता है ये, जो नवाडी रामगढ़ पलामू की रहने वाली है, ओपोलिना ओडिया। बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: तमाम किसान भाई बहन बालकों बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। किसान भाइयों, आज हमारे साथ एक सफल महिला किसान हैं जो रामगढ़ प्रखंड के महुआ बथान गांव की हैं, ये पलामू जिला की, और ये पारंपरिक रूप से खेतीबाड़ी करती हैं, ये जैविक रूप से खेतीबाड़ी करती हैं और इसके साथ मोटे अनाजों की खेती विशेष कर ये करती हैं, खासकर मड़ुआ ज्वार वगैरह की खेती करती हैं, सावा कोदो की खेती करती हैं ये, और ये वर्षों से ये करते आ रही हैं। यहाँ का हम अगर कहा जाए तो मुख्य फसल में सावा कोदो बाजरा मड़ुआ वगैरह हैं और हमारे किसान भाई लोग इसको उपजाते हैं। और आप हैं एक सफल महिला किसान ओपोलिना ओडिया, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: अभी आप खेतों में क्या लगाई हैं बताइए।
2: अभी हम खेतों में धान मकई मड़ुआ विशेषकर वही चीज लगाए हैं और दलहन में वही राहर है। अभी कुर्थी तो लगाने का टाइम अभी नहीं है लेकिन वो भी आ रहा है।
1: अच्छा।
2: और फिर उड़द भी, उड़द का भी मैंने लगाने का टाइम पार हो गया, उसको भी लगाए हैं।
1: अच्छा, उड़ीद भी लगा दिए है ना। और मोटे अनाज में खासकर मड़ुआ।
2: जी, मोटे अनाज में मड़ुआ मकाई।
1: अच्छा।
2: और वही
1: ज्वार वगैरह,
2: ज्वार बजरा
1: लगाई है।
2: जी हाँ।
1: कितना ज्वार लगाई है इस बार?
2: ज्वार वो तो मैंने कम बिहन में ही हो जाता है इसीलिए।
1: नहीं नहीं, लगाए कितना है आप?
2: 3-4 कट्ठा में लगाए हैं, ज्यादा नहीं लगा। जी, बजरा भी वही आसपास होगा, ज्यादा तो नहीं लगा।
1: मड़ुआ,
2: मड़ुआ वो अभी कितना बोलेंगे, वो भी 3-4 कट्ठा में होगा, ज्यादा नहीं लगाए हैं, केवल क्या बोलेंगे उसको, दवा के रूप में हम लोग लगाते हैं, खाते हैं।
1: अच्छा, उसको खाते हैं। यहाँ मड़ुआ ऐसे भी बहुत पोषण क्षमता को सुदृढ़ बनाए रखने में बहुत ही लाभदायक है मड़ुआ। हमारी जो सरकार है वो मोटे अनाजों की खेती पर काफी बल दे रही है। और सबसे बड़ी बात की हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर सिंचाई की क्या व्यवस्था है?
2: सिंचाई का व्यवस्था हम लोग का नहीं, जो भी पानी माने बरसता है उसी के आधार पर हम लोग लगाते हैं।
1: अच्छा।
2: ये सिंचाई का व्यवस्था हम लोग का नहीं है,
1: यहाँ पर सिंचाई की सुविधा
2: जी
1: नहीं,
2: नहीं है।
1: तो बस जो भी है बारिश पे टिके हुए हैं सब लोग।
2: जी, बारिश पर टिके हुए हैं। इन साल तो बारिश भी नहीं है, बहुत माने क्या बोलेंगे, बहुत पीछे पानी पड़ा था हम लोग के यहाँ, इसीलिए उतना हम लोग खेती नहीं कर पाए हैं। पहले जैसे जो भी हो रहा था, पहले साल जैसे हो रहा था उसी आधार पर हम लोग इन साल खेती नहीं कर पाए हैं।
1: और यहाँ पर अगर हम सावा कोदो की बात करें तो उसकी क्या स्थिति है, वो क्या की है?
2: सावा कोदो तो कम पानी में भी तैयार हो जाता है, इसी के वजह से अभी वो तो ठीके
1: है ना, लगाई है।
2: जी हाँ, और तैयार भी जल्दी तैयार हो जाते हैं।
1: कितना लगाई है सावा?
2: 1 kg लगभग, मैंने कितना बोलेंगे, 4-5 कट्ठा। वो भी
1: सावा भी 4-5 कट्ठा, कोदो भी 4-5 कट्ठा है ना। तो इसमें क्या क्या दिक्कतें आपको आती हैं?
2: दिक्कत सावा कोदो में नहीं आती।
1: अच्छा, तो फिर दिक्कत किस फसल में आती है आपको, जैसे ज्वार में, बाजरा में, मड़ुआ में, किस?
2: अधिकतर धान में मैंने दिक्कत होता है, मैंने अगर 15 अगस्त के बाद अगर लगाएंगे तो उसमें कीड़ा लग जाता है।
1: तो हम तो समझते हैं कि धान नहीं लगाई होंगी।
2: हाँ, मैंने जहाँ पानी का साधन है, पानी मैंने क्या,
1: मैंने जहाँ जम रहा है
2: जी,
1: पानी
2: उस जगह पे लगाए हैं, और जहाँ पानी नहीं है वहाँ तो ऐसे नहीं पड़ा है अभी,
1: नहीं लगा पाई।
2: और मकाई उसमें भी मैंने कीड़ा लग जाता है।
1: अच्छा।
2: उसमें भी उसका बाल खा लेता है कीड़ा, कीड़ा मकोड़ा। जी,
1: तो यहाँ पर तो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, तो ये सब जगहों से नहीं जुड़ी?
2: वहाँ से हम जुड़े हैं, अगर कीड़ा खाने लगेगा तो हम आके यहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र से हम संपर्क करके दवा ले लेते हैं।
1: अच्छा
2: जी,
1: तो उससे मतलब लाभ हो जाता
2: जी
1: है। और यहाँ पर आपका मड़ुआ की खेती में भी क्या संभावना लगता है, मड़ुआ खेती अच्छी हो जाएगी?
2: अभी कम पानी उसमें आवश्यकता होती है, इसीलिए अगर सप्ताह में भी एक बार अगर पानी पड़ जाए तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक ढंग से तैयार हो जाएगा उसका।
1: मतलब मड़ुआ में दिक्कत नहीं,
2: दिक्कत
1: है।
2: नहीं
1: मड़ुआ में, दिक्कत नहीं है सावा कोदो में, दिक्कत नहीं है
2: दिक्कत नहीं है
1: ज्वार बाजरा वगैरह,
2: ज्वार बाजरा में भी वो भी उसी प्रकार है, उसमें हाँ। भी दिक्कत नहीं है।
1: तो इसमें चारा वाली फसल भी उगाती है? चारा वाली फसल जो पशुओं को खाने के लिए चारा होता है,
2: धान से ही तो सर निकल जाता है,
3: निकल जाता है लोग,
2: सावा से भी निकल जाता है, सावा कोदो से भी चारा वाला निकल जाता है,
3: इधर बाजरा से भी तो निकल जाता
2: है, बाजरा से भी निकल जाता है,
3: वही तो इसका व्यवहार फिर चारा फसलों में भी कर देती है, है ना
2: जी। और पशुओं के लिए भी आहार हो जाता है और हम लोग के लिए भी हो जाता है,
3: पशु के लिए भी निकल गया और ऐसे भी हुआ तो इससे दोहरा लाभ हो जाता है। हमारे किसान भाइयों को ये बात को अवश्य समझना चाहिए कि पशु को भी उतना ही महत्व देना है जितना हम खुद को दे रहे हैं। और पशुपालन की अगर हम बात करें तो अभी कौन कौन से पशु हैं?
2: पशुपालन में अभी गाय बैल है, बकरी है, मुर्गी है।
3: अच्छा, कितने बकरियां हैं?
2: ज्यादा नहीं है, 10-15 को होगा।
3: अच्छा, तो बकरी पालन से तो काफी लाभ हो जाता होगा।
2: हाँ। खासी तैयार हो जाता तो बेच देते हैं।
3: इससे जुड़ना भी चाहिए हमारे किसान भाई को। और बकरी पालन में यहाँ क्या क्या दिक्कतें आती हैं, जैसे रोग वगैरह?
2: रोग आता है लेकिन हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हैं इसीलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है।
3: वहाँ से सब चीज मैंने गाय बेगा जो भी आवश्यकता आपको पड़ी किसी भी तरह की फसल से संबंधित तो आपको वहाँ से सब चीज बता दिया जाता है। और पशुपालन विभाग से नहीं जुड़ी है, जैसे बकरी पालन वगैरह से तो आपको पशुपालन से जुड़ना होगा।
2: जुड़े हैं,
3: हाँ, तो उन लोग भी बताते रहते हैं ना। और बड़े पशु जो हो गए गाय वगैरह भैंस वगैरह
2: वो सब भी मैंने अभी नहीं मिला है उधर से, वो तो मैंने देहाती गाय मैंने गाय बैल के वाला है।
3: आप जैविक खेती अपनाती है ना, मतलब कि कंपोस्ट वगैरह खेतों में उपयोग करती है ना
2: जी,
3: कि रासायनिक खाद के?
2: रासायनिक खाद हम लोग प्रयोग नहीं करते,
3: कोई भी
2: रासायनिक खाद हम लोग प्रयोग नहीं करते।
3: महुआ बथान में हम समझते हैं कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते होंगे, अधिकतर यहाँ प्राकृतिक खेती को ही अपनाया गया है और हमारे किसान भाई लोग उसी को करके बेहतर रूप से कृषि कर रहे हैं। यहाँ बाजार व्यवस्था क्या है?
2: बाजार व्यवस्था है निकटतम नवाडी बाजार, वहाँ बेड़मा, फिर उधर बैराखाड़ भी बोलते हैं, बस तीनों ठो मैंने हम लोग बाजार करते हैं, बेड़मा और फिर इधर बैराखाड़ फिर नवाडी, निकटतम वही है। सब्जी वगैरह अगर उपज हो जाती है चाहे कुछ भी हम लोग वहीं पे बेचने ले जाते हैं।
3: अच्छा, आप थी पलामू जिला के रामगढ़ प्रखंड के महुआ बथान गांव के गांव की एक सफल महिला अपोलिना ओड़िया। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारियां हमारे साथ साझा की, इसलिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
2: धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे एक महिला किसान ओपोलिना उड़ैया से भेंट वार्ता, जो नावाडी रामगढ़ पलामू महुआ बथान की थी, और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और कार्यक्रम में अब हम चर्चा करते हैं बत्तख पालन से फायदे की।

ग्रामीण भाइयों, बत्तख पालन एक लाभदायक पशुपालन व्यवसाय है जिसमें अंडे और मांस के लिए बत्तखों को पाला जाता है। कम लागत में शुरू होने के कारण यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और अतिरिक्त आय का अच्छा साधन बन सकता है। बत्तख पालन के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे अंडों का अच्छा उत्पादन। कई नस्लों की बत्तखें नियमित रूप से अंडे देती हैं और मुर्गियों की तुलना में बत्तखें कई परिस्थितियों में आसानी से पाली जा सकती है। तालाब या जलाशय होने पर प्राकृतिक भोजन भी मिल सकता है और बत्तख के मांस की भी बाजार में मांग रहती है। छोटे स्तर से शुरू करके इसे व्यवसाय के रूप में ही बढ़ाया जा सकता है ग्रामीण भाइयों। और बत्तखें खेतों में मिलने वाले कई कीड़े मकोड़े भी खा लेती है। और बत्तख पालन के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं, जैसे स्वस्थ और अच्छी नस्ल के चूजों का चुनाव करें, रहने के लिए साफ सूखा और हवादार स्थान रखें, स्वच्छ पानी पीने का हमेशा उपलब्ध कराएं, संतुलित दाना और आवश्यक पोषक तत्व दें, बीमार बत्तख को अलग रखें और समय पर पशु चिकित्सक की सलाह लें। बाजार की मांग को देखकर अंडे या मांस के उत्पादन पर भी आप ध्यान दें। इसकी उचित देखभाल, संतुलित आहार और अच्छे प्रबंधन से बत्तख पालन किसानों के लिए अच्छी आय और रोजगार का साधन बन सकता है।

ग्रामीण भाइयों, बत्तखें मुर्गियों की तुलना में पानी और ठंडे मौसम को अधिक आसानी से सहन कर सकती है। खुले तालाब या खेत के आसपास चराने से भोजन की लागत कुछ कम की जा सकती है। बत्तखें घोंघे, कीड़े और छोटे जलीय जीव खाकर प्राकृतिक रूप से भोजन प्राप्त करती है। इनके अंडे आकार में बड़े होते हैं और कई क्षेत्रों में इनकी मांग रहती है। खाकी, कैंपवेल जैसी नस्ल अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मस्कोवी बत्तख मांस उत्पादन के लिए उपयोगी मानी जाती है। बत्तखों के लिए पानी का स्रोत उपयोगी है, लेकिन तैरने के लिए बहुत बड़ा तालाब अनिवार्य नहीं है। साफ पीने का पानी सबसे जरूरी है। बत्तख पालन को मछली पालन के साथ मिलाकर भी किया जा सकता है, जिससे एक ही क्षेत्र से अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। इसके रहने का स्थान साफ रखना चाहिए, क्योंकि गंदगी से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ता है और ग्रामीण क्षेत्रों में बत्तख पालन कम जमीन में भी छोटे स्तर से शुरू किया जा सकता है। बत्तख पालन में सफलता के लिए अच्छी नस्ल, संतुलित आहार, स्वच्छ पानी, साफ आवास, रोग नियंत्रण और बाजार की सही जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण भाइयों, तो ये हुई बातें बत्तख पालन।

और अब आज का मौसम, आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब चलते चलते आज की नसीहत में बात करते हैं सितंबर माह के प्रमुख कृषि कार्य। सितंबर में वर्षा ऋतु समाप्त होने लगती है और खरीफ फसलों की देखभाल और रबी फसलों की तैयारी शुरू हो जाती है। धान, मक्का, अरहर, सोयाबीन आदि फसलों से खरपतवार निकालें, खेत में पानी की उचित व्यवस्था रखें और कीट और रोगों की निगरानी करें। फसलों में उर्वरक प्रबंधन, आवश्यकता के अनुसार फसल की अवस्था देखकर खाद और उर्वरक दें। तनाछेदक, पत्ती लपेटक आदि कीटों और फफूंद जनित रोगों की नियमित जांच करें। अधिक वर्षा होने पर खेत से अतिरिक्त पानी निकालें ताकि जड़ों को नुकसान न हो। रबी फसलों की तैयारी भी करें, गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि की बुआई के लिए खेत तैयार करना शुरू कर दें। अच्छी गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों की समय से व्यवस्था करें। रबी फसलों के लिए आवश्यकता अनुसार खेत की जुताई और मिट्टी की

तैयारी करें और खेत की मेड़ों और सिंचाई जल निकास की नालियों को ठीक करें और जल्दी पकने वाली खरीफ फसलों की कटाई के लिए मजदूर उपकरण और भंडारण की व्यवस्था करें। सितंबर में किसान को खरीफ फसल की सुरक्षा के साथ साथ रवि की सही समय पर बुआई के लिए बीज, खाद और खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ग्रामीण भाइयों, इसी नसीहत के साथ कार्यक्रम ग्रामीण सभा से अब दीजिए रागिनी कुमारी को अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण सभा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
2: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
4: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
3: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
4: बहन पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
3: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
5: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड जनहित में जारी।

0: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
1: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
2: कंडोम,
1: गर्भ निरोधक गोलियाँ,
3: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
4: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
7: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
6: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
8: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। रांची में ग्रामीण भारत महोत्सव का शुभारंभ, 28 राज्यों के हस्तशिल्पी ले रहे हिस्सा। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, महोत्सव कारीगरों के लिए बेहतर मंच होगा साबित। राज्य में कैंसर इलाज के लिए 6 जगहों पर रेडिएशन सेंटर विकसित करने की योजना। 5 मेडिकल कॉलेजों में डे केयर और रेडिएशन सेंटर शुरू करने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश भाजपा चलाएगी राज्यव्यापी सेवा अभियान। 17 सितंबर को जिला मुख्यालयों में लगेगा रक्तदान शिविर। 24 जिलों के भ्रमण के बाद रांची में भर्ती सुधार यात्रा का समापन। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार मांग की को लेकर युवाओं से सहयोग की अपील। और रांची में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार। वहीं जामताड़ा पुलिस ने 5 साइबर अभियुक्तों को 11 मोबाइल और 13 फर्जी सिम के साथ पकड़ा। और अब समाचार विस्तार से। रांची में नाबार्ड ग्रामीण भारत महोत्सव सह क्लासिक एक्सपो के 4th संस्करण का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया। 10 दिवसीय यह आयोजन 20 सितंबर तक रांची में आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि झारखंड में महोत्सव का आयोजन गर्व का विषय है और यह देश भर के कारीगरों को बेहतर मंच उपलब्ध कराएगा।
9: नाबार्ड लगातार ऐसे आयोजन स्टेट कैपिटल्स में करते रहे, रांची में भी यह 6ठा है और इसका काफी इंतजार करते हैं रांची के लोग, खास करके कि रेडिसन में होने वाले इस कार्यक्रम में वो आए, जहां उन्हें हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जिसकी आज बहुत वैल्यू है और यहां क्वालिटी भी इंश्योर हो जाता है क्योंकि मोस्टली जो यहां प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग राज्यों से आए लोग आर्टिजन, उनके पास GI टैग प्रोडक्ट्स हैं।
8: राज्य में कैंसर मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़े, इसके लिए 6 जगहों पर रेडिएशन सेंटर विकसित करने की योजना है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना की समीक्षा की गई। पहले चरण में जमशेदपुर, धनबाद और दुमका तथा दूसरे चरण में रांची, हजारीबाग और पलामू को शामिल करने का प्रस्ताव है। सभी 5 मेडिकल कॉलेजों में PPP मोड पर कैंसर डे केयर और रेडिएशन सेंटर शुरू करने की भी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राज्य भर में व्यापक सेवा अभियान चलाया जाएगा। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया कि 17 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में रक्तदान शिविर आयोजित होंगे। इसके बाद 21 और 29 सितंबर से आंगन मिलन सेवा, वाराणसी सेवा यात्रा और सेतु अभियान शुरू किए जाएंगे।
10: प्रधानमंत्री जब सत्ता के प्रधान सेवक के रूप में प्रधान कुर्सी को संभाला तो उन्होंने पहले दिन कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज सभी वर्ग को समर्पित सरकार रहेगी और उसके बाद अनेक प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार 12 वर्षों तक चल रहा है और आगे भी चलेगा।
8: जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो को 18वीं लोकसभा के बजट सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लगातार पांचवी बार संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। सांसद महतो ने सम्मान के लिए जमशेदपुर की जनता का आभार जताया और कहा कि इससे उन्हें जनहित के मुद्दों को और मजबूती से उठाने की प्रेरणा मिलेगी।
2: लोकसभा के एक एक जनता

0: के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की अवधि एक माह बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद जारी किए गए नोटिस की तुलना में अब तक हुई सुनवाई की संख्या काफी कम है। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में निकाली गई भर्ती सुधार यात्रा आज रांची पहुंची और समाप्त हो गई। करीब दो सप्ताह तक राज्य के 24 जिलों का भ्रमण करने के बाद मोरहाबादी मैदान से रैली निकाली गई, जो अल्बर्ट टिक्का चौक होते हुए भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पहुंची। देवेंद्रनाथ महतो ने युवाओं और छात्रों से भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के अभियान में सहयोग की अपील की। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची समेत देश भर में सरकारी और कुछ निजी बैंकों के कर्मचारी आज एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर यह हड़ताल की। हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुई, जबकि UPI, मोबाइल बैंकिंग और ATM सेवाएं जारी रही।
1: अभी फिलहाल दो है। पहला तो है कि बैंक का जो 5 डेज जो हमारे IBA के द्वारा समझौता हो चुकी है, अभी तक ले लागू नहीं किया गया। सरकार की यहाँ जाके फाइल अटकी हुई है। दूसरी मांग यह है PLI किस तरह से हम लोग के बैंक में लाए गए, जो एकदम मतलब बहुत उच्च नीच का भेदभाव है।
0: रांची में SSP राकेश रंजन के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत लोअर बाजार थाना पुलिस और टाइगर मोबाइल टीम ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की कई बाइक बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार ये बाइक सदर अस्पताल परिसर से चोरी की जा रही थी। साथ ही ब्राउन शुगर और गांजा तस्करों के खिलाफ भी अभियान तेज किया गया है। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नारायणपुर और कर्माटांड थाना क्षेत्र से 5 साइबर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभु कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्तों के पास से 11 मोबाइल और 13 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं।
2: छापेमारी की गई, वहां से 3 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसी क्रम में फिर जो कर्माटार में इसी टीम के द्वारा छापेमारी किया गया, जिसमें वहां से 2 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकार कुल 3 और 2 5 अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए। अभी अनुसंधान के क्रम में कई महत्वपूर्ण तथ्य आए हैं, इस पर और विशेष रूप से हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं।
0: बोकारो में तेलमच्चो ब्रिज से सेक्टर 6 तक 47 करोड़ की लागत से 4 लेन सड़क का शिलान्यास धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने किया। इस अवसर पर सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि 4 लेन सड़क के निर्माण से गोला, पेटरवार और रांची की ओर जाने वाले लोगों को करीब 15 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी।
3: दामोदर ब्रिज ये चौक से मिश्रा पंप से सीधे 4 लेन का आयोजन हम लोगों ने किया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और राज्य सरकार से भी सहयोग है और मिलकर हम लोग इसको काम को करेंगे। पर ये रोड बन जाने से लोगों का 10 से 15 किलोमीटर दूरी का कम तय करना होगा। यहाँ से रांची जाने के लिए, गोला जाने के लिए, पटवार जाने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि सारे लोगों का सहयोग से आज ये रोड बन रहा है।
0: रांची में यातायात व्यवस्था सुगम बनाए रखने को लेकर पुलिस अधीक्षक यातायात की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में आगामी गणेश पूजा, कर्मा, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ और अक्टूबर में क्रिकेट मैचों को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ब्लैक शीशे, फैंसी नंबर प्लेट, तेज हॉर्न, रैश ड्राइविंग, नशे में वाहन चलाने और क्षमता से अधिक यात्रियों के परिवहन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश जारी है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार कल राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना है। रांची में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में ग्रामीण भारत महोत्सव का शुभारंभ 28 राज्यों के हस्तशिल्पी ले रहे हिस्सा। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, महोत्सव कारीगरों के लिए बेहतर मंच होगा साबित। राज्य में कैंसर इलाज के लिए 6 जगहों पर रेडिएशन

0: सेंटर विकसित करने की योजना, पांचों मेडिकल कॉलेजों में डे केयर और रेडिएशन सेंटर शुरू करने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश भाजपा चलाएगी राज्यव्यापी सेवा अभियान। 17 सितंबर को जिला मुख्यालयों में लगेगा रक्तदान शिविर। 24 जिलों के भ्रमण के बाद रांची में भर्ती सुधार यात्रा का समापन। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की मांग को लेकर युवाओं से सहयोग की अपील। और रांची में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार। वहीं जामताड़ा पुलिस ने 5 साइबर अभियुक्तों को 11 मोबाइल और 13 फर्जी सिम के साथ पकड़ा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बहन, मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं?
2: अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
1: 104 नंबर, वो क्या है बहन?
2: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
3: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।
5: माँ, मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
6: नहीं, तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
7: अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं?
8: बढ़ती बच्ची, किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
7: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
8: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
7: माहवारी प्रारंभ होती है,
8: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
7: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
9: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता।
1: सितंबर महीने के शुरुआती दिनों में कोडरमा जिले के अलग अलग इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण तिलैया डैम और पंचखेरो जलाशय के अलावे जिले के तमाम नदी तालाबों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं बारिश के कारण चंदवारा प्रखंड के कई इलाकों में गौरी नदी का पानी घरों में घुस गया है। बारिश का पानी घरों में घुसने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल जमाव की समस्या झेल रहे लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।
2: तीन चार दिन से बारिश हो रहा है, जिसके कारण से घर में पूरा पानी हो गया है। हम लोग खाना पीना तीन चार दिन से नहीं खाए हैं। कच्चा चूल्हा है, गैस है, सब भींग गया है और हम लोग का जो भी आवास है वो थोड़ा कच्चा है। बारिश के कारण गीला बहुत ज़्यादा हो गया है। तिरपाल के सहारे हम लोग रह रहे हैं और अभी तक हमें कोई आवास वगैरह नहीं मिला है। अभी मिल जाता तो थोड़ा कुछ सहयोग हो जाता।
3: पानी भर गया मेरा घर में। बच्चा सब खाना नहीं दे रहे हैं, बना के स्कूल नहीं को जा रहा है। बच्चा लोग ढेर हम लोग तकलीफ में, हम लोग को कच्चा घर है, कुछ हमको दला दीजिए।
1: जेपीएससी और बीएसएससीएल परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के बाद उन पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। इस क्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब दिल्ली में आंदोलन हुआ था तो राहुल गांधी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री के आवास के सामने धरने पर बैठ गए थे, लेकिन झारखंड में आंदोलनरत छात्रों को देखने तक नहीं पहुँचे। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरा चरित्र का भी आरोप लगाया।
4: हम सब देखे, जब दिल्ली का था तो दिल्ली में प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए नेता प्रतिपक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने वो आ गए, धरना पे वो बैठ गए। लेकिन वही जब झारखंड में बच्चे अनशन पर थे, जब प्रदर्शन झारखंड के बच्चे कर रहे थे और छात्र बहुत शालीनता पूर्वक कर रहे थे, वहां किसी ने झांका नहीं। ना कांग्रेस के नेता एक दिन वो वहां पे पहुंचे, वहां राहुल गांधी जी को नहीं दिखाई दिया कि झारखंड भारत देश का ही एक अभिन्न अंग है। तो चूंकि वो इसलिए नहीं आए कि यहां उनकी सरकार यहां समर्थन दी हुई है, तो जब समर्थन जहां उनकी सरकार रही है वहां कुछ भी हो वो सही है, जहां सरकार नहीं है वहां गलत है। तो ये दोहरी नीति देश की जनता जानती है। देश का जो केस हुआ है छात्र पर इस आंदोलन में, निश्चित रूप से ये केस हटना चाहिए और वो बहुत शालीनता पूर्वक अपनी बात को रख रहे थे।
1: अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिसिंग को लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से कोडरमा पुलिस को 14 चरपहिया वाहन दिए गए हैं। इन सभी वाहनों को कोडरमा जिले के विभिन्न थाना और ओपी के सुपुर्द कर दिया गया है। इस मौके पर कोडरमा एसपी कुमार शिवाशीष ने कहा कि इन वाहनों के जरिए पुलिस की गश्ती और बढ़ेगी, साथ ही किसी मामलों को लेकर कोडरमा पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम में भी कमी आएगी।
5: झारखंड सरकार के द्वारा हमें प्रथम चरण में 14 चार पहिया गाड़ी और 20 बाइक्स मिले थे और आज दूसरे चरण में हमें 14 अतिरिक्त बोलेरो मिले हैं। इसके लिए हम झारखंड सरकार के बहुत आभारी हैं, क्योंकि इसके कारण हमारा पेट्रोलिंग इम्प्रूव हो जाएगा। जो हमारा रिस्पांस टाइम है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का, जो ऑलरेडी स्टेट के टॉप 3 में रहता है 8 मिनट 46 सेकंड का, उसको हम लोग और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इससे हमारी गश्ती भी और प्रभावी होगी।
1: इससे पहले भी राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से दर्जनों चरपहिया वाहन और मोटरसाइकिल कोडरमा पुलिस को दिए गए थे। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
0: अभी आप सुन रहे थे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।
6: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा FM 102.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। पेशे खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। एक रंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

सच्चे का बोलबाला फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ किशोर कुमार की थी, गीत लिखा था अमित खन्ना ने और इसकी धुन बनाई थी बप्पी लहरी ने। अगला गीत आइए सुनते हैं ऊंचे लोग फिल्म से, आवाज़ किशोर कुमार की है, गीतकार हैं अनजान और संगीतकार आर डी वर्मन।

ऊंचे लोग फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ किशोर कुमार की थी, शब्द रचना अनजान की थी और तर्ज आर्री बरवन की थी। इसी नगमे के साथ ही अब आज का एक रंग कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के आंखों देखा हाल का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। ये स्वर है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के। फिल्म का नाम है अप्रैल फूल। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था ये गुलिस्ता हमारा। बोल आनंद बख्शी के थे और धुन सचिन देव बर्मन की थी। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। ये है इस कार्यक्रम की आखिरी भेंट, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, फिल्म का नाम हिम्मत।

0: अनमोल यादें। अनमोल यादें। नमस्कार श्रोताओं, अनमोल यादें, अनमोल गीतों की यादों का ये जो कार्यक्रम है, ये जो श्रृंखला चल रही है, इसके 10वें एपिसोड में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर जी। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्ते जयंत जी।
0: तो राजीव जी, आज के एपिसोड में क्या लेकर के आए हैं आप?
1: देखिए, फिर से मैं ये बात दोहराऊंगा जो मैंने कुछ एपिसोड पहले बात कही थी
0: जी, जी।
1: कि नए फिल्मों के गाने जो है वो एक अलग ही दौर आ गया है, जिसमें प्रमोशंस नाम के वजह से म्यूजिक कंपनीज अपने आप चुनते थे कि किस गाने को प्रमोट करना है। मतलब उनके हिसाब से जो पॉपुलर हो सकते थे गाने, और
0: उन्हीं गीतों को लिया जाता था।
1: जी हाँ, उनसे जी। उनकी कमाई भी हो सकती थी क्वालिटी उनके जमाने में या सीडीज के जमाने
0: जी,
1: में
0: जी, जी।
1: लेकिन वैसे उसी कारण के वजह से कुछ अनमोल यादें हमने खो दी, अगर हमने उस वक्त याद नहीं रखी। तो मैंने ये दो गाने 2000 के बाद के आज के श्रृंखला में चुने हैं।
0: अच्छा,
1: लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस 80s के गाने से।
0: हाँ,
1: जिसके बाकी के गाने बहुत चले, जिस फिल्म के बाकी के गाने बहुत चले, फिल्म भी बहुत चली। राकेश रोशन की पहली प्रोडक्शन कामचोर।
0: कामचोर, हाँ,
1: और कामचोर में अगर आप देखेंगे तो पूरा हिट परेड था।
0: जी जी बिल्कुल।
1: उसमें एक गाना जो है वो थोड़ा बहुत कम चल गया, और बाकी उसमें से एक गाना था वो थोड़ा कम चला और बाद में दब भी गया। बहुत ही मीठा प्यारा गाना था, बहुत ही प्यारी मेलोडी थी, इंदिवर जी का लिखा हुआ ये गाना,
0: और राजेश
1: रोशन का म्यूजिक
0: जी जी,
1: किशोर और लता मंगेशकर की आवाज,
0: और गीत के बोल हैं तुम मेरे स्वामी
1: जी।
0: आइए सुनते।

0: कामचोर फिल्म का ऐसा गीत जो बहुत कम सुना जाता है और जिसका जिक्र भी नहीं होता, हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया। और अब 2000 के बाद की फिल्मों के दो गीत आप सुनवाने वाले हैं राजीव जी।
1: जी हाँ, आपने वो जो बहुत ही जबरदस्त मेलेडी सुनी आपने, हाँ, कामचोर फिल्म में,
0: जी जी,
1: उसी मेलेडी की तरफ मैं फिर से लेके जा रहा हूँ। उसी तरह की बड़ी ही जबरदस्त, बड़ी ही गहरी मेलेडी, और ये गाना अनु मलिक जी ने कंपोज किया है।
0: अच्छा,
1: ले चले डोलियों में तुम्हें, जिसे रूप कुमार राठौड़ और चित्रा जी ने गाया है फिल्म फिलहाल के लिए। फिलहाल का जो शीर्षक गीत था आशा जी ने गाया हुआ, वो बहुत चला। ये गीत फिर से मेरे रोंगटे खड़ा करता है।
0: आइए सुनते हैं।

0: फिलहाल फिल्म का वो गाना जो बहुत कम सुना गया हमने सुना। और राजीव जी, आज के एपिसोड का आखिरी गाना कौन सा होगा?
1: देखिए, ये सारे गाने अनकहे गाने भी बोल सकते हैं, और हाँ, मेरा अगला गाना अनकही फिल्म से है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: जो 2006 में आई
0: जी,
1: और उसमें ये बड़ा ही प्यारा गाना है। बहुत ही कम गाने लिखने वाले इसके लिरिसिस्ट थे, सुब्रत सिन्हा, लेकिन मार्केट लीडर, जो आज भी मार्केट लीडर है, प्रीतम साहब का कंपोज किया ये गाना, कुणाल गांजावाला ने गाया है। तुमसे यूं मिलेंगे हमने सोचा न था।
0: आइए सुनते हैं अनकही फिल्म का ये गाना।

0: क्या बात है, अनकही फिल्म का ये जो गीत हमने सुना, तुमसे यूं मिलेंगे हमने सोचा भी न था, और हमने भी नहीं सोचा था कि इस तरह के गीतों की यादों से हमारी मुलाकात होगी, और बहुत खूबसूरत ये सिलसिला अनमोल यादों का चल रहा है। अगले एपिसोड में अपने श्रोताओं से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए श्रोताओं, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अनमोल यादें,
3: रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
2: अनमोल यादें।

हवा महल में आज प्रस्तुत है श्री बी आर गुदगुदी की लिखी मूल कन्नड़ नाटिका का हिंदी रूपांतर शकुन का शीनू।

0: सरसू, सरसुती, ए सरसू, जरा जल्दी यहाँ आओ।
1: आती हूँ।
2: क्या है ये सुबह सुबह, क्या है, क्यों चिल्लाते हो? तुम तो ऐसा चिल्लाते हो जैसे कोई सर पर आसमान फट पड़ा हो। कहो क्या बात है?
0: ओहो, क्यों बिगड़ती हो सरसू? वो देखो उधर, उस खिड़की के उस पार, उस पेड़ पर।
2: पेड़ पर?
0: हाँ।
2: क्या है? अरे होगा कोई काला बंदर। क्यों जी, उसको दिखाने के लिए ये सब करना था तुम्हें?
0: ओहो,
2: उपा है तुम्हारा ये चिल्लाना सुनकर तुम्हारे सातों पुत्र पुत्रियां जागेंगे और घर में संगीत सभा रचाएंगे। मुझे क्या चैन से काम करने देना है या नहीं?
0: देखो सरसू, तुम यूं ही बिगड़ जाती हो। जो तुम्हें पेड़ पर दिखाना था वो काला बंदर नहीं, इसीलिए कहता हूँ कि तुम्हें अक्ल कम है। वो देखो आँख फड़फड़ाता हुआ बैठा है। उसी के बारे में कहना था मुझे। हाय राम, आज क्या अशुभ समाचार मिलेगा? मैं सोच रहा था कि सुबह सुबह सूर्य नारायण के दर्शन लेकर उनको नमस्कार करूं, मगर देख रहा हूँ इस अनिष्टकारी उल्लू को। मेरे नाना जी कहते थे कि उल्लू जैसा मनहूस अनिष्टकारी दूसरा कोई है ही नहीं। अगर सुबह सुबह कोई अनिष्टकारी उल्लू को देख ले तो समझ ले कि किसी बड़ी विपत्ति का उस दिन उसे सामना करना पड़ेगा। हाय राम, अब मैं क्या करूं, क्या करूं?
2: वाह भाई वाह, इस इलेक्ट्रॉनिक के इस युग में तुम तो जामवंत के युग की बात कर रहे हो। क्यों जी, आपको मालूम नहीं कि रोज हमारा नौकर सुबह उठकर पिछवाड़े में काम करते समय उस उल्लू को देखता ही रहता है, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ? अजी ये सब पागलपन छोड़िए ना।
0: नहीं जी, ये कैसे हो सकता है? पहले मैं इस मनहूस उल्लू को यहाँ से हमेशा के लिए भगा देने का प्रबंध करूंगा। उसको आज ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा, ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि फिर एक बार भी इधर झांकने का नाम नहीं लेगा।
2: हाय मेरे भाग्य। अरे अरे देखो जी, ये उस तरह मत जाना, पिछवाड़े में बहुत कांके हैं। अरे उस उल्लू को उसके हाल पर छोड़ दो, व्यर्थ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे जी सुनो तो। ओफो, कुछ भी करो तुम तो मेरा कहना मानने वाले नहीं। तो भाई मुझे तो अंदर बहुत काम पड़ा, मैं जाती
0: हूँ। अरे सर पता जा रहा है, कोई है? सरसू, सरसू आओ जल्दी से, मैं मर जाऊंगा नहीं तो। एक लोटा पानी लेती आओ, पानी।
2: फिर हम ये क्या हो गया? बदन सब खून से भरा हुआ है। हम ये क्या कर रहे हो तुमने? ये मैं जो कह रही थी उसको तुमने नहीं सुना, और ये बुद्धूपन का काम किया तुमने। देखो जोर से घास को पकड़ लो, मैं अंदर जाकर अभी कपड़ा लाती हूँ। ठीक है। क्यों जी, तुमने

0: रही है।
1: ओफो, क्या हुआ है जी तुम्हें? तुम्हें क्यों घबराहट होने लगी? तुम्हारी इस तरह की घबराहट को मिटाने के लिए कोई दवा किसी कंपनी ने नहीं बनाई है। बस चलो, अब बहुत हो चुका।
0: सरू, तुम नहीं जानती मेरे मन में क्या हलचल मच रही है।
1: वो क्या है?
0: सरू, कल रात पड़ोस के घर का कुत्ता रोता था और उसमें वर्षा भी नहीं थी। उसी समय घर के छत पर बिल्ली भी रोती थी।
1: हाँ, और आज उस उल्लू के सुबह सुबह ही दर्शन करने पड़े।
0: हाँ।
1: इसीलिए हमारे नाना जी कहते थे कि ये सब अशुभ शकुन किसी अनिष्टकारी आपत्ति की सूचनाएं हैं। यही ना?
0: तुम तो मेरी सभी बातों को मजाक ही समझती हो। कल मैंने सपने में क्या देखा मालूम है? कल मैंने सपने में माँ को कुएं में गिरते देखा।
1: वाह वाह।
0: माँ कुएं से पानी उठा रही थी, यकायक रस्सी टूट गई। घड़ा कुएं में गिरते ही माँ भी उसके साथ ही कुएं में गिर गई। इसीलिए मैं डरता हूँ कहीं ये सब अशुभ शकुन माँ पर कुछ असर ना करें।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। तुम्हारे तर्क का भी जवाब नहीं। अजी, तुम्हारे घर में पानी लाने के लिए टूटी हुई रस्सी ही हमेशा इस्तेमाल होती है। हमेशा माँ यही कहती थी कि इस घर में नई रस्सी शायद तभी आएगी जब तक कि शायद कोई कुएं में गिर ना पड़े।
0: ओ, ओ, सर,
1: पर सुनो, उसी विचार को तुमने अपनी खोपड़ी में रख लिया है और सपने में उस आपत्ति का साक्षात्कार कर लिया। बस यही है आपके मन का भ्रम।
0: नहीं भाई, नहीं, तुम नहीं जानती। तुम्हें तो मालूम है कि माँ के बीमार होने का पत्र पिताजी से आया था और उसमें ये भी लिखा था कि बीमारी और बढ़ गई तो वो तार भी भेजेंगे।
1: इसीलिए साहब को घबराहट हो रही है।
2: माँ, माँ, माँ स्कूल जाने का समय हो रहा है, कुछ खाने को दो ना माँ।
0: सरू, अगर माँ को कुछ हो गया तो? धत, तेरी की छींक दिया। क्यों रे शैतान के बच्चे, तुझे एक ही बार छींकना था क्या? चल जल्दी एक बार और छींक, छींक, छींक, नालायक कहीं का।
2: कोशिश तो करता हूँ बापू छींकने की, लेकिन नहीं हो सकता।
0: नहीं हो सकता, निकम्मा कहीं का। मैं कहता हूँ निकल जा यहाँ से, निकल जा।
1: उस बेचारे पर क्यों बिगड़ते
0: हो? तू चुप रह, तुझे तो हमारे संप्रदाय सभ्यता सभी ढकों से डिग पड़ते हैं। हाय प्रभु, मेरी रक्षा तुम्हें करना प्रभु।
1: ठीक है महाशय, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे, पर अब क्या तुम तौलिया लेकर नहा कर मेरी रक्षा करोगे? सुनो, समय बीता जा रहा है।
0: ठीक है देवी जी, तुम्हारी तो माननी ही पड़ेगी। देखो सरू, एक कप स्ट्रॉन्ग कॉफी का तो बना दो, मेरा तो सर फटा जा रहा है। मैं यूं गया और नहाकर यूं आया।
3: हाय भगवान, मैं मर गया। जल्दी आओ सरू, मैं गिर गया। हाय, मेरा हाथ पांव टूट गया।
0: उजली छिपकली को वो मेरी बाई ओर गिरी और मैं उससे बचने के लिए थोड़ा इधर उधर हिलने लगा तो साबुन से पाँव फिसल कर गिर पड़ा। ओहो, मेरा वो पाँव ही टूट गया। हाय भगवान, हाय भगवान, मैं क्या करूं?
1: अक्ल का भी जवाब नहीं। छिपकली दाई ओर पड़े या बाई ओर, तुमने तो अक्लमंदी दिखाने जाकर पांव तोड़वा लिया। ये शकुन का भूत कहीं तुम्हें खा ही ना ले।
0: क्या कहती हो जी, तुम नहीं जानती कि छिपकली का शकुन बहुत भयंकर होता है। मेरे नाना जी कहते थे कि छिपकली का शकुन सूर्योदय सूर्यास्त जैसे सत्य होता है।
1: मैं कहती हूँ छोड़ो जी। क्यों जी, मैं पूछती हूँ कि क्या तुम्हारे नाना जी ने जीवन भर तुम्हें शकुन के बारे में ही पाठ पढ़ाया है क्या?
0: जाने दो सरू, अब इस छिपकली के स्पर्श के परिहार के लिए कुछ व्यवस्था करो। हाँ, मुझे याद आया, परसों में गाय का घी लाया था ना सरू, उसको डालकर एक दिया जलाओ और उस दिए को भगवान के सामने रखो। तुम नहीं जानती सरू, इससे पीड़ा का परिहार हो जाता है।
1: बड़े आए घी का दिया चलाने वाले, यहाँ तो बच्चों को तेल भी नसीब नहीं और ये चले हैं गाय के घी का दिया चलाने।
0: सरू,
1: वो क्या, भगवान एक ही दिया जलाने से संतुष्ट नहीं होते? बस बस बस, जल्दी स्नान समाप्त करो।
0: ठीक है बाबा, करता हूँ। जय गंगा, जय गंगा।
1: क्यों जी, स्नान कर लिया? ठीक, अब भगवान के सामने दिया जला हुआ रखा है, जाओ। हाँ, और कॉफी भी तैयार है।
0: सरू,
1: क्या है?
0: अमावस्या परसों ही होने वाली है ना?
1: हाँ, तो क्या हुआ?
0: वो इसलिए कहता हूँ, वो बस मनहूस कुत्ता रा...

0: रात भर रोता रहा। हाय भगवान, मेरी माँ की रक्षा करो।
1: मेरी समझ में नहीं आता कि कुत्ते के रोने का और माँ की तबीयत से क्या संबंध है।
0: ओ सरू,
1: मैं कहती हूँ छोड़ो जी, बेकार क्यों सोचते हो। कुछ नहीं होगा माँ को, अगर कुछ होगा भी तो अस्पताल ले जाएंगे, दवा दिलवाएंगे, उससे माँ ठीक हो जाएंगी। जल्दी जलपान कर लो और डाक खाने जाकर ट्रंक कॉल करो, माँ की तबीयत की पूछताछ करो और आते समय बाजार से सब्जी भी लेते आना।
0: अच्छा लाओ कॉफी, मैंने पूजा भी कर ही ली है। ये बिल्ली क्यों मेरे सामने से चली है? इसका हमारे घर का दूध ही मुंह लग गया है, मनहूस कहीं की।
2: पोस्टमैन, नमस्ते श्रीनिवास जी, आपके लिए तार है।
0: तार? हाथ पांव ठंडे पड़ गए। देखो भाई, ये तार मेरा ही है ना, और एक बार देखो तो सही।
2: मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, ये तार आपका ही है।
0: ये क्या ही सुबह सुबह मुसीबत। भाई मुझे जरा बता देना, ये तार कहाँ से आया है?
2: घटक प्रभा से आया है। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ, सलाम साहब।
0: हाय भगवान, ये डाकिया क्या लाया सुबह सुबह? माँ की हालत बिगड़ गई होगी, माँ को घटक प्रभा ले गए होंगे। हाय मेरी माँ, हाय मेरी माँ मर गई। सरू, ए सरू जल्दी आओ। हाय भगवान, ये क्या क्या तूने। सरू सरू आओ, मेरा सत्यानाश हो गया, मैं जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। हाय भगवान, मुझे अनाथ बना दिया, मुझे अनाथ बना दिया भगवान।
3: क्यों रो रहे हो?
0: आजा गोपी, आजा बेटे, तुम्हारी दादी चल बसी।
3: दादी चल बसी। बीपी दादी को तार आया है।
1: सच? हाय राम, क्यों जी, क्या ये खबर सच है? हाय राम, ये क्या हुआ? खैर जाने दीजिए ना, धीरज रखिए। देखिए माँ जी की भी तो उम्र काफी थी, भगवान की चाहत के सामने किसका बस चलता है। माँ जी तो बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत ही चाहती थी। क्यों जी, और क्या लिखे है जी तार में?
0: और क्या लिखना बाकी है, आखिर में वो अनिष्टकारी शकुन ने अपना प्रभाव दिखा ही दिया है।
1: वो देखो, आपके मित्र रामचंद्र जी आ गए।
0: कोई आया हो तो अब क्या होने वाला है, जो होना था वो तो हो चुका है।
4: क्या हुआ भाभी जी, शिनू को क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है?
1: भाई साहब, उनके घर से तार आया है, उसमें उनके माँ जी के गुजर जाने का समाचार लिखा हुआ है।
4: ये तो बहुत बुरा हुआ।
0: आ रामू, अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैंने माँ के अंतिम दर्शन तक नहीं किए। नहीं किया।
4: रो मत शिनू, रो मत, धीरज रख। लाओ ये टेलीग्राम मुझको दो। He has been promoted and transferred and all are well in. क्या भाभी जी, आप भी इस बुद्धू की बातों में आ गई।
1: क्यों?
4: इस तार में ये लिखा है कि तुम्हारे बेटे को इंजीनियर की पदोन्नति मिली है।
1: क्या?
4: हाँ, प्रमोशन।
0: प्रमोशन?
4: और घटक प्रभा को बदली हो गई है, यानी कि ट्रांसफर। तुम लोग तो बिना तार पढ़े ये सब हंगामा मचा रहे हो। गोकाक के सभी लोग सकुशल हैं, इस तार में ये भी लिखा हुआ है।
1: क्यों जी, बिना तार पढ़े ये सब गड़बड़ी पैदा की गई? मुझे क्या मालूम था रामचंद्र भैया, मैं समझी थी कि ये तार पढ़कर ही मुझे बता रही है।
0: हाँ रामू, सचमुच माँ को कुछ नहीं हुआ क्या?
4: ये क्या कर रहे हो शिनू, गंवार जैसी हरकतें। उठो, मुंह धोकर आओ पहले। मैं तुम्हें मानसिक रोग चिकित्सालय ले जाकर तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाऊं। तुम तो बहुत भारी शकुन के शीनू हो भाई।
0: रामू, ये शुभ समाचार इसलिए आया कि सुबह से मेरी दाई आंख फड़क रही थी।
1: अच्छा जी, तो तुम सदा अपनी ही हांकते रहोगे। आखिर भाई साहब ने ठीक ही कहा है, तुम ठहरे जो शकुन के शीनू।
5: शकुन का शीनू, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने ये नाटिका सुनी। मूल कन्नड़ लेखक बी आर गुडगुडी, हिंदी रूपांतरकार एस ए हुनगुंड, ध्वनि संयोजक मनोहर सावे, प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दार भेकर।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। ये है फिल्म धड़कन का दो गाना, स्वर उदित नारायण और अर्लका याग्निक के, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

ये स्वर थे अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों के। फिल्म का नाम था धड़कन। गीतकार थे समीर और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें अलका याग्निक और अभिजीत की, फिल्म का नाम जुदाई।

0: किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। युगल स्वर रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला के। गीत को समीर ने लिखा है और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: प्यार तो होना ही था, ये था फिल्म का नाम जिसका दो गाना अभी आप सुन रहे थे, रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला का गाया हुआ।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की

0: अकल भी, मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने। और मैं फिर शुरू हो गई उस दिन, क्या चमत्कार हो गया पता नहीं। बस वहां से, मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

और अब सुनिए जतिन ललित का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोसले और अभिजीत की आवाजें फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

चित्रलोक कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोंसले, आदित्य नारायण और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है रंगीला। इस गीत को महबूब ने लिखा और धुन बनाई ए आर रहमान ने।

इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
1: हम रोड, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो। और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेयरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियाँ, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। 2 दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
4: आज IMF ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। IMF ने भारत की इकोनॉमी के रिजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जो आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया, संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। चार चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलबरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर ये भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। HPV टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9।

भी भारत आज ग्रोथ और स्टेबिलिटी का भरोसा दे रहा है। हम रोड, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार

0: वाले प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश किया है। इस दौरान कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने अपने खिताब में कहा कि ब्रिक्स की भारतीय सदारत के तहत ये फोरम पूरे ब्लॉक के रुकन ममालिक के दरमियान मुतवाजन तिजारत और तिजारती इम्कानात की तलाश के हुसूल की खातिर वाजह मकसद से तहरीक पा रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल होने वाली 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मीटिंग के दौरान वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी आलमी रहनुमाओं बशमूल रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन, चीन के सदर शी जिनफिंग, जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी, इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के सदर मसूद पदिशकियान और अबू जहबी के वलीहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मेजबानी करेंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत 2026 का मौजू है मजबूत इख्तरा तआवुन और पायदार तरक्की का क्याम। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के लिए नई दिल्ली सभी की तवज्जो का मरकज है क्योंकि कौमी राजधानी आलमी रहनुमाओं की मेजबानी के लिए तैयार है। इस दौरान कल होने वाली सरबराह मीटिंग के दौरान ब्रिक्स रुकन ममालिक के रहनुमा शमूलियाती आलमी हुक्मरानी और कसीर जहती इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल करेंगे। ब्रिक्स रुकन ममालिक भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स नुमाइश का भी मुशाहिदा करेंगे। इस दौरान ब्रिक्स रुकन ममालिक के रहनुमा मुश्तरका तौर पर शजरकारी करेंगे जिसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनके इशाइये की मेजबानी करेंगे। इस दौरान वजीर आजम मोदी ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के तनाजुर में ब्रिक्स रहनुमाओं के साथ सिलसिलेवार दो तरफा मुलाकातें करेंगे। ब्रिक्स की भारतीय सदारत के तहत भारत मुख्तलिफ अराकीन के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेगा, साथ ही मौजूदा मैकेनिज्म की असर पजीरी को भी मुस्तहकम बनाने की कोशिश करेगा। वहीं भारत का मकसद ब्रिक्स को ज्यादा शमूलियाती आलमी ऑर्डर तरतीब देने में तामीरी कुव्वत बनाना भी है। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के पेश नजर कल कौमी राजधानी दिल्ली की अहम सड़कों पर ट्रैफिक की पाबंदियां, रास्तों की तब्दीली और आमदो रफ्त को मुनज्जम करने के इकदाम किए जाएंगे। ये पाबंदियां रात 8:15 बजे से 11 बजे तक बरकरार रहेंगी। इस दौरान इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, जनपथ, मंडी हाउस, तिलक मार्ग, भगवान दास रोड, मथुरा रोड और प्रगति मैदान समेत करीबी रास्तों पर ट्रैफिक के खसूसी जवाबित नाफिज होंगे। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि अपने सफर की पेशगी मनसूबाबंदी कर लें, जहां मुमकिन हो मेट्रो का इस्तेमाल करें और मुतल्लिका इलाकों से गुजरते या वहां जाते वक्त घर से इजाफी वक्त लेकर निकलें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम ने ब्रिक्स को आलमी इश्तराक और खित्ते जनूब की मजबूत आवाज के प्लेटफार्म के तौर पर तकवियत देने की खातिर ब्रिक्स को मजबूत करने के वजीरे आजम नरेंद्र मोदी के विजन की सताइश की है। एसोचैम के सदर निर्मल के मिंडा ने कहा कि ब्रिक्स इश्तराक को ठोस कारोबारी नतायज में तब्दील करने का वजीर आजम का विजन बेहद अहमियत का हामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्रिक्स मईशतों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और कारोबारी शराकतदारी को वसत देने से बेपनाह मौके खुल सकते हैं और शमूलियाती और पायदार तरक्की के नए इम्कान पैदा हो सकते हैं। यूरोपीय कमीशन ने आज भारत के साथ आजाद तजारती माहदे एफटीए पर दस्तखत करने और इसे नाफिज करने के लिए यूरोपीय काउंसिल के सामने एक बाजाबता तजवीज पेश की है। इस माहदे को मदर्स ऑफ ऑल डील्स यानी अब तक का सबसे बड़ा तजारती माहदा बताया जा रहा है। यूरोपीय काउंसिल की मंजूरी मिलने के बाद यह भारत और यूरोपीय यूनियन दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा तजारती माहदा होगा। भारत और यूरोपीय यूनियन ने रवां साल जनवरी में एफटीए को हतमी शक्ल देने का ऐलान किया था। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक माहदे के नाफिज होने के बाद बाजारों तक रसाई आसान होगी, महसूलात में कमी आएगी और गैर जरूरी तिजारती रुकावटें दूर हो जाएंगी। इससे भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के लिए वाज़ह और काबिल एतमाद जवाबित दस्तियाब होंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत को बड़े पैमाने पर तकनीकी जिद्दत तराजी को अपनाना चाहिए। उन्होंने ये भी वाजह किया कि इसके लिए इंसानी जिम्मेदारी, तहफ्फुज़ और अवामी एतमाद पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2026 से खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि भारत की नौजवान नस्ल मौके का इंतजार नहीं कर रही है बल्कि खुद प्लेटफॉर्म, कारोबारी इदारे और नए हल तख्लीक कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत में आबादी के तनासुब से हासिल होने वाला माशी फायदा मुल्क के तेजी से तरक्की करते हुए टेक्नोलॉजी और फिनटेक इकोनिज़ाम में नुमाया तौर पर नजर आ रहा है। نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

बातें उनकी जो दिल की उड़ान को आंखों में भरकर जीते हैं, जिन्हें प्यार है अपनी कला से और जो फिल्मों में अदाकारी नहीं करते बल्कि उन्हें जीते हैं।

आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय पुरस्कार तो अभी मिला है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें जो यात्रा तय करनी पड़ी उसकी बात करना बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ में 14 सितंबर 1984 के दिन सुरीली किलकारी गूंजी निशांत खुराना की, और बाद में माता पिता ने उन्हें नया नाम दिया आयुष्मान।

उन्हें गाना बहुत पसंद था। अपनी गिटार के साथ वो कहीं खो जाया करते और सुनने वाले उनके कायल हो जाते। वो अपने गाने भी खुद ही लिखा करते। ऐसे में कई बार आसपास के लोगों को लगता कि आयुष्मान गायक या गीतकार ही बनेंगे, लेकिन कॉलेज पहुंचते ही उन्हें एक नई राह दिखी। वो जुड़ गए थिएटर से।

उन्होंने कई नाटकों में मुख्य भूमिका निभाई है। धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधायुग के मंचन में उन्होंने अभिमन्यु का किरदार निभाया था। 5 साल थिएटर को देने वाले आयुष्मान, चंडीगढ़ के मशहूर थिएटर ग्रुप आगाज और मंचन तंत्र की नींव रखने वालों में से एक माने जाते हैं, लेकिन थिएटर उनकी मंजिल नहीं थी, ये तो बस एक रास्ता था।

साल की उम्र में उन्होंने एक पॉप रियलिटी शो में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने काफी काम किया, जैसे वो एक चर्चित एफएम में आरजे का काम करने लगे। उनका शो मान ना मान मैं तेरा आयुष्मान काफी पसंद किया जाता। देखते ही देखते वो एक बहुचर्चित टीवी रियलिटी शो में आ गए और उन्होंने उस शो को जीत भी लिया। इसी चैनल में उन्हें काम मिल गया वीडियो जॉकी का। आयुष्मान आवाज की दुनिया से निकलकर सबके सामने आ चुके थे और उन्हें लोग काफी पसंद करते थे।

एक पहचान तो मिल गई थी और साथ ही मिल गया था कई टीवी शोज को होस्ट करने का काम भी, लेकिन एक सपना था जो अब भी अधूरा था। इस सपने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक रोज यूं ही रोड से जाते हुए आयुष्मान ने देखा किनारे बड़ी सी होर्डिंग में उनके फेवरेट स्टार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ओम शांति ओम का पोस्टर लगा है। यूं ही उनके मन में ख्याल आया कि एक रोज मेरी फिल्म की होर्डिंग भी यही लगेगी। ये खुली आंखों का सपना था और ये सपना सच हुआ जब 2012 में उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी विकी डोनर।

ये गीत फिल्म के लिए सेलेक्ट होते ही पहले ही मीटिंग में आयुष्मान ने विकी डोनर फिल्म से पहली बार प्रोड्यूसर बने जॉन अब्राहम को गाकर सुनाया और जॉन ने इस गाने को फिल्म में आयुष्मान की आवाज में ही रखने का फैसला किया। इस फिल्म और गीत दोनों के लिए ही आयुष्मान को बहुचर्चित फिल्म पुरस्कार मिला। विकी डोनर लीक से हटकर फिल्म थी जिसमें एक सामाजिक मुद्दे को सरल तरीके से लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई थी। इसी तरह चुप्पी रखे जाने वाले एक और विषय पर आयुष्मान ने बेहतरीन किरदार निभाया। ये फिल्म थी शुभ मंगल सावधान।

आयुष्मान की फिल्मों की संख्या दहाई में है, लेकिन उनके किरदार शतक जमाते हैं। ऐसे चुन चुन के किरदार उन्होंने लिए हैं कि अलग ही रंग नजर आता है, उनका थिएटर का अनुभव नजर आता है एक थिएटर कलाकार की भूमिका में। ये फिल्म थी नौटंकी साला।

किताब को किसी और के नाम से छपवाने वाले और उस किताब के लेखक से प्यार करती बिट्टी को ये बात बताने को बेताब चिराग दुबे के किरदार में जान भर देते हैं आयुष्मान फिल्म बरेली की बर्फी में।

लेकिन सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को जीता उनके किरदार प्रेम प्रकाश तिवारी ने, जो अरेंज मैरिज से पत्नी बनी संध्या को स्वीकारने में बहुत देर लगाते हैं। ये कहानी तो मानो हर आम इंसान को छू गई। आयुष्मान का ये किरदार जिस फिल्म में नजर आया वो फिल्म थी दम लगा के हईशा।

0: जाहिर सुलझे।
1: आयुष्मान खुराना की बात हो तो उनके बिल्कुल अलग किरदारों की बात न की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी तीसरी ही फिल्म में उन्होंने किरदार निभाया शिवकर बापूजी तलपड़े का, जो भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत का पहला विमान बनाया था, लेकिन वो गुमनाम ही रहे। इस किरदार को निभाने के लिए आयुष्मान ने अपना वजन गिराया और मराठी भी सीखी। ये फिल्म थी हवाई ज्यादा।

दिवस के दिन जन्मे आयुष्मान को हिंदी से बड़ा लगाव है और उसका कारण है उनकी माँ जो हिंदी में एमए है। बचपन से ही आयुष्मान को भाषा से लगाव रहा। वो न सिर्फ अच्छा साहित्य पढ़ा करते बल्कि वो बहुत ही छोटी उम्र से ही लेखन की ओर भी मुड़ गए थे। यही नहीं, उनका एक ब्लॉग भी है जिसे वो हिंदी में लिखते हैं और आज भी जब भी उन्हें समय मिलता है कोई ना कोई कविता शेर वगैरह उसमें जोड़ते रहते हैं। भाषा से लगाव का आलम तो ये है कि आर्टिकल 15 के शूट के दौरान जब वो कुछ समय के लिए लखनऊ में थे तो उन्होंने उर्दू सीखना शुरू कर दिया था। दरअसल उन्हें लगता है कि इससे उनके लेखन में उन्हें काफी मदद मिल सकती है। जहां बात हो रही है आयुष्मान के शौक की, तो यहां कुछ बातें बताने से हम खुद को रोक ही नहीं पा रहे। जैसा कि आपको पता ही है कि आयुष्मान को गाने का शौक है, लेकिन कई बार उन्होंने गाने के जरिए अपनी छुट्टियों का खर्च भी निकाला है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कॉलेज के दिनों में वो दिल्ली से मुंबई के लिए चलने वाली पश्चिम एक्सप्रेस में अपने दोस्तों के साथ चढ़ जाया करते और हर कोच में जाकर गाने गाकर परफॉर्म करते। खुश होकर यात्री उन्हें पैसे दे देते और इतने पैसे इकट्ठा हो जाते कि वो सभी दोस्त मिलकर गोवा की ट्रिप के खर्चे निकाल लेते।

गाने थिएटर जैसी चीजों में आयुष्मान का मन लगता था, वहीं वो पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे। आयुष्मान ने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर डिग्री और मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। पढ़ाई के कारण ही तो उन्हें अपनी पत्नी ताहिरा मिली। जी हाँ, ताहिरा आयुष्मान के बचपन के साथी रही हैं। दोनों फिजिक्स के ट्यूशन में साथ पढ़ा करते थे। यहाँ दोस्ती हुई, फिर प्यार और शादी। ताहिरा आयुष्मान के करियर के उतार चढ़ाव में उनके साथी रही और हमेशा उन्हें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती।

आयुष्मान की फिल्म आर्टिकल 15 उनकी एक बहुचर्चित फिल्म रही। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और इस किरदार के लिए उन्हें काफी सराहना मिली। ये फिल्म सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखती है। इस किरदार के जरिए उन्हें गंभीर भूमिका निभाने में माहिर मान लिया गया है। यूं तो हर भूमिका में आयुष्मान ऐसे ढल जाते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं, लेकिन 2018 में आई एक ऐसी फिल्म जिसने लोगों के मन को जीत लिया। आयुष्मान ने इस फिल्म के लिए पियानो बजाना सीखा और ब्लाइंड पियानिस्ट से मुलाकातें भी की। उनकी इस तैयारी ने उनके किरदार में जान फूंक दी। उन्होंने इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिया। जी हाँ, बात हो रही है फिल्म अंधाधुन की।

आयुष्मान इसी तरह अलग अलग किरदारों में ढलकर सभी के दिलों में अपनी जगह बनाते रहें, इस कामना के साथ विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था युवा अभिनेता आयुष्मान खुराना पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दुनिया के इस आपाधापी में न जाने कितने रिश्ते, कितनी बातें पीछे छूटती जाती हैं। ये जिंदगी अपनी रफ्तार में खींचती हमें उन सभी से दूर ले जाती है जो कभी हमारे दिल के करीब हुआ करते थे। न जाने जिंदगी के मन में क्या है, क्यों वो हमें अपनों के करीब नहीं रहने देती। काश जिंदगी के किसी मोड़ पर उससे फिर मुलाकात हो जिसने कहा था,
1: छोटी सी ये दुनिया।

आगे चलते चलते कदम उनकी राहों में आ गए, न चाहते हुए भी हम निगाहों में आ गए। कहने को लाख बातें थी, आकर लब पर रुकी, हम कुछ न कह सके, बस उसकी पनाहों में आ गए। प्यार मोहब्बत के किस्से सुनाती रही ये दुनिया, हम इस किस्से को अपना बनाकर ही आ गए।

0: मिलने जुलने के सिलसिले बढ़ते जो जाएंगे, हम न रहेंगे, हम आप ही हो जाएंगे। ना मोहब्बत का जब भी लबों पे लाएंगे, हम न इकरार करेंगे, सीधे मुकर ही जाएंगे। क्या फायदा दिल की बातों को होठों से कहने का, हम मुंह को सिलेंगे, पलकें झुकाएंगे। इस पर भी यकीन हमको इस बात का तो है, हम कुछ न कहें फिर भी आप जान जाएंगे।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन

आप सुन रहे हैं छाया गीत। एहसासे मोहब्बत का इतना सा फसाना है, धड़कते दिल को उनकी निगाहों से बचाना है। कहना दें वो बात वही जो मेरे दिल में भी महफूज ऐसे रखी है जैसे कि खजाना है। आते ही रहते हैं हमने, कब इनकार किया है, मिलना तो तुमको था, हमने छोड़ा बहाना है।

तुझे देखकर खिली दिल की कलियां, महकने लगी हैं मोहब्बत की गलियां। उड़ती हूँ आसमान में मन की छलांग है, पंख तितलियों से उधार लिए भंवरों से शान है। खुशी से छानती फिरती हूँ दुनिया में, मोहब्बत का पैगाम सुनाती हूँ। अपने ही होठों से अब अपने दिल का राज बताती हूँ।

कह तो दिया था उस दिन तुम्हें, अब फिर से आज क्यों? देखो जी, अपनी मोहब्बत पर हमको है नाज़ यूं, करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे, पर दिल की ये बात अब न होठों से कहेंगे। तुम लाख मना लो चाहे, मिन्नतें करो, जो कह दिया सो कह दिया, अब फिर ना कहेंगे।

0: श्रोताओं, आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नागरिकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन्स सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। यह निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: तलत अजीज की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे, इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: ट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

अभी आप सुन रहे थे वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के आंखों देखा हाल का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:23 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे अपने कार्यक्रमों के प्रसारण के साथ आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।